FM 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 सितंबर सन 2026 सवेरे के ठीक 5:57 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 अधिक यात्री भार वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। टीम सिकल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुँच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का वापसी भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी।

0: दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान तथा भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। यह अभियान निगम के सभी 12 जोन में चलाया जा रहा है। एमसीडी ने कल 34 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसके अलावा 17 संपत्तियां सील की गई, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 4 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने पिछले 10 दिनों में देश भर में विभिन्न स्थानों पर 6 बड़े अभियान चलाए हैं। निदेशालय ने 2 तेंदुए की खाल, 180 जीवित भारतीय तारा कछुए, 12 जीवित टोके गेको, लगभग 24 किलोग्राम पेंगोलिन के शल्क और लगभग 500 ग्राम बाघ की हड्डियां बरामद की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन मामलों में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। अमेरिका ओपन में अमेरिका की बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। महिला सिंगल सेमीफाइनल में कल मौजूदा चैंपियन एरिना सबालेंका का मुकाबला तीसरी सीड जेसिफा पेगुला से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी अलवर के इसका चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम वंदनवार।

आज का चिंतन स्वामी विवेकानंद का कथन है, ज्ञान स्वयं के भीतर है, इंसान केवल उसका आविष्कार करता है। ये था आज का चिंतन। वंदनवार में लीजिए, सुनिए भक्ति रचनाएं।

जाने किस लालच में ये क्या कर बैठा इंसान, तुम्हारी सरहद पर तूफान, सावधान अनजान पहरू सरहद।

0: सावधान पहरुओ सरहद पर तूफान, सावधान अनजान पहरुओ सरहद पर तूफान, खड़ा है सरहद पर तूफान तुम्हारी सरहद पर तूफान, सावधान अनजान पहरुओ सरहद पर तूफान, खड़ा है सरहद पर तूफान तुम्हारी सरहद पर तूफान, तुम्हारी सरहद पर।
1: इसके साथ ही आज का वंदनवार संपन्न होता है।

ये है विविध भारती। झरोखा मिली जी, सुनिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद 6:35 से आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 307। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। इस प्रोग्राम का 10वां भाग आज आप सुनेंगे कलाकार गायिका डॉक्टर शकुंतला भर ने। समय सुबह व शाम 6:45 से। सात बजे से लेकर आएंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 से हम है राही प्यार के। 3 का समय होगा 8 से और दोपहर 2 से। चित्रलोक 8:30 से और रात्रि 8:15 से आप सुनेंगे। आज के फनकार आज केंद्रित होगा निर्माता निर्देशक महबूब खान पर। सुबह व रात्रि 9:30 से आप ये प्रोग्राम सुनेंगे। दस बजे पिटारा में आज के मेहमान कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत आज आप सुनेंगे। 11 से रंग तरंग, 12:05 से यादों की महफिल। 1 से लेकर आएंगे प्रोग्राम सुरीला सफर। 2:30 से सदाबहार नगमे।

दिन में 3 बजे से सखी सहेली सुनिएगा। चर्चा होगी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर। बाकी के विषय होंगे घर की सफाई, नोकझोंक या साझेदारी। कहानी पद्मश्री में जोधई बाई बेगा की कहानी आप सुनेंगे। मुझे कुछ कहना है में बस 5 मिनट बनाम घंटों की बातें। उपयोगी टिप्स में जब बनानी हो रेसिपी। चार बजे से हेलो फरमाइश, 5 बजे से छाया गीत। शाम 5:30 से आप सुनेंगे तराने नए पुराने। 6:35 से संध्या रंजन। शाम 7 बजे से लेकर आएंगे फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम जयमाला। 7:45 से इंद्रधनुष के

अंतर्गत इनसे मिलिए। महाराष्ट्र पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विवेक विजय तांबे से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग आज आप सुनेंगे इस प्रोग्राम में। आठ बजे से सुनिए हवा महल में झलकी, मुरादाबादी, लेखक और निर्देशक गुरमीत रामल मीत। नौ बजे से लेकर आएंगे प्रोग्राम आपके लिए। दस बजे वक्त होगा छाया गीत का और 10:30 से प्रोग्राम ढलती जाए रात।

कर्ण फूल के कटकर गिरने से मंदोदरी सोच में पड़ गई थी। वो श्री राम के व्यापक स्वरूप और पराक्रम की कल्पना भली भांति कर सकती थी। शिव जिनके मान, ब्रह्मा बुद्धि, चंद्रमा मन और विष्णु चित्त हैं, उन्हीं जगदीश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया है। वो पति को ये सब कुछ समझाने की भरसक चेष्टा करती है, किंतु रावण उसकी बात हंसकर ये कहते हुए टाल देता है, सच ही कहते हैं कि नारी के हृदय में छल, भय, चंचलता, झूठ, अविवेक, अपवित्रता तथा निर्दयता का निवास होता है। मंदोदरी द्वारा वर्णित भगवान के विश्वरूप के तत्व तो स्वयं उसका आधिपत्य स्वीकार करते हैं, अतः उनसे भय कैसा? हो न हो, अपने कथन से वो उसकी प्रभुता की ही महिमा बखान रही है। रानी की गूढ़ बातें रावण के लिए विनोद का हेतु बन गईं। आमोद प्रमोद के क्षण बीत जाते हैं, सवेरा होता है। जिस प्रकार बादलों द्वारा बरसाया गया जीवनदायी जल पाकर भी बेंत फल फूल नहीं सकता, उसी प्रकार मंदोदरी समझ लेती है कि उसका पति काल के वश में हो गया है, उसकी मति मारी गई है। ऐसे में तो ब्रह्मा जैसा गुरु भी उन्हें ज्ञान नहीं दे सकता। इधर श्रीराम की सभा में वृद्ध जांबवान ये परामर्श देते हैं कि अंगद को दूत के रूप में रावण की सभा में भेजा जाए।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला की इस कड़ी में। डॉक्टर शकुंतला भरणे हमारे साथ हैं। शकुंतला जी,
2: हाँ जी।
1: किराना घराने की राग प्रस्तुति का जो एक तरीका है जिसे भावपूर्ण प्रस्तुति कहते हैं, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी?
2: कल ही हमने इसके बारे में थोड़ा सा
1: आलाप की चर्चा हुई थी।
2: जी जी। जब हम आलाप करते हैं, राग का जो प्राण है वो आलाप है, और इसमें स्वर में भी भाव रहता है।
1: जी,
2: ऐसा
1: जी।
2: नहीं कि सिर्फ शब्द में भाव रहता है, स्वर का भी एक स्वभाव रहता है, और हर एक राग के स्वर का एक अलग स्वभाव रहता है।
1: हाँ।
2: राग भाव को सर्वोच्च स्थान इधर शास्त्रीय संगीत में है, और किराना घराने में केवल राग गाना ही इसका उद्देश्य नहीं है, तो उसका भाव, उसका रस और उसका वातावरण, ये सब को श्रोता तक पहुँचाना यहाँ पे मुख्य लक्ष्य होता है। स्वर के माध्यम से हम हमारी भावाभिव्यक्ति
1: जी
2: दिखाते हैं, शब्दों से अधिक स्वरों के माध्यम से ये की जाती है। शब्द तो जरूरी है इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं।
1: हाँ।
2: लेकिन स्वर जो है, स्वर में जो प्राण है, स्वर में जो भाव है, वो भाव प्रत्येक स्वर में संवेदनशीलता और माधुर्य यहाँ पे झलकता रहता है। विलंबित लय का सहारा हम लेते हैं इसीलिए।
1: अच्छा।
2: क्योंकि एक एक विस्तार होने से प्रत्येक स्वर को हम ठहराव करते हैं। वो ठहराव मिलने से क्या होता है, राग का भाव एकदम स्वाभाविक रूप से उभर कर आता है।
1: अच्छा।
2: और एक गाना जो है उसकी गहराई समझ में आती है क्या है।
1: तो किस राग की बंदिश से आप इसे स्पष्ट करना चाहेंगी?
2: हम तो गोरख कल्याण सुनाएंगे आपको।
1: क्या बात है।
2: लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा और कुछ बोलना है इसके बारे में।
1: जी जी जी बिल्कुल।
2: स्वरों के बीच कोमल मींड तथा श्रुतियों का सूक्ष्म प्रयोग इस भावपूर्ण अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावशाली बनाता है। राग का विस्तार धीरे धीरे और संतुलित ऐसे गा के किया जाता है जिससे श्रोता राग के भाव में सहज रूप से डूब सके। किराना घराने की गायकी श्रोता के मन को सीधे स्पर्श करती है। इसकी प्रस्तुति केवल सुनाई नहीं देती बल्कि महसूस होती है। तानों से अधिक स्वर सौंदर्य पर बल, जहां अनेक घरानों में जटिल जटिल तानों का अधिक महत्व होता है,
1: जी
2: वही किराना घराने में जो स्वर है उसकी शुद्धता है, मधुरता है और भाव अभिव्यक्ति है, उसे प्राथमिकता दी जाती है।
1: अच्छा।
2: एकदम छोटे छोटे आलाप, एकदम सिंपल आलाप, लेकिन उससे इतना स्वर का गुंजन होता है, इतना उसको हम गा गा के

0: वाह वाह, बहुत ही सुंदर।
1: अभी तो गोरख कल्याण आपने सुना
0: जी,
1: लेकिन हमेशा बोलती हूँ मुझे ऐसा कंप्लीट नहीं लगता है, क्योंकि हमें भी कुछ रह गया है क्या, ऐसा लगता है कलाकार के नाते। अगर आप सुनते हैं माणिक वर्मा का स्वर
0: जी,
1: भावनिक स्पर्श अथवा भावपूर्ण गाना, परिपूर्ण गायिका इसे हम कहते हैं।
0: अच्छा,
1: ये माणिक वर्मा है, एकदम घरंदाज मुलायम स्वर लगाने वाली, अत्यंत सौंदर्यपूर्ण गायकी दिखाने वाली गायिका। उन्होंने गाया हुआ एक सुंदर राग है श्याम कल्याण
0: जी,
1: और ये राग सुनकर ही आपको पता चलेगा कि आलाप चीज क्या होती है, राग को कैसा आगे लेके जाना है।

0: श्याम कल्याण तो आपने सुन लिया
1: जी बिल्कुल। लॉरे से सुनते हुए एक गीत जो मन में गूंज रहा था वो बहुत ही लोकप्रिय गीत है मुगले आजम फिल्म से, मोहे पनघट पे नंदलाल।
0: अरे वाह, लेकिन डायरेक्ट इसमें श्याम कल्याण नहीं मिलेगा हमको, श्याम कल्याण की कुछ छटा हमें ये गाने में मिलती है। वैसे तो फिल्मी गीत ऐसे ही रहते हैं, प्योरिटी नहीं रहती है, फिर भी राग की छटा रहती है।
1: तो सुनते हैं ये गीत।
0: हाँ।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

एफ एम में 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। सवेरे के ठीक 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार अलवर।

नमस्कार अलवर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत की स्वास्थ्य यात्रा के विषय पर, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं आपको एक गीत।

श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भारत की स्वास्थ्य यात्रा के विषय पर। स्वास्थ्य किसी भी राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि का आधार होता है। एक स्वस्थ नागरिक ही देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में सक्रिय योगदान दे सकता है। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। संक्रामक रोगों पर नियंत्रण, टीकाकरण कार्यक्रमों का विस्तार, चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि तथा आधुनिक तकनीकों के उपयोग ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाया है। आज भारत विश्व के प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में अपनी पहचान बना रहा है। फिर भी बढ़ती जनसंख्या, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसी चुनौतियां आज भी मौजूद है। ऐसे में भारत की स्वास्थ्य यात्रा का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। कार्यक्रम में सुनते हैं एक गीत।

श्रोताओ, कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भारत की स्वास्थ्य यात्रा के विषय पर। श्रोताओ, स्वतंत्रता के समय भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित थी। अस्पतालों, डॉक्टरों और दवाओं की उपलब्धता बहुत कम थी। समय के साथ सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत योजना, मिशन इंद्रधनुष तथा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। पोलियो उन्मूलन, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी तथा औसत आयु में वृद्धि भारत की स्वास्थ्य उपलब्धियों के प्रमुख उदाहरण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत की स्वास्थ्य यात्रा निरंतर प्रगति, नवाचार और समावेशी विकास की कहानी है। स्वतंत्रता के बाद संक्रामक रोगों, कुपोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसी चुनौतियों से जूझते हुए भारत ने आज एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं। आयुष्मान भारत, टीकाकरण अभियान और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं जैसी पहलों ने देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को नई दिशा दी है।

श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे भारत की स्वास्थ्य यात्रा के विषय पर। इस स्वास्थ्य यात्रा में वर्तमान चुनौतियों की अगर हम बात करें तो भारत आज भी कई स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे कि शुगर यानी मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर और मोटापा जैसी गैर संचारी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। प्रदूषण, असंतुलित आहार, तनाव और शारीरिक गतिविधियों की कमी इसके प्रमुख कारण हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं की कमी भी एक बड़ी समस्या है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाओं पर होने

वाला व्यक्तिगत खर्च अनेक परिवारों के लिए आर्थिक बोझ बन जाता है। शुद्धम भविष्य में भारत की स्वास्थ्य नीति का उद्देश्य केवल रोगों का उपचार नहीं बल्कि रोगों की रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। भविष्य में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सशक्त बनाया जाएगा ताकि लोगों को शुरुआती स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिल सके। स्वास्थ्य शिक्षा, स्वच्छता और पोषण पर विशेष ध्यान देकर बीमारियों को कम किया जा सकता है। साथ ही साथ हमें योग और ध्यान को भी हमारे जीवन का हिस्सा बनाना होगा। श्रोताओं, योग और ध्यान न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

श्रोताओं, आज आधुनिक तकनीक स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति ला रही है। टेलीमेडिसिन, AI, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और मोबाइल स्वास्थ्य सेवाएं चिकित्सा सुविधाओं को अधिक सुलभ बना रही हैं। आयुष्मान भारत में डिजिटल मिशन के माध्यम से प्रत्येक नागरिक का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इससे रोगों का बेहतर प्रबंधन और सही उपचार संभव होगा। दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श प्राप्त कर सकेंगे। श्रोताओं, भारत की स्वास्थ्य यात्रा निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। चुनौतियां अनेक हैं, लेकिन अवसर उससे भी अधिक हैं। आधुनिक तकनीक, प्रभावी नीतियां, जन भागीदारी और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर भारत एक सशक्त और स्वस्थ राष्ट्र बना सकता है। एक स्वस्थ भारत ही समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसलिए स्वास्थ्य को केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण आधार के रूप में देखना आवश्यक है।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इसी के साथ अब दीजिए कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार अलवर। हम आकाशवाणी अलवर के इसका चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना अंदाज फिल्म से, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे समीर ने, संगीत था नदीम श्रवण का।

0: हीरो हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत सुना आपने अभी कुमार शानू साधना सरगम की आवाज में। गीत के बोल लिखे थे जमीर काजमी ने, संगीत था अनु मलिक का।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

शुदो, अभी आपने सुना फर्ज फिल्म में लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों को। गीत के बोल थे समीर के, संगीत था उत्तम सिंह का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आपने सुना जीत फिल्म से। आवाजें थी कुमार शानू, अलका याग्निक की। गीत के बोल थे समीर के, संगीत था नदीम श्रवण का। इसी गीत के साथ हमारा फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: जब जब आप करेंगे हमें याद, हम मिलेंगे आपको अपने ही पास। अगर आप हैं दुनिया के किसी भी कोने में और सुनना चाहते हैं आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल, तो आप हमें सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी। हमें सुनने के लिए आप जाइए अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर पर, वहाँ से कीजिए डाउनलोड न्यूज ऑन AIR ऐप। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जब आप लाइव रेडियो के ऑप्शंस पर जाएंगे, तो वहां आपको मिलेंगे रेडियो के ढेरों चैनल्स। इनमें से आप सर्च कीजिए अपना फेवरेट ऑल इंडिया रेडियो अलवर, जहां आप हमें पाएंगे अपने साथ, ओनली एट न्यूज ऑन AIR।
1: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु नियमों का पालन न करने को लेकर ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में अमरीका के दोनों खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफू आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बनी। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं से लगभग 52 लाख की आबादी वाले लगभग 2100 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सबसे व्यस्त सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लाइन का बनाने का फैसला किया है। इनमें दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई और मुंबई चेन्नई शामिल है। इनमें से करीब 2000 किलोमीटर रेल मार्ग को पहले ही 4 लाइन का बनाया जा चुका है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि ये सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और सूरत से वापी तक प्रारंभिक 100 किलोमीटर का खंड जल्द ही खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से विरासत और वन्य जीव पर्यटन को विशेष बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लॉजिस्टिक लागत कम करने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट डब्ल्यू

0: www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभा सकें। श्री गोयल ने बताया कि भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं।
4: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
0: लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। ब्रिक्स देशों के बीच संवाद और सहयोग से सदस्य देशों, साझेदार देशों और पूरी दुनिया के लिए अधिक समृद्ध भविष्य का रास्ता तैयार होगा। श्री गोयल ने बताया कि भारत ने 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को मौजूदा $4 trillion से बढ़ाकर $30 trillion करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया को श्रीलंका और भारत दोनों में महिलाओं के लिए एक आदर्श और महिला सशक्तिकरण तथा नारी शक्ति का प्रतीक बताया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 35 सदस्यीय बोर्ड ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के पक्ष में 23 वोट पड़े, 5 विरोध में और 8 सदस्य मतदान से दूर रहे। ये प्रस्ताव अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पेश किया था। रूस, चीन और नाइजर ने इसके खिलाफ वोट किया। ये कदम अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से जारी सैन्य टकराव और बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगल

0: बार को इसका उद्घाटन किया था ब्योरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुँचा। एक रिपोर्ट।
2: 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। इनमें कीचड़ बचाव सूट, गैस डिटेक्टर, श्वास यंत्र, पोर्टेबल जनरेटर, प्रकाश टावर और जल निकासी पंप शामिल हैं। पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए भारत ने डीएनए किट, अर्भिक्रमक और डीएनए प्रोफाइलिंग उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के मंत्री महावीर पुन को राहत सामग्री सौंपी। इस बीच भारत के विशेष सुरंग बचाव दल ने नेपाल की सेना के साथ मिलकर चिलिमे और लोंगटोंग में दो उच्च जोखिम वाले स्थलों पर संयुक्त अभियान शुरू किया। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2 से 3 दिन के भीतर पूरा होने की आशा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। केरलम में अलपुजा और एर्नाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अमरीकी ओपन पुरुष एकल सेमीफाइनल में बेन शिल्टन की टक्कर फ्रांसिस टियाफो से होगी। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शिल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद प्रियंका। भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी खबरों को कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। ब्रिक्स इंडिया सम्मेलन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार सीमा पार डिजिटल सेवा आसान करेंगे ब्रिक्स देश। ब्रिक्स देशों की डिजिटल सेवाओं के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 48%, दुनिया में 5वां स्थान। राजस्थान पत्रिका का कहना है, ब्रिक्स पर भारत का बड़ा दाव, सीमा पार व्यापार और स्थानीय मुद्रा में भुगतान पर जोर। पत्र ने लिखा है, चीन से सीधी उड़ान, ईरान से चाबहार और रूस से सुखोई फाइटर पर होंगे समझौते। नवभारत टाइम्स के आर्थिक पन्ने की खबर है, कच्चा तेल $100 के पार, पश्चिम एशिया में तनाव, तेल की कीमतों में तेजी से 3 महीने के निचले स्तर पर बाजार। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शुभारंभ पर वंदे मातरम के पूरे गायन पर कांग्रेस की आपत्ति के जवाब में दैनिक जागरण ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान प्रकाशित किया है। वंदे मातरम कितना और कैसे गाना है, कांग्रेस ये सहयोगियों को ना सिखाए। जनसत्ता की खबर है, ओडिशा में बालासोर के जंगल में मिले 5 वनमानुष। मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षा वनों में पाए जाने वाले इन वनमानुष के ओडिशा पहुंचने की जांच शुरू। लौटते मानसून से होगी राजस्थान समेत कई राज्यों में अच्छी बारिश। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 11 से 15 सितंबर तक चलेगा नया दौर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर

0: काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। सवेरे के ठीक 8:15 हो रहे हैं। लीजिए पेश है सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गुलाम अली की गाई गजलें।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

हम आकाशवाणी अलवर के साइंस का चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 8:30 होने को है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम

0: तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। करते हैं शुरुआत गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी कलावती सोनी जी द्वारा भेजे गए सुविचार के साथ। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। सचमुच कैसे नादान हैं हम सब। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। आपके सुविचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच है श्रोता मित्रों, जीवन को जीने का हमारा दृष्टिकोण हमेशा संतुलित और परिपक्व होना चाहिए। सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। ग्राम बंगला माटिया बालू से शिव कुमार अंगारे। अंजनी अंगारे जी लिखते हैं, जल है तो कल है, वृक्ष है तो फल है। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से जी ने। मिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमानाज अंसारी और सुल्तान अंसारी। और शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज के प्रेरक प्रसंग में एक बार फिर से हम याद करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर को, जब अंग्रेजी शासन का शिकंजा भारत पर कसता जा रहा था। हम आजादी के बहुत से अमर शहीदों के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम तीन ऐसे नौजवानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, लगभग नहीं के बराबर। मित्रों, अगर मैं कहूं कि मात्र 18, 19 या 22 साल के तीन आजादी के दीवाने नौजवान अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित सरकारी भवन में घुस गए थे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? असंभव सा लगता है ना, लेकिन ऐसा हुआ। वे तीन जवान थे, बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। उन दिनों कोलकाता में अंग्रेजों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दफ्तर था जो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था। ये ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी वहीं बैठते थे। ये 8 दिसंबर 1930 की घटना है। सामान्य दिन था। अंग्रेज अधिकारी अपने दफ्तर यानी राइटर्स बिल्डिंग में आ चुके थे और अपना काम कर रहे थे। महत्वपूर्ण जगह होने के कारण वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत कड़ी थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सुरक्षा का घेरा तोड़कर बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता उस भवन में प्रवेश कर जाएंगे। लगभग दोपहर की बात है, वे तीनों युवा क्रांतिकारी भवन में घुस गए। उस दफ्तर में कई भारतीय भी काम करते थे, इसलिए उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों जैसा पहनावा पहना और अंदर प्रवेश किया। उनके निशाने पर थे लेफ्टिनेंट कर्नल NS सिम्पसन, जो जेलों में भारतीय राजनीतिक बंदियों के साथ कठोर व्यवहार के लिए कुख्यात माने जाते थे। और देखते ही देखते तीनों ने लेफ्टिनेंट कर्नल सिम्पसन पर गोली चला दी। कर्नल की वहीं मृत्यु हो गई। इसके बाद वही हुआ जो आमतौर पर होता है, राइटर्स बिल्डिंग के अंदर ही ब्रिटिश पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई। तो श्रोताओं, आप जरूर जानना चाहेंगे कि क्या वे तीनों वहां से निकलने में सफल हुए? इसका उत्तर है नहीं। उन्होंने प्रण कर लिया था कि किसी भी कीमत पर अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। वे समझ गए थे कि अब बच निकलना लगभग असंभव है। तो नौजवान बादल गुप्ता और बिनॉय ने स्वयं को गोली मार ली। बादल गुप्ता की वहीं पर मृत्यु हो गई। बिनॉय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर 1930 को उनकी भी मृत्यु हो गई। उनके साथी दिनेश गुप्ता घायल अवस्था में पकड़े गए, उन पर मुकदमा चला और 7 जुलाई 1931 को अलीपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। और अब जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद देश ने इन तीनों की स्मृति को कैसे जीवित रखा। कोलकाता के बेहद प्रसिद्ध डलहौजी हाउस का नाम बदलकर बीबीडी बाग यानी बादल, बिनॉय और दिनेश रखा गया और एक स्मारक बनाया गया। श्रोताओं, एक बात बहुत स्पष्ट है, वो ये है कि हम इन क्रांतिकारियों के साहस और बलिदान को आभार के साथ याद करते हैं, लेकिन हिंसा को जीवन का रास्ता नहीं मानते। हम बस उस दौर के इतिहास को उस समय के संदर्भ में समझते हैं। तो श्रोताओं, जब हम बीडीडी बाग का नाम सुने तो केवल उसे कोलकाता की एक जगह समझकर नजरअंदाज न कर दें। हम जरूर याद करें इन क्रांतिकारी युवाओं को,

0: देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। आज़ादी को केवल एक विशेषाधिकार की तरह ही नहीं बल्कि एक उत्तरदायित्व की तरह भी देखें, और जिन्होंने देश के लिए अपना आज दे दिया, हम उनके बलिदान को याद करके अपने आज को बेहतर बनाएं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। आप 8800044055 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF, और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बरसात और मेंढक। इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें पशु पक्षियों और संपूर्ण जीव जगत का ख्याल रखना चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए।
1: बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सोमारू चले घास लेने।

0: घास घास थोड़ी सी घास ले ले।
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
2: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
0: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
2: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
1: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
0: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
1: बादल बोले,
3: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
1: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
3: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
4: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
1: मेंढक मान गए।

0: कमली और सुमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
1: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढ़क ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ,
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा।

0: शिक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में रूस के एक भालू से जुड़ी एक घटना के बारे में बताया गया है और ये संदेश दिया गया है कि हमें अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को पूरी तरह से पहचानना चाहिए।
0: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है। सोचिए, जरा बताइए तो।
0: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
0: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घर

0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई। वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहाँ के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही। लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।

0: लेकिन साथियों ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
1: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
0: साथियों फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।
0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था?
0: बात स्पष्ट है। उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और

0: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, माफ कीजिए, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर केंद्र से।

0: चार प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में 76% से अधिक मतदान, दूसरे चरण के तहत 147 नगर निकायों में कल वोट डाले जाएंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कृषि उपज को प्रोसेसिंग और बाजार की मांग से जोड़ते हुए किसानों को अधिक मूल्य दिलाने पर जोर दिया। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। और 27वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के तहत 76% से अधिक मतदान हुआ है। 162 नगरीय निकायों के लिए हुए चुनाव में 43,95,400 से अधिक लोगों ने वोट डाले। इन निकायों के 5,393 वार्डो में करीब 57,52,000 मतदाता पंजीकृत हैं। सबसे अधिक 91.98% मतदान प्रतापगढ़ जिले की अरनोद नगर पालिका में हुआ। यहां 5,190 मतदाताओं में से 4,774 वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं सबसे कम 63.84% मतदान भीलवाड़ा नगर निगम के लिए हुआ। छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान सुचारू और शांतिपूर्ण रहा। इसी के साथ 20,600 से अधिक प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीन में बंद हो गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस बार मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया, जिससे वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा है।
1: मतदान जो है पूर्णतया एक वैधानिक तरीके से, नियमबद्ध तरीके से, शांतिपूर्ण वातावरण में, भयमुक्त वातावरण में और एक सुव्यवस्थित तरीके से जो है संपन्न हो गया। मतदान का परसेंटेज भी जो है बढ़ा है, तो इसका ये मतलब है कि लोग जो है वो उनको निर्वाचन की जो मशीनरी है उसके ऊपर पूरा विश्वास है और अपनी स्थानीय सरकार चुनने के लिए भी उनके मन में बहुत जोश और उत्साह है।
0: वहीं कल नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 147 निकायों के करीब 4,700 वार्डों में हो रहे इस चुनाव में 18,266 उम्मीदवार मैदान में हैं। 45 वार्डों में निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। इस चरण में 6 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 121 नगर पालिकाएं शामिल हैं। इनमें जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और पाली नगर निगम शामिल हैं। इस दौरान 87,60,000 से अधिक वोटर्स प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इससे पहले कल शाम चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। आज प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं। हमारी अजमेर संवाददाता ने बताया कि वहां मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
2: कल जिले के अजमेर, पुष्कर, किशनगढ़ सहित 9 निकायों में 165 वार्डों में 600 से अधिक उम्मीदवारों का 6,50,000 से अधिक मतदाता ईवीएम मशीन का बटन दबाकर भावी परिणाम तय करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिला प्रशासन द्वारा शांति और कानून व्यवस्था कायम रखने के सभी इंतजाम किए गए हैं और आज मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण के बाद निर्धारित स्थानों के लिए रवाना कर दिया जाएगा। नलिमा धादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
0: उधर पश्चिमी जिले जोधपुर में भी मतदान को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। वहीं प्रत्याशी भी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं।
3: जोधपुर में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गत दिनों जनसंपर्क किया, जबकि कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने शासनकाल में करवाए गए कार्यों की जानकारी दी। जोधपुर नगर निगम चुनाव में सामान्य की 30, ओबीसी की 10, एससी एसटी की 7 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जबकि सामान्य की 14, ओबीसी और एससी एसटी की 2-2 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला होगा। वहीं जिले की 6 नगर पालिकाओं मथानिया, पीपाड़, भोपालगढ़, तिवरी, बिलाड़ और बालेश्वर में बुधवार को मतदान शांतिपूर्ण रहा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: राज्य के 309 नगर निकायों के लिए मतदान के बाद वोटों की गिनती 14 सितंबर को होगी। अध्यक्ष के लिए चुनाव 21 तारीख को होगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कृषि उपज को प्रोसेसिंग और बाजार की

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार।

0: मांग से जोड़ते हुए किसानों को अधिक मूल्य दिलाने पर जोर दिया है। मुख्य सचिव एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स के विकास को लेकर कल जयपुर में समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने हितधारकों के साथ हुई इस बैठक में छंटाई, पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग, परिवहन और आपूर्ति तथा ब्रांड निर्माण के लिए सुविधाएं विकसित करने को कहा, जिससे फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आए और किसानों को बेहतर बाजार तथा मूल्य मिल सके। मुख्य सचिव ने कल ही राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध बजरी खनन की रोकथाम और वन्य जीव संरक्षण की दिशा में किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना के लिए पूरी तरह संवेदनशील और गंभीर है। उच्चतम न्यायालय के आदेशों और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों की अनुपालना में अभयारण्य क्षेत्र में 40 अत्यधिक संवेदनशील स्थलों की पहचान की है। इन स्थानों पर अवैध खनन और परिवहन पर नजर रखने के लिए हाई मास्ट टावर, ऑप्टिकल फाइबर तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और थर्मल नाइट विजन कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुँच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि देश में वित्तीय लेन देन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। उधर मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक कल से शुरू हुई। दो दिन की इस बैठक की थीम मजबूती, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण है। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच सीमा पार निवेश, भुगतान प्रणाली, स्थानीय मुद्राओं में कारोबार को बढ़ावा देने सहित अन्य विषयों पर चर्चा की जा रही है। जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 27वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आज होगा। नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में होने वाले समारोह में वर्ष 2025-26 के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और विद्यालयों को सम्मानित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले 30 सालों से जवाहर नवोदय विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। हनुमानगढ़ के प्रसिद्ध सुखा सिंह महताब सिंह गुरुद्वारा में आज सालाना जोड़ मेले का आयोजन हो रहा है। इसे लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि मेले के लिए गुरुद्वारा परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है।
1: गुरुद्वारा परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। मेले के दौरान गुरुद्वारा परिसर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे तथा श्रद्धालु मत्था टेक कर अरदास करेंगे। वहीं भारी लंगर का वितरण किया जाएगा। आयोजन को लेकर सेवादारों की ओर से व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। मेले को लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह है। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमान।
0: अजमेर के मसूदा के पास कल हुए सड़क हादसे में 2 श्रद्धालुओं की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई, वहीं 13 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इनका इलाज अजमेर के अस्पताल में किया जा रहा है। ये दुर्घटना एक ट्रैक्टर ट्रॉली की बस से टकरा जाने से हुई। ये सभी लोग मध्य प्रदेश के मंदसौर के निवासी थे और रामदेवरा के दर्शन कर पुष्कर जा रहे थे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन के मोकी में कल भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान अनमोल इक्का के शानदार 6 गोल की मदद से चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं भारतीय जूनियर महिला टीम ने अपने आखिरी पूल मैच में चीन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। अब क्वार्टर फाइनल में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में 76% से अधिक मतदान, दूसरे चरण के तहत 147 नगर निकायों में कल वोट डाले जाएंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कृषि उपज को प्रोसेसिंग और बाजार की मांग से जोड़ते हुए किसानों को अधिक मूल्य दिलाने पर जोर दिया। केंद्रीय

0: उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। और 27वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।
2: अनमोल यादें,
3: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
2: अनमोल यादें
3: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर। अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
4: Ooh, stara, rica stara, rira, cucaru,

गुलराज सिंह की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था उंगली। मनोज यादव ने इसे लिखा, गुलराज सिंह का म्यूजिक। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

ये जवानी है दीवानी, ये था फिल्म का नाम। श्रीराम और शिल्पा राव की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। प्रीतम ने संगीत दिया, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा। इस गीत के साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं समाप्त होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर...

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती हैं।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है,

0: वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
1: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा, मुंबई की तरफ जाने के लिए इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने जमकर कुटुम्बस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब

महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थीं और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा। पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहाँ बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकाल कर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे मुंबई।

मुंबई में महबूब खान उस जमाने के वीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे, महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते, तरह तरह की परेशानियां होती। वो हौसला नहीं हारते, हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इम्प्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्दशीर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्दशीर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में ये फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्दशीर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दांव नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दांव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे।

जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहाँ से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलेन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता। सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

इसके बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म अनमोल घड़ी।

अनमोल घड़ी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई ये फिल्म काफी काम

सन 1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद का था।

एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने। उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।

मदर इंडिया जैसी बड़ी लकीर खींचने के बाद महबूब खान ने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई। सन 1962 में आई उनकी निर्देशित फिल्म सन ऑफ इंडिया।

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहला रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को हमारा विनम्र

0: कलाकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्मकार महबूब खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: हम आकाशवाणी अलवर के साइस्का चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनते हैं कुछ विज्ञापन।
1: यह सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि

0: कि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
0: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: और जब कार्टूनिंग की तब भी विविध भारती हमारा साथ ही रहा, तो आज यहाँ आकर और जब आप सब लोगों से मिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वप्न लोक में विचरण कर रहे हैं।
1: तो आपके लिए आपके सपने पूरे होने जैसा है ये।
0: जी बिल्कुल सही बात है बिल्कुल।
1: तो देवेंद्र जी, मैं अभी आपकी किताब देख रही थी, धूप छांव, आप तो लेखक भी हैं और आपने इसमें उन नाटकों को लिया है जो हमारे विविध भारती के हवा महल कार्यक्रम से भी आए हैं।
0: जी हाँ जी।
1: तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कार्टून के बारे में तो आपकी बातचीत हमें करना ही है, तो लेखन की शुरुआत कब हुई?
0: लेखन की शुरुआत और ये कार्टून्स की ये कहना मुश्किल है कि कैसे, क्योंकि लगभग ये दोनों ही साथ ही चले। और शुरुआत में मैं कविताएं और लेख भी लिखा करता था अपनी समझ के हिसाब से, छोटे छोटे लेख कि लू लगने से अपने आप को कैसे बचाएं, या रक्षाबंधन के त्यौहार का महत्व, या अखबारों जो आते हैं बाल स्तंभों में आई होली आई, उस तरह के ये रचनाएं ऐसी कविताएं लेख लिखते थे और साथ ही कार्टून्स भी बनाते थे। तो लिखने की शुरुआत का सिलसिला ऐसे जमा कि आकाशवाणी इंदौर से बच्चों की सभा प्रसारित होती थी हर संडे, तो उस वहाँ जाने का एक लिंक बना और मैं वहाँ पर जाने लगा नियमित। और वहाँ मैंने देखा किस तरह से बच्चे अपनी कविताएं पढ़ते हैं, अपनी बात कहते हैं धीरे धीरे धीरे। और वहाँ जो संयोजिका थी रंजी सतीश जी, उन्होंने विशेष मुझे स्नेह किया और उन्होंने कहा कि बेटा तुम कार्टून्स भी बनाते हो तो तुम रेडियो कार्टून बनाओ।
1: अच्छा।
0: हाँ तो वो अपन प्रसारित करेंगे।
1: हाँ।
0: तो रेडियो कार्टून जो है उनकी उनके मार्गदर्शन में और कुछ अपनी सूझबूझ से हम लोगों ने डेवलप किया। तो एक बहुत जल्दी जल्दी जो पात्र बोलते थे बड़ी अपनी चुलबुली भाषा में, तो उस तरह से हमने नटखट्टू नाम का एक रेडियो कार्टून बनाया था और उसकी 2-3 कड़ियाँ प्रसारित हुई थी। तो इस तरह आकाशवाणी का माहौल जो है उसमें घुलने मिलने का अवसर मिला और ये सब साथ साथ ही चलता रहा सिलसिला। उसके बाद में फिर जब आगे चल के फिर ये महिला सभा में या युवाणी में, तो रीजनल प्रसारण के लिए फिर नाटिकाएं मैंने लिखी और बस ये रुचि बढ़ती गई, सिलसिला चलता गया।
1: तो हम कह सकते हैं कि बहुत पहले से ही रेखाओं और आकृतियों में आपकी दिलचस्पी थी
0: जी,
1: लेखन और कार्टून के रूप में बाहर निकली।
0: बस बस यही समझ लीजिए। अब जैसे कार्टून्स में जो ऊपर कैप्शन लिखे होते हैं वो भी अपनी तरह का एक छोटा लेख ही होता है।
1: बिल्कुल, वो बहुत तो, कुछ गागर में सागर का काम करता है।
0: जी आपने बिल्कुल सही कहा
1: जी। तो कार्टूनिस्ट बनने के लिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किन किन बातों का होना जरूरी होता है, मतलब कौन से गुण होने चाहिए कार्टून बनाते वक्त एक कार्टूनिस्ट में।
0: सबसे पहले तो उसको जिसे हम सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं, हास्य की समझ, वो जरूरी है कि हमारे आचरण में वो चीज आ जाए कि हम जब बात करें तो थोड़ा हंसें बोलें, या कोई अगर हंस भी रहा है या उसने हम पे कटाक्ष भी किया तो हम रोने ना लग जाएं या तो

0: मिजाज ही ना बताएं, बल्कि उस चीज़ को एक कहते हैं हेल्दी वे में लेना चाहिए, और उससे ही धीरे धीरे एक वो इंसान का एक लहजा विकसित होता है, स्टाइल बनती है कि किस तरह से हम किसी को चोट पहुंचाए बिना हम कार्टून बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हास्य की समझ, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन, अपने आसपास की चीज़ों को देखना, अपने रीति रिवाजों को देखना, घटनाओं पर नज़र रखना। तो ऑब्जर्वेशन और फिर पढ़ना बहुत सारा कि पहले हमारे साहित्यकार क्या लिख गए हैं, क्योंकि हम जब कार्टून बनाते हैं उसमें खबरें तो ठीक है, हमें खबर मिल गई, ताज़ा खबर उस पर बनाना है, लेकिन जो एक सलीका होता है, जो सीमा होती है, उसके लिए हम साहित्य, जो हमारे पहले के लोग काम कर गए हैं अपने कथ्य से, अपनी
1: जी
0: भाषा से,
1: जी
0: उस सबका हमको एक समझ मिलती है और समावेश करते हैं कार्टून
1: बहुत
0: में।
1: बहुत गहरी बात कह दी आपने
0: जी
1: देवेंद्र जी, कि सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जरूरी है और आसपास की घटनाओं पर।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: तो सबसे पहला कार्टून आपने कौन सा बनाया था और वो दिमाग में कैसे आया?
0: सबसे पहला कार्टून मैंने बनाया, उसका मतलब किस्सा ये है कि पहले मैं दीवारों पे, दरवाजों पे, सब तरफ कार्टून्स बनाया करता था,
1: अच्छा,
0: क्योंकि छोटे थे
1: तो घर की
0: तो
1: दीवारें आपने खराब
0: घर
1: कर
0: की
1: दी।
0: दीवारें बहुत खराब करते थे, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो घर के बड़े थे, माता पिता, वो लोग उसको बहुत ही खेल भावना से लेते थे, कभी नाराज नहीं हुए।
1: अच्छा।
0: उन्हें लगा कि चलो एक कला जो है वो जन्म ले रही है और विकसित हो रही है दीवारों पर ही सही। तो ये सिलसिला चलता था और उन लोगों ने आगे बढ़ाया, लेकिन हमारे एक ट्यूटर थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम कब तक ये दीवारें खराब करोगे, तो कुछ कागज पे बना के और अखबारों तक पहुंचो, तो ये छपने का सिलसिला होगा। तो उन्होंने ऐसी राह बताई, तो फिर हम 14 वर्ष के थे तो पहुंच गए अखबार में। तो वहाँ संपादक जी ने भी सब देखा, कार्टून्स देखे, कविताएं देखी, तो बोले कि हम तुम्हारे बेटा कार्टून भी छापेंगे, और आज से तुम बच्चों के स्तंभ के संपादक भी हुए।
1: अरे क्या बात
0: तो
1: है।
0: मैंने पूछा कि संपादक क्या होता
1: हाँ,
0: है
1: बिल्कुल,
0: तो
1: 18 साल का बच्चा है,
0: हाँ
1: उसका
0: वही
1: दिमाग
0: है।
1: यही होगा।
0: तो उन्होंने ये कहा कि जो रचनाएं आती हैं बॉक्स में इकट्ठी होती हैं, कविताएं, कहानियां, चुटकुले,
1: हाँ,
0: उनको तुम्हें देखना है, और उन्हें बहुत ज्यादा, अगर वो लंबे चौड़े हों तो उन्हें थोड़ा छोटा करना है, उनकी अशुद्धियां दूर करना है, और सामयिकता के हिसाब से कि जैसे दिवाली आ रही है तो ऐसा नहीं हो कि तुम होली की रचना रिलीज कर दो, तो वो करना है,
1: जी
0: और कार्टून्स भी हम तुम्हारे छापेंगे। इस तरह सिलसिला शुरू हुआ, और पहला कार्टून जो था, चूंकि इन दिनों करवा चौथ आ रही थी, तो मैंने सोचा क्या बनाऊं, तो मैंने बनाया कि एक व्यक्ति है, वो घर में बैठा अखबार पढ़ रहा है, उस व्यक्ति के सिर पे बाल नहीं हैं,
1: अच्छा,
0: और उनकी जो पत्नी देवी हैं वो खिड़की के बाहर खड़ी देख रही हैं, हाथ में पूजा की थाली है और वो चंद्रमा ढूंढ रही है चांद
1: जी
0: की तरह। तो छोटा बच्चा एक आया और वो आके कहता है कि माँ माँ आप बाहर चांद कहाँ ढूंढ रही हो, वो तो हमारे घर में मौजूद है, उसका इशारा पिता के सिर की तरफ
1: जी
0: था।
1: जी
0: ये इस तरह से कार्टून पहला बना था।
1: जी बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपका पहला कार्टून इस रूप में आया।
0: जी
1: जब बात पहले कार्टून की चली है तो इस कार्यक्रम का पहला गीत भी आपकी पसंद का सुन लेते हैं हम।
0: जी
1: बताइए।
0: पहला गीत तकदीर फिल्म का, वो मुझे बहुत पसंद है, आइए बाहर को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो देवेंद्र जी, आपने बताया कि 14 साल की उम्र में आप एक अखबार में संपादक के रूप में भी लग गए, बाल संपादक के रूप में, और आपने काम करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे इस कला को आपने विकसित किया होगा जब आप एक बाल संपादक बन गए, बहुत सारी चीज़ों के संपर्क में आए, खुद भी आपने कार्टून बनाना लगातार बनाए रखा, तो इस कला शैली को विकसित होने में आपकी नज़र में आपको कितना समय लगा?
1: विकसित होने में इसे समय की अवधि में इसलिए नहीं मान सकते कि ये विकास होना एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है हमेशा
0: जी।
1: हम नई चीज़ों को अपने में समाहित करते हैं कला में, और वो फिर हर दिन एक नई ताजगी, नयापन उसमें महसूस होता है। और वैसे शुरू के कुछ शायद एक आध साल ऐसे लगे होंगे जब काम करते करते लगा कि ये मेरी शैली हो सकती है, मैं इस तरह ही कार्टून बनाऊं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इसमें सब बात आ जाती है, प्रमुखता से किन पात्रों को उभारना है, बैकग्राउंड में क्या रखना है। और फिर मैं एक मेरी एक हमेशा कोशिश रहती है कि कार्टून का जो कोना कोना है उसमें से हास्य झलके, जाने कि एक गमला रखा है या कहीं ऊपर एक झाड़ फानूस भी है या कोने में एक पिल्ला बैठा हुआ है तो ये सब
0: ये सब तो, चीजें पात्र बहुत कुछ कहते हैं
1: जी। हाँ,
0: जब
1: बिल्कुल,
0: हम इन कार्टून्स पर नजर डालते हैं तो
1: मतलब ये बिल्कुल सही है।
0: पिल्ला बैठा हुआ है वो भी कुछ कह रहा ही होता
1: है। हाँ, कहता
0: है।
1: कई बार उसे जो संवाद मान लो हम किसी बड़े से नहीं कहलवा सकते है ना, और उसको इनडायरेक्ट वे में कहलवाना है, तो कहीं पिल्ला बोल देता है, कहीं ऊपर से उड़ती हुई चिड़िया आती है वो बोल देती है।
0: बिल्कुल सही कहा
1: जी।
0: तो आप जब एक खाली कैनवास या कागज आपके सामने होता है तो हर दिन की अगर हम बात करें तो पहला विचार क्या आता है आपको?
1: कागज और कैनवास जब खाली होता है पहले तो विचार आता है, उसके बाद कागज आता है। और वैसे भी खाली कागज और कैनवास सहन नहीं होता, ऐसा लगता है कि अपने को बुला रहा है और कह रहा है कि आओ मुझ पर आप कुछ ना कुछ बनाओ और रंग से आप भर दो मुझे, ताकि मैं पाठकों के अंदर में जो है रंग उसकी सृष्टि करूं, बिखेरूं रंग को।
0: बहुत सुंदर जी जी जी। तो हर दिन आप एक कार्टून बना लेते हैं या हर दिन ये रचना होती है?
1: जी हाँ, हर दिन, क्योंकि ये समय के साथ चलना होता है। जैसे अगर आप अखबार में हैं, दैनिक अखबार में हैं, तो रोज आपको बनाना है, और अगर आप पत्रिका में हैं, पाक्षिक पत्रिका में, तो इंसान थोड़ा सा सुस्त सा हो जाता है कि आराम से आज नहीं तो अपन फिर बना दें, 15 दिन में ही तो निकलनी है।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरा कुछ मिजाज इस तरह से डेवलप हुआ कि, और स्पीड भी ऐसी बनी कि खूब सारे कार्टून एक दिन में। तो प्रदेश का सबसे बड़ा जो अखबार है उसमें जब मेरी एंट्री हुई तो वहाँ पर यही था कि जब शुरू में मैं गया तो एक पहला कार्टून बना कर दिया, संपादक जी खुश हुए कि हाँ इसको ले लेंगे। थोड़ी देर में हम दूसरा बना के फिर ले गए, वो बोले ठीक है इसे फलां पेज पे ले लेंगे। फिर पहुँच गए तो उन्होंने हंस के कहा, श्रीमान जिस गति से आप बना रहे हैं उस गति से हम नहीं छाप पाएंगे तो
0: अच्छा।
1: आप थोड़ा आहिस्ता तो मैंने
0: मतलब आप इतनी तेजी से इतनी रफ्तार के साथ एक दिन में कार्टून।
1: जी हाँ जी हाँ, मेरा 17 कार्टून्स एक दिन में, इसका

0: मतलब है हाईएस्ट जो
1: 17,
0: रिकॉर्ड, हाँ
1: 17
0: रिकॉर्ड
1: कार्टून
0: है,
1: आप एक दिन में बना
0: एक दिन
1: लेते
0: में
1: हैं।
0: बनाने का रिकॉर्ड है। मतलब कि वो भी बस तब हुआ था कि उस अखबार विशेष का जब दीपावली अंक आ रहा था, उन लोगों ने कहा कि हमें अब जल्दी से अंक निकालना है क्योंकि हम लेट हो रहे हैं, तो कल से शुरुआत, मैंने कहा आज से भी कर सकते हैं। तो उस दिन के जो अगले पन्ने का कार्टून, फिर एक जो साप्ताहिक मैडम मोहिनी आती थी, बड़ा पॉपुलर कार्टून कॉलम है वो, तो उसका स्ट्रिप उसकी तैयार की, फिर उसके बाद में अंतिम पत्र के साथ का कार्टून, फिर उसके बाद में राशि के 12 कार्टून, 12 सिंह राशि का हमने बना दिया। चपरासी आया, बजट लेके अंदर पहुंचा, मशीन पे जा रहा है, तब तक हमने कन्या राशि का बना दिया। इस तरह से ये सब कार्टून्स।
1: अरे वाह, बहुत सुंदर। तो आपके विषय क्या रहते हैं इन कार्टून्स के, हर बार क्या विषय चुनते हैं आप?
0: विषय वही जो हमारे आसपास बिखरे होते हैं रोजाना के, जैसे खबरें अखबार की या जो बाहर की जो हम घटनाएं देखते हैं, हाँ सामाजिक विषय होते हैं, राजनीतिक भी होते हैं, वही सब सारे विषय होते हैं। और बस वो पाठक को गुदगुदा दें, बस कोशिश यही रहती है कि बहुत ज्यादा दुरूह और जटिल ना हो,
1: हाँ।
0: और इतने भी सिंपलिसिटी उनमें, ऐसे भी ना हो कि सड़क छाप नजर आए
1: जी,
0: वो चीजें
1: मतलब चुटकुला भी न लगे,
0: हाँ,
1: कि आप किसी जोक को सुना रहे ना, ऐसा भी न लगना कि जोक्स नहीं है, क्योंकि एक बारीक अंतर है जोक्स और कार्टून के मध्य,
0: कार्टून्स में बिल्कुल
1: कि कार्टून कला क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। तो कई बार ऐसा भी होता होगा देवेंद्र जी, आपने कहा कि आप एक दिन में 17 कार्टून्स बना लेते हैं या लगातार बहुत तेजी के साथ बनाते हैं, कभी ऐसा आया कि दिमाग खराब है या गुस्सा है या परेशान है और कोई विचार सूझ ही नहीं रहा है, ऐसी स्थिति कभी आई आपके सामने?
0: ऐसी आ सकती थी, लेकिन पता नहीं ईश्वर ने मुझे शाप देकर भेजा है, यानी कि घर में आप समझ लीजिए कि बुरी से बुरी दुर्घटना ऐसी कोई हुई हो,
1: हाँ।
0: जबकि हमारे यहाँ पर नानी हमारी नहीं रही,
1: हुँ.
0: उस दौर में भी और कोई हो तो 13 दिन छुट्टी लेके बैठ जाए, लेकिन हम दूसरे दिन गए और फिर चूंकि अभी हंसी वाला मामला है तो पता नहीं कहाँ से कौन सी बत्ती जलती है और आप वही चीज़ बनाकर आते हैं और लोगों को मालूम भी नहीं रहता कि इनके परिवार में क्या हुआ है, जाके अपना काम करते हैं हंसी खुशी, क्योंकि वो काम है ईश्वर ने सौंपा है तो करना है, वो बात है। और
1: बहुत बड़ी बात, यानी आप पूरी तरह से समर्पित हैं अपनी कला के प्रति।
0: जी हाँ बिल्कुल।
1: तो इस कार्टून की अगर हम बात करें, आज मानव जीवन में क्या उपयोगिता है जब डिजिटल युग आ गया है, इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, दुनिया भर के समाचार, दुनिया भर की खबरें और अनाप शनाप भरा हुआ है,
0: हाँ,
1: जहाँ ऐसे में एक छोटा सा कार्टून जो एक अखबार के कोने में, पत्रिका के कोने में कहीं होता है बैठा हुआ, उसकी क्या उपयोगिता लगती है आपको?
0: कार्टून की उपयोगिता मंदाकिनी जी शुरू से बहुत रही है और आज के समय में तो उपयोगिता इसकी काफ़ी है, क्योंकि आज हर इंसान जिसे हम देखें वो अपने तनाव में, समस्याओं में घिरा हुआ है, उसको टेंशन है, ऐसे में अगर वो किसी कार्टून के टच में आता है तो उसके चेहरे पर जो एक हल्की सी मुस्कान आती है वो रिलैक्स हो जाता है, तो ये उस कार्टून की सफलता और उपयोगिता है, क्योंकि अगर वो हंस देता है तो उससे मतलब राहत तो मिलती है उसको, और अपने टेंशन से लड़ने के लिए, समस्याओं से लड़ने के लिए उसको एक नई शक्ति मिलती है, ताजगी मिलती है, वो कार्टून की ही देन होती है।
1: और आज भी इसकी उपयोगिता
0: इसकी बिल्कुल बिल्कुल बनी हुई, क्योंकि हम देखते हैं ना कि अगर हम हंस दिए तो माहौल कितना हल्का फुल्का हो जाता है, है ना, और नहीं हंसेंगे तो बोझिल हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि हंसने की जो देन है, हास्य का जो उपहार है, ईश्वर ने मनुष्य को ही दिया है। हमने कभी वॉल्ट डिज्नी के कार्टून के अलावा किसी कुत्ते को हंसते हुए नहीं देखा या किसी चूहे को हंसते नहीं देखा
1: जी, जी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब हास्य की बात चली है तो क्या कार्टून में हास्य अधिक होना चाहिए या व्यंग्य?
0: हाँ ये प्रश्न भी आपका बहुत अच्छा है और अक्सर लोग इस अनुपात को नहीं कायम रख पाते हैं, लेकिन मैंने इसको एक अनुपात मैंने अपना तय कर रखा है कि उसमें व्यंग्य भी होना चाहिए और उसमें हास्य भी होना चाहिए, ताकि सभी को कुछ ना कुछ मसाला मिलता रहे। और फिर अपन कहते हैं ना कि कोई कड़वी बात भी हो तो उसको मीठी चाशनी में अगर लपेट कर प्रस्तुत करते हैं तो उसका असर अधिक होता है और उसका आनंद भी रहता है, तो कार्टून्स में भी यही किया जाता है। जैसे कि कोई समस्या है मान लीजिए, उसको अगर व्यंग के माध्यम से हम कहें तो वो कड़वा भी हो सकता है, वो क्रूर भी हो सकता है और उस शुष्क भी होता है वो
1: जी।
0: लेकिन अगर उसमें हास्य हमने डाला है तो फिर वो सरस हो जाएगा और बात रहेगी वही, लेकिन उसका कहने का एक तरीका बदल जाएगा, तो लोग हंसते हंसते उस चीज को ग्रहण करेंगे और सिस्टम सुधारने के लिए हमने जो सोचा है वो बात जहाँ जानी है वो पहुँच जाएगी।
1: बस बिल्कुल सही कहा आपने, और बड़ा गुदगुदाते हैं ये कार्टून।
0: हाँ,
1: तो एक दो अपने कार्टून के बारे में बताइए।

0: की जहां आपको लगा हो कि मैंने इसमें हास्य और व्यंग का बहुत ही संतुलित प्रयोग किया है।
1: जी हाँ, जैसे हम सुनते हैं ना कि ये जो अक्सर देखा भी गया है कि किसी को कुर्सी मिल गई, मान लीजिए नेता को मिल गई, तो उस कुर्सी से उसको मोह हो जाता है, उसे सत्ता का मोह भी हम कहते हैं, प्रतीक में है कुर्सी, तो उस कुर्सी को मुश्किल से ही जब वो हासिल होती है तो छोड़ता भी इंसान मुश्किल से। इस पर मैंने एक कार्टून बनाया था कि एक नेता महोदय हैं, वो अपनी कुर्सी पर कस कर बैठे हुए हैं, उसके हैंडल वगैरह पकड़े हुए, इतने उनका नौकर आया कुर्सी झाड़ने के लिए कपड़ा लेकर, तो वो कह रहा है कि मालिक आप थोड़ा सा हट जाएं तो मैं कुर्सी को झाड़ लूं। तो नेताजी ने क्या किया, ये तीन फ्रेम्स में कार्टून, दूसरे फ्रेम में वो ऊपर उठ गए, कुर्सी के हत्थे उन्होंने कस के पकड़ लिए हैंडल और पूरे ऊपर उठ गए हैं और कह रहे हैं कि लो भाई तुम कुर्सी झाड़ लो पर इसको छोड़ूंगा तुम्हें बिल्कुल नहीं। तो ये एक वृत्ति की तरह हमने संकेत भी दिया और हंसी हंसी में वो बात भी हो गई।
0: तो चलिए अभी एक गीत आपकी पसंद का हम सुन लेते हैं।
1: हाँ, सागर फिल्म का गीत है जिसे SB बालासुब्रमण्यम ने गाया है, सच मेरे यार है बस वही प्यार है। हाँ।
0: बहुत सुंदर और गहरा गीत है, एक दार्शनिक गीत है, कमल हासन साहब पर्दे पर दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल
0: बहुत सुंदर।

0: तो देवेंद्र जी, आपके कार्टून्स के बारे में हम बात कर रहे हैं और बहुत ही शानदार कार्टून्स हैं जिन्हें हम जब जब पढ़ते रहे हैं तो लगता है कि गुदगुदाहट होती ही है। कार्टून्स बनाते समय एक कार्टूनिस्ट को कैसा माहौल चाहिए होता है, मतलब वो किस तरह का माहौल पसंद करता है?
1: जैसे हर रचनाकार की पहली शर्त होती है रचना करने के लिए कि एकांत हो, शांति हो, वही कार्टून के वक्त भी बनाते वक्त भी मुझे यही लगता है कि वहाँ शोरगुल ना हो थोड़ा, ताकि कंसंट्रेशन हो सके। और उसके लिए बस मैंने सोचा, हमेशा शांति तो महसूस नहीं होती, तो वहीं फिर आपकी विविध भारती काम आती है।
0: अच्छा, कैसे?
1: रेडियो एक छोटा छोटा सा ट्रांजिस्टर है मेरे पास में, बजता रहता है और उसमें जो संगीत की लहरियां निकलती हैं बस उसी परिधि में हमारा ध्यान होता है और बस आराम से कार्टून बन जाता है। और यही विधि जब मैं पढ़ाई करता था तब भी यही सब चलता था कि धीमे धीमे रेडियो बज रहा है और आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पाठ याद कर रहे हैं। तो कार्टून के लिए भी एक तो संगीत हल्का हल्का मध्यम संगीत हो और मंदाकिनी जी की आवाज़ हो
0: और शुक्रिया
1: और साथ में अगर चाय का गर्म प्याला मिल जाए,
0: अरे वाह,
1: तो ये बहुत अच्छी बात है।
0: आपने बहुत ही क्लासिक तरीके से बात समझाई है। वाकई ये एक माहौल एक कलाकार को चाहिए होता है, चाहे वो लेखक है, चाहे कार्टूनिस्ट है, या वो सिंगर है, कोई भी कलाकार।
1: बहुत थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है, एक छोटी सी जगह में बैठ के अपना काम बस हो जाता है कंप्लीट बस।
0: तो क्या कार्टूनिस्ट के जरिए जब आप लोगों को हंसाते हैं तो आपको खुद भी क्या खुश मिजाज होना पड़ता है कार्टूनिस्ट को? पहले
1: बिल्कुल होना पड़ता है, उर्वर भूमि जो होगी उसी में तो फिर अच्छा पौधा खिलेगा, फूल खिलेगा। तो हंसना हंसाना तो बहुत ज़रूरी है, और बल्कि मुझे लगता है कि जब आइडिया हमने जब चित्रित कर लिया या आइडिया के टच में आए तो पहले हमारा खुश होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें लगता है कि हाँ हम खुल के हंस दिए, हमें रोम रोम पुलकित हो रहा है, तब लगता है कि ये अब वेल टेस्टेड हो गया और ये जाकर ये पाठकों को ज़रूर ये गुदगुदाएगा और बात जो हमारी कहना है वहाँ तक पहुँचेगी।
0: सबसे तो बड़ी बात,
1: हाँ ये बहुत जरूरी है,
0: मतलब दिमाग की खिड़कियाँ खुली होनी चाहिए।
1: खुली होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, उसमें ये नाप तोल के मुस्कान वाला काम नहीं चलता है।
0: हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप किसी विधा पे काम करते हैं तो पहले खुद को उस विधा से जोड़ने के लिए वैसा बनना पड़ता है।
1: वैसा बनना पड़ता है, बिल्कुल जरूरी है।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई। जो श्रोता इस समय आपको सुन रही है उनमें बहुत लोग ऐसा हो सकते हैं कि वो कार्टूनिस्ट हो, तो वो भी इस बात को ध्यान रखेंगे कि एक कार्टूनिस्ट को खुद भी वैसा मिजाज रखना पड़ता है पहले। तो अपने कार्टून में जान फूंकने के लिए देवेंद्र जी आप किन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं?
1: सबसे पहला तत्व तो है आइडिया, उसके बाद में कागज पर उसे उतारते हैं, वो पेंसिल की मदद से, पेंसिल पेन ब्रश ये सब चीज़ें होती हैं, और उसके बाद में जब कार्टून मुकम्मल हो जाता है फिर उसे कंप्यूटर में ले जाकर वो ट्रीटमेंट देते हैं और फिर वो आगे बढ़ता है इस तरह से। कार्टून ऐसे तैयार होता है, बस ये बेसिक तो यही है। बाकी जो कला जो है अगर देखा जाए तो कला हाथ में होती है, किसी टूल्स में नहीं होती है, मतलब हर वक्त नहीं होते हैं जरूरी, लेकिन जब आप अखबार के लिए काम कर रहे हैं, मैगजीन्स के लिए कर रहे हैं, हाँ जब कर रहे हैं उस वक्त में, जो मैंने आपको बताया शुरुआत में कि पेंसिल से शुरू हो गई यात्रा, ये कंप्यूटर पर खत्म होती है, ये चीज है।
0: तो आप तो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह के विषयों पर कार्टून बनाते हैं, क्या कार्टूनों की कोई सीमा रेखा होती है जिसके अंदर ही एक कार्टूनिस्ट को काम करना होता है?
1: बिल्कुल होती है, और सीमा
0: थोड़ा हमें बताइए किस तरह की ये लाइन होती है, क्राइटेरिया जिसे हम कहते हैं।
1: हाँ, ये सीमा रेखा दरअसल वही होती है जो एक सभ्य मनुष्य को भी पालन करना चाहिए।

0: नैतिक आर्टून्स में भी है कि आप एक तो नैतिकता का ध्यान रखें, मानवता का रखें, और जो हम कहते हैं कि सब बराबर हैं, सारे जीव जंतु सारे इंसान बराबर हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर मेंटेन करते हुए, और किसी पर हम मान लीजिए कि कटाक्ष भी करें तो हल्का फुल्का करें हंसी के साथ, लेकिन ऐसा ना हो कि वो मामला तूल पकड़ ले। और हम कहते हैं ना कि जैसे हास परिहास वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी का उपहास करना वो चीज बहुत बुरी है। तो कार्टून में इन चीजों से बचा जाता है, तो बचना चाहिए।
1: ये एक सीमा रेखा है।
0: हाँ, ये सीमा रेखा है, किसी का असम्मान भी ना हो किसी का, ये चीज भी बिल्कुल ध्यान में रखना है। और कार्टून में भाषा, किस तरह की भाषा आप ले रहे हैं वो भी देखना है, कि कोई बहुत ज्यादा क्लिष्ट ना हो और बहुत चलता हो लैंग्वेज भी ना हो, और कार्टून का जो कैप्शन होता है वो थोड़ा छोटा हो, बहुत ज्यादा विस्तार भी उसमें ना हो, ये सब चीजें हैं। एक चीज इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि तरह तरह की जो प्रतिक्रियाएं मिलती रही, शुरू में बहुत मिली, अच्छी ज्यादा मिली, जिनसे कि इंसान प्रोत्साहित होता है और आगे बढ़ता है। आपने बालकवि बैरागी जी का नाम सुना होगा, है ना, सुप्रसिद्ध गीतकार और सांसद। तो बालकवि जी ने मेरा एक कार्टून देखा था जब मैंने बनाया था मध्य प्रदेश की सरकार को लेकर तत्कालीन, तो उस कार्टून को देखकर उन्होंने, वो कार्टून अप्रिशिएट भी बहुत हुआ था, और बालकवि जी का मुझे पत्र मिला
1: जी,
0: प्रिय देवेंद्र तुम बहुत दुष्ट हो,
1: अच्छा
0: तुम्हें पता नहीं तुम्हारा यह कार्टून लोगों ने फ्रेम करवा कर रख रखा है, और किसी भी कलाकार के खाते में यह बहुत बड़ा जन प्रतिदान है, मेरी तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। मतलब बाल कवि बैरागी साहब आपको ये बात कह रही है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और देखिए उनके कहने में भी कितना अपनत्व है और गहराई है।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है।
1: बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि एक कार्टून जैसी छोटी सी विधा है, बहुत गहरी विधा है, उसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साहित्यकार कलाकार भी
0: देखते
1: सुनते हैं और सराहते हैं।
0: सही बात है।
1: चलिए आपकी पसंद का गीत सुनते हैं।
0: बस यहाँ बालकवि बैरागी जी का लिखा हुआ रेशमा और शेरा फिल्म का गीत कैसा रहेगा?
1: बिल्कुल अच्छा रहेगा।
0: तू चंदा मैं चांदनी।
1: आइए सुनते हैं बालकवि बैरागी का लिखा ये बहुत ही खूबसूरत गीत।
0: जी बिल्कुल।

0: तो देवेंद्र जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना अभी बैरागी साहब का लिखा हुआ। तो आप चूंकि इतने कार्टून्स बना चुके हैं, उस पर भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि आपकी पसंद का कोई कार्टून जिसके बारे में आप बताना चाहें जो आपको बेहद पसंद हो।
1: मेरी पसंद के तो बहुत सारे कार्टून्स हैं। अभी मैनेजमेंट पर बनाया कार्टून याद आ रहा है मुझे,
0: बताइए
1: कि एक दादाजी हैं, ये तीन फ्रेम्स में बनाया हुआ था ये, कि एक दादाजी हैं वो लेटे हुए और अपने पोते से बोल रहे हैं, कम उम्र का पोता है, कि बेटा मेरे पैर दबा दो, बहुत दर्द कर रहे हैं मेरे पैर। तो कहता दादाजी मैं अभी आता हूँ। और फिर वो जब लौटा तो उसके हाथ में आरी थी काटने वाली, आरी लेके आया वो। तो दादाजी सहम के बैठ गए पैर सिकोड़ के। आरी क्यों? बोले दादाजी हमारे मैनेजमेंट गुरु कहते हैं किसी भी काम को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, उसके बाद उस काम को पूरा करो।
0: वाह, बहुत खूब, बहुत खूब।
1: और एक कार्टून और भी ध्यान आ रहा है कि जैसे कार्टून कई बार ये घटनाओं पर होते हैं, खबरों पे होते हैं, ट्रेंड्स पे होते हैं, मनोविज्ञान पे भी कार्टून बनाने मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि किसी किशोरी का मनोविज्ञान, ये मैंने ऑब्जर्व किया था, तो उस पर कार्टून मैंने बनाया जो महिलाओं के स्तंभ में छपा था
0: जी,
1: कि एक टीनेजर कन्या है, वो अपने घर में बिस्तर पर औंधी लेटी हुई कुछ कविताएं वगैरह लिख रही है
0: जी।
1: पास में गुलाब के फूल भी हैं, डायरी है ऐसा, और वो अपने सपनों में खोई हुई है, और कुछ पंक्तियां भी हैं जो हम बाद में देखेंगे क्या वो कह रही है। और पंक्ति ये है कि सपनों में बस गई है एक मादक गंध, सपनों में बस गई है एक मादक गंध, मानो दूध उफन गया हो कहीं। और उस कार्टून में पीछे बताया गया है कि गैस पे वास्तव में दूध चढ़ा हुआ है और उफन के और बह रहा है और पूरे फर्श पे फैला है। और इसमें मजा और कि दरवाजा खुला और उनकी माता जी सब्जी वगैरह लेके आ रही हैं और उन्होंने दूध देखा तो अंगारा हो गई वो।
0: जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितनी गहरी बात आपने कही कि एक किशोरी मन की क्या जो है सोच होती है, मनोविज्ञान क्या होता है किशोरपन का, वो आपने इसमें बताया, बहुत सुंदर। एक साधारण स्केच से लेकर अंतिम प्रकाशित कार्टून तक की आपकी जो प्रक्रिया है वो क्या रहती है?
1: उस प्रक्रिया में सबसे पहले आता है विचार। उस विचार में ध्यान ये रखते हैं, क्योंकि कई बार विचार ऐसा भी आता है, मान लीजिए उसको पहले मैं कहा करता था साथियों में कि मुझे शेर जैसा विचार आता है और उसको मैं पीट पीट कर बकरी जैसा बनाकर पेश करता हूँ। तो ये जो बकरी जैसा बनाना जो है, ये दरअसल एक सामंजस्य वाली चीज़ है
0: जी।
1: और ताकि जिससे सब लोग खुश रहें और उतना तीखापन महसूस ना करें कि बात बिगड़ जाए, तो उस तरह से कार्टून बनता है। तो पहले विचार आया और विचार के बाद में, जैसे हाँ आर के लक्ष्मण साहब ने भी कहा था
0: जी,
1: कि पहला विचार जो आता है उसमें मत आप उलझ जाओ, वो आपको लुभाता है और ललचाता है, इसलिए उससे आप और आगे चलो, सेकेंड थाट, फाइनल थाट, ऐसे करके, तो उसमें उसका रिफाइनमेंट होता है, आगे वो चीज़ें चलती हैं। तो ये प्रक्रिया मेरी भी है कि पहला विचार आया, उसको अलग रखा, फिर और उस पर सोच रहे हैं, अलग अलग कोण से सोच रहे हैं, अलग अलग उसमें सिचुएशंस भी बनती हैं, और फिर जब वो रिफाइन होकर वो आता है तो अच्छा लगता है, देख के मन खुद कहता है कि नहीं ये चीज़ बढ़िया है और ये आगे बढ़ना चाहिए।
0: जी, बहुत सुंदर। बिल्कुल यही काम करने का भी तरीका है कि आप अगर विचार पे अटक कर रह गए
1: पहले
0: वही खड़े रह जाते हैं।
1: बस बस।
0: तो आज के डिजिटल युग की हम बात कर रहे हैं और इंस्टाग्राम जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो कार्टूनिस्ट के काम करने का क्या तरीका बदला है?
1: तरीका तो नहीं बदला है, ये है कि
0: विचार बदला होगा,
1: विचार भी बदला है, और मैं विचारों में भी आज जो हम कहते हैं ना, एक गरिमा

0: नहीं, आजकल जो हो रहा है वो गरिमा उतनी नहीं, उसको मेंटेन करके चलना चाहिए, क्योंकि भाषा की भी खूबसूरती एक होती है कार्टून के अंदर, वो है। और पात्रों की जो विविधता, जो जैसे हम चुनते हैं कि हर बार रोज एक ही एक तरह का आप बना रहे हैं, सूटेड बूटेड ये वो, उसके बजाय आप लोक जीवन में उतरें, बाहर देखें सड़क पे कितने तरह के पात्र दिखाई देते हैं, तो कभी बात उनसे भी कहलवाएं, ये होता है अलग अलग पात्र अलग अलग बात कह रहा है, तो उसका मजा आता है।
1: तो लोक जीवन से जुड़ा कोई कार्टून आपको याद हो आपका बनाया हुआ?
0: लोक जीवन से जुड़ा मेरा कार्टून एक ध्यान आ रहा है मुझे, वो भी थोड़ा इस तरह का है कि जैसे जब वीमेन स्लिप का जो चला था, शुरुआती जोर था, तो उसमें मैंने बताया कि एक खेत में किसान बैठा हुआ है, फुर्सत के लम्हों में हल चला के बैठा है, और पास में उसकी जो पत्नी है वो पोटली में रोटी वगैरह लेके आई है, और प्याज और है ना मिर्ची ये सब अचार, तो वो खाना खा रहा है और वो पंखा चल रही है उसको बैठे हुए, है ना, कितना सुंदर दृश्य। तो इसमें तो एक तो आपने पूरा बैकग्राउंड दिखाया, झोपड़ी दिखाई, खेत दिखाया, हल दिखाया, उसका स्त्री और पुरुष का पहनावा, तो इसमें लोक जीवन की, लोक पहनावे की झलक मिली। अब उसके बाद वो सड़क से दो आधुनिकाएं जा रही हैं कार से, तो उनने कार रोकी और ये दृश्य देख के वो कह रही हैं कि ये कितनी अभागी औरत है ये, मतलब नारी स्वातंत्र के विचार से एकदम अनजान है, चलो इसे हम चल के और उसकी दास्ता से मुक्त कराएं, पुरुष की दास्ता से। तो ये ऐसी चीजें हैं,
1: बहुत बड़ा व्यंग्य, बिल्कुल सही कहा आपने कि दो स्त्रियों की मनोदशा आपने बताई कि जो ग्रामीण परिवेश की स्त्री जो सुख अनुभव कर रही है,
0: अनुभव कर रही है,
1: आधुनिक परिवेश की स्त्री उस सुख को नहीं जान पा रही है और उसको दास्ता बता रही है।
0: हाँ, तो ये जो विसंगति है बस इसको ये उसमें दिखाने की कोशिश
1: है। बहुत सुंदर देवेंद्र जी, बहुत सुंदर। तो अगर मैं देवेंद्र जी से ये पूछूं कि इतने कार्टून्स आपने बना लिए, लगभग कितने कार्टून्स बना लिए होंगे?
0: ये 60,000 से ऊपर हो चुके हैं, ये
1: 60,000 से ऊपर कार्टून आप बना चुके हैं अब
0: जी,
1: तक
0: जी, जी, जी,
1: और ये विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छप रहे हैं या इन पर आपने किताब भी लिख ली है?
0: ये किताब में तो ये नहीं आ सकते, अभी मेरे तो करीब 6-7 व्यंग संकलन ही निकले हैं, बाकी ये है कि इनके ऊपर, हाँ आपको ये बता दूं, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो भी यूएसए का वो मिला है।
1: अरे वाह।
0: हाँ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिश्ड कार्टून्स उसके ऊपर।
1: अच्छा, तो 60,000 कार्टून आपने आज तक बना लिए हैं
0: जी,
1: इतने विचार, यानी 60,000 विचार तो आपको आ ही गए, और जाने कितने विचार और आने हैं।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: बहुत सुंदर, अद्भुत है ये बात, मतलब 60,000 कार्टून कोई छोटी मोटी बात नहीं है
0: जी,
1: है ना, 1,000, 2,000, 5,000, 6,000 के आंकड़े तो हम सुनते ही है 10,000 तक के, लेकिन 60,000 कार्टून बनाए रखना और उनको मेंटेन करना बिना किसी विवाद के,
0: हाँ जी,
1: ये कार्टूनिस्ट की बहुत बड़ी सफलता है। चलिए आपसे और बातचीत करने वाले हैं
0: जी,
1: एक गीत सुन लेते हैं, गीत बताइए।
0: न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, फिल्म का नाम है बातों बातों में,
1: बहुत सुंदर गीत है ये।
0: हाँ, अमित कुमार और आशा भोसले जी की आवाज है।
1: तो चलिए सुनते हैं
0: जी
1: आपकी पसंद का ये गीत।

0: देवेंद्र जी, जैसा कि मैं ये जानना चाह रही थी, पहले हम बचपन में चंपक और लोटपोट जैसी पत्रिकाएं पढ़ा करते थे और उसमें एक सीरीज चला करती थी कार्टून की, तो क्या ऐसी कोई सीरीज चलाने का आपने भी काम किया है कि एक लंबी सीरीज चल रही है किसी कार्टून पर, किसी विषय पर?
1: जी हाँ, मैडम मोहिनी नाम से एक सीरीज मैंने बनाई थी, वो 600 के लगभग उसकी आवृत्तियाँ छपी हैं, तो वो बहुत पॉपुलर था, वो परिवारों में, महिलाओं में, सभी लोग उसे पढ़ते थे।
0: अच्छा।
1: तो उसमें मैडम मोहिनी एक बताई गई है, एक तरुणी, तो वो डबल डेकर स्ट्रिप होती है, जो एक स्ट्रिप ऊपर एक उसके नीचे स्ट्रिप, उस तरह से। तो उसके कुछ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैडम मोहिनी बैठी हुई हैं और वो अखबार पढ़ रही हैं, इतने में उनका भतीजा आता है कि मौसी मौसी मुझे जूते पहनना है, जल के जूते पहना दो। तो बोलती है कि नहीं नहीं जूते क्या पहनना, अब 4 दिन की तो ये बारिश है और ये वो इस तरह बरसाती जूते तुम बोल रहे हो, तो रहने दो। फिर वो कहता है कि अच्छा तो मुझे एक नया बस्ता ही दिला दो स्कूल जाने के लिए। तो बोले अरे 4 दिन का तो तुम्हारा सेशन है, उसमें क्या नया बस्ता लोगे? तो बोले आप ये क्या अखबार में क्या पढ़ रही हो? बोले अरे झपट मत, मैं तेरे लिए मौसा जी ढूंढ रही हूँ। तो अखबार लेके भाग जाता और कहता है कि 4 दिन का तो जीवन है, इसमें जीवन साथी क्या ढूंढना।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: ऐसी इस तरह से
0: ये
1: सीरीज लंबी चली थी, हर हफ्ते
0: लोगों ने काफी पसंद किया, खासतौर से महिलाओं ने।
1: जी जी जी।
0: तो क्या महिलाओं के खत आपके पास आए, महिलाओं के फोन आपके पास आए, कोई महिला आपसे मिलने आई कि देवेंद्र जी आपने इतनी खूबसूरत ये सीरीज चलाई है और इसे पढ़ के हम तो गुदगुदा जाते हैं?
1: हाँ, उन्होंने कहा बिल्कुल, और उसमें अखबार में जो प्रतिक्रियाओं का एक कॉलम था उसमें बहुत प्रतिक्रियाएं आती थी, उसमें वो लिखते थे कि आज देवेंद्र जी ने राह बताई, ये किया, वो क्या, ऐसे अपनी अपनी टिप्पणियां सब
0: बिल्कुल, करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें तो लगता है कि जब हम अखबार पढ़ते हैं या आज भी पढ़ते हैं या पढ़ते थे, तो वो कार्टून जरूर तलाशते थे सबसे पहले कि अखबार में क्या आया है, ये एक निगाह रहती थी कि आज कौन सा कार्टून आया है किसी का भी।
1: हाँ।
0: तो ये निगाह हमेशा रही। तो आपके परिवार में जो और अन्य लोग हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, क्या उनका भी कभी विरोध हुआ कि क्या दिन भर आप कार्टून बनाते रहते हैं और हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, आप दिन में इतने अपने रिकॉर्ड तोड़ कार्टून बना लिए हैं? तो ऐसा कभी घर पर कोई कार्टून बनाया आपने पति पत्नी विवाद पर या बच्चों के विवाद पर?
1: उन लोगों से मतलब मतभेद का ऐसा अवसर आया नहीं, क्योंकि मैंने ये अखबार में जैसे जॉब रहता है तो उतनी देर के लिए आप बाहर गए, वहाँ कार्टून आप बना के चले आए, और फिर उस चीज़ को घर में मतलब फिर मैं बताता भी नहीं, कोई पूछे भी कि आप देवेंद्र हैं तो मैं कई बार सोचना पड़ जाता है कि क्या मैं हूँ क्या। और फिर जैसे कि अपन लोग बात कर रहे थे कि सबका साथ और सबको लेके चलना, ये जो चीज़ होती है, तो बच्चों के साथ आप गए मान लीजिए स्कूल लेकर जा रहे हैं, उन्हें घुमा रहे हैं, तो उसमें से भी आपके लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है। पत्नी देवी को लेकर आप स्कूटर पे गए सब्जी खरीदने, तो कुछ तो भाव ताव होना, ये सब चीज़ें तो वहाँ भी आप देखते हैं कुछ मिलता है मैटर। जैसे मैंने कार्टून बनाया था कि जैसे दल बदल वगैरह ज़्यादा होता है ना, तो उसमें मैंने बनाया था कि एक सब्जी वाली बैठी हुई है और तो जो ग्राहक है वो उससे कह रहा है कि भाई आपके जो आलू हैं या विधायक हैं वो देखो लुढ़क कर उधर टमाटरों में मिल रहे हैं।
0: जी
1: तो
0: जी।
1: ऐसी चीजें बस ये रोजमर्रा की जो होती हैं उनसे
0: बिल्कुल, यानी कि कार्टूनिस्ट को बहुत ही पैनी दृष्टि रखनी पड़ती है और हर समय जागरूक रहना होता है कि कब कहां से क्या मैटर मिल सकता है और कहां कैसा कार्टून बनाया जा सकता है। तो कार्टून की दुनिया में जो आना चाहते हैं, कार्टूनिंग की दुनिया में कदम रखने वाले जो नए

0: कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उन्हें बस मेरा यही संदेश है कि इस विधा को आप भले ही प्रोफेशनली ना अपनाएं, लेकिन शौकिया अगर आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट है तो उसको आप लेकर चलें। और क्योंकि ये विधा सबसे पहले आपको खुश रखेगी, फिर आपके सराउंडिंग को खुश रखेगी, इसलिए आप खुश रहने का एक बहुत अच्छा नुस्खा है, कैप्सूल है, तो इसको लेके आप साथ में चलें। और इस विधा को साइड में भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत हमेशा है, क्योंकि हंसी की ज़रूरत हमेशा है, अच्छे संदेशों की ज़रूरत हमेशा रहेगी।
0: बिल्कुल सही कहा देवेंद्र जी, आपके आदर्श कौन है? आपने इतना लंबा समय इस दुनिया में बिताया है, कार्टून की दुनिया में, आपके अपने आदर्श कौन रहे, किन से प्रभावित होकर आप आगे बढ़ते रहे?
1: मेरे आदर्श एक तो जीवन में सबसे पहले पिताजी से मैंने प्रेरणा ली, मेरे पिताजी जो हैं
0: जी।
1: और उन्हें मैंने कार्टूनों में बनाया भी है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि घर में जब बच्चा देखता है तो सबसे पहले पिता ही नजर आते हैं
0: जी।
1: तो जो कार्टून मैंने आपको अभी सुनाया था करवा चौथ वाला, उसमें हालांकि पिताजी के सिर पे बाल हैं तो उन्हें मैंने बनाया था वहां पर, और उन्हें पिताजी को लेकर कार्टून बनाने के अलावा उनसे बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी। एक तो जो हास्य रस, उनमें काफ़ी हर चीज़ में वो हंसते हैं, सामाजिक बहुत हैं, रिश्ते निभाते हैं, एक तो पिताजी से प्रेरित हुए, फिर उसके बाद जब आगे चलते हैं तो वही आर के लक्ष्मण जी जो सबके प्रेरणा स्रोत हाँ चाहते होते हैं, लक्ष्मण जी हुए, सुधीर दर और मारियो मिरांडा साहब ये, और बाहर के कार्टूनिस्टों में उडेर जो और डेविड लो और अपने वॉल्ट डिज्नी वो तो हैं ही, ये सब चलते हैं। तो इन लोगों से कुछ ना कुछ देखकर और लगा, इनकी विशेषताओं को देख के लगा कि वो उनमें से कुछ हम सीखें।
0: तो क्या लगता है आपको कि जो ये हमारे विदेशी कार्टूनिस्ट हैं उनमें और हमारे देश के कार्टूनिस्ट की विधा में, सोच में, विचार में कोई अंतर महसूस किया आपने?
1: हाँ, अंतर तो होता है, क्योंकि विदेशी लोग जो है उनके कार्टून्स भी विषय उनके उस तरह के होते हैं, और वहाँ के लोग अप्रिशिएट बहुत करते हैं क्योंकि वो हास्य प्रिय होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर उनमें काफ़ी डेवलप्ड होता है उसकी तुलना में। अच्छा, हमारे यहाँ विविधता ज़्यादा है, इतना हम लोग देखते हैं लोक जीवन में और सभी दूर,
0: वहाँ विविधता
1: हाँ,
0: नहीं है,
1: उतनी नहीं,
0: लेकिन
1: है।
0: लोगों में जागरूकता बहुत है, आम आदमी से जुड़े हैं वो।
1: हाँ, हाँ,
0: हमारे दैनिक जीवन में ये कार्टून नहीं होते हैं,
1: नहीं होते हैं। तो जैसे हम बताते हैं हमारी फिल्मों में और वहाँ की फिल्मों में जो फर्क होता है, हमारी फिल्मों में गाने भी डाले जाते हैं, ये सब चीज़ें, तो उसी तरह से कार्टून के लिए मैंने जो अपनी एक शैली विकसित की तो उसमें सभी की थोड़ी कविता भी होती है, थोड़ा नाट्य भी होता है और भाषा का भी आनंद, और बाकी स्केच तो है ही, ताकि एक अच्छा भरा पूरा उसमें एक मटेरियल सबको मिले।
0: तो देवेंद्र जी, चलते चलाते हम बस आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि भविष्य में आप अपने कार्टून के माध्यम से क्या नया संदेश देना चाहते हैं? कुछ ऐसे कार्टून्स जो अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं जिस पर आप काम कर रहे हो?
1: हाँ, नया विचार यही है कि जो आजकल रिश्ते जो टूट रहे हैं और यानी हम देख रहे हैं कि पहले तो केवल शादियों का मौसम आता था, है ना, उसका भी सीजन होता था कि हाँ भाई अब देव जाग गए या सो गए, और अब देख रहे हैं कि हम तलाकों का मौसम चल रहा है और वो बारह मासी है। तो उन चीज़ों को लेकर कि रिश्ते ना टूटें, इंसान समझदारी से इन्हें सहेजे, और जो हम देख रहे हैं कि माता पिता अकेले होते जा रहे हैं, ये सब चीज़ें एक बड़ी एक सामाजिक समस्याओं के तौर पर छूती हैं मन को, तो इन्हें लेकर काम करने की मेरी इच्छा है कि कार्टूनों के माध्यम से एक सीरीज़ में ऐसी तैयार करूं और वो प्रदर्शित हो और शायद इससे कुछ असर हो, मेरा भी एक आहुति मेरी भी रहे इसमें
0: जी,
1: सुधार में
0: जी। बहुत ये बात बहुत ही शानदार और एक समसामयिक विचार और गहरे विचार हमारी भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए कि माता पिता हमारे लिए क्या मायने रखते हैं।
1: हाँ।
0: और हम जो है बड़ी फैमिली में रहने वाले लोग आज कैसे अलग अलग हो गए हैं और ज़िंदगी में अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो रिश्तों की बात आपने कही कि रिश्तों को बनाए रखना, सहेजना बहुत ज़रूरी है, इस पर आप काम करना चाहते हैं, स्वागत है, और आपको हम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम,
0: शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। आज इस कार्यक्रम में आपने सुनी कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर

0: से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठ है। अब आज के मेहमान कार्यक्रम संपन्न होता है। नमस्कार।
1: आज के मेहमान।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। श्रोताओं, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना,

0: तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: अंतराल के बाद लीजिए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

सोना महापात्रा की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये गैर फिल्मी गीत। और आइए अब सुनते हैं हरिओम शरण का गाया ये भक्ति पथ।

हरिओम शरण की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये भक्ति पद। और आइए अब सुनते हैं बेगम आबिदा परवीन को।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: मुकेश की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं जिगर मुरादाबादी का कलाम। संगीतकार मुरली मनोहर स्वरूप हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म वीर दुर्गादास से लिया है। गीतकार पंडित भरत व्यास हैं और धुन बनाई है एस एन

0: उसका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।

0: से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
0: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
0: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
0: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: शुभा मुदगल और साथियों की आवाजों में अभी आपने श्याम अनुरागी की ये रचना सुनी। इसे संगीत में ढाला था गौरव इसर ने। और इस रचना के साथ ही
1: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल हैं। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स से WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
2: Women, we opened their

0: अकाउंट।
1: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
0: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
2: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का 8वां विमान काठमांडू पहुंचा। तमिलनाडु में मधुरंतकम और धरपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 19 तारीख है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच शाम 8 बजे दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 43 अंक गिरकर 74,722 जबकि निफ्टी 21 अंक गिरकर 23,411 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं संगीतकार दत्ताराम की कुछ फिल्मी संगीत रचनाएं।

दत्ताराम की संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे प्रदीप का लिखा ये गीत, युगल स्वर मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर के थे। फिल्म का नाम था जिंदगी और

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर। इस संदेश से पहले आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम था कैदी नंबर 911। गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीतकार थे दत्ताराम। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। दत्ताराम के संगीत निर्देशन में असद भोपाली का लिखा गीत है, स्वर लता मंगेशकर का, और फिल्म का नाम राका।

इस अंतराल के बाद यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं दत्ताराम के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा गीत, युगल स्वर लता मंगेशकर और मन्ना डे की फिल्म का नाम परवरिश।

यह आवाज़ें थी सुमन कल्याणपुर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की फिल्म का नाम था फर्स्ट लव। गीतकार थे गुलशन बावरा और संगीतकार थे दत्ताराम।

0: है प्यार हमको,
1: प्यार अमर है हमारा, बोले ये दिल का इशारा।
2: ये स्वर है लता मंगेशकर और मन्ना डे की, फिल्म का नाम है संतान, गीत रचना हसरत जयपुरी की और धुन दत्ताराम की।

0: लता मंगेशकर और मन्ना डे को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था संतान। और इससे पहले हम आपको बता दें, आप सुन रहे थे टार्जन कम्स टू दिल्ली फिल्म का गाना, गाने वाले कलाकार आशा भोंसले और उषा मंगेशकर थे।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना। हम

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संगीतकार दत्ताराम की कुछ संगीत रचनाएं।

चूहा भी आया बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया।

मैं तो हूँ मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, सीधा दिल्ली जाऊंगा, तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

0: भी आया बंदर भी आया छुन छुन करती आई चिड़िया
1: ग्यावस्थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था अब दिल्ली दूर नहीं। गीत को हसरत जयपुरी ने लिखा था और धुन बनाई थी दत्ताराम ने।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
3: मैं निकला ओ गटले
2: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
4: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
5: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
2: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
6: चिट्ठी ना कोई संदेश।
2: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: फिल्म काला आदमी का गीत सुनिए, आवाज सुमन कल्याणपुर की, शब्दकार हसरत जयपुरी हैं और संगीतकार दत्ताराम हैं।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हमने सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म बालक से लिया है। गीत को पंडित भरत व्यास ने लिखा है। संगीतकार दत्ताराम।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में अभी आपने फिल्म बालक का ये गीत सुना और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। गीतकार हैं गुलजार धीनवी, संगीतकार दत्ताराम, स्वर मुकेश, सुमन कल्याणपुर, महेंद्र कपूर और साथियों की। फिल्म का नाम है श्रीमान सत्यवादी।

0: बात कहूँ बल्ला ये हुस्न सुभान अल्लाह, एक बात कहूँ बल्ला ये हुस्न सुभान अल्लाह, जब नाम लिया दिल थाम लिया कहो कैसी रही।
1: बस

0: अल्लाह जब नाम लिया जी दिल थाम लिया तो कैसी कही
1: बस तुमने कदर की है क्या खूब नजर की है दिलदार मिले तो ऐसा मिले क्या बात कही।
2: दत्ताराम की संगीत निर्देशन में हम आपको अब इंदिवर का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है डार्क स्ट्रीट। गायिका है सुमन कल्याणपुर।

0: परख नहीं जाते हम इस दिल से परखते हैं दिल इस दिल से परखते हैं दिल सच कहने के आदि है हम तो सतवादी है
1: जब इसलिए नहीं तो कुछ भी नहीं तो कैसे कही
0: एक बात कहूँ वल्ला ये हुस्न सुबह

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश दत्ताराम का संगीत, शैलेंद्र के बोल, आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। फिल्म का नाम है जब से तुम्हें देखा है।

इस दो गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे संगीतकार दत्ताराम की कुछ संगीत रचना।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के तहत कल वोट डाले जाएंगे। 147 निकायों के करीब 4,700 वार्डों में हो रहे इस चुनाव में 18,266 उम्मीदवार मैदान में हैं। 45 वार्डों में निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। इस चरण में 6 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 121 नगर पालिकाओं में मतदान होना है। इनमें जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और पाली नगर निगम शामिल हैं। इस दौरान 87,60,000 से अधिक वोटर्स प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इससे पहले कल शाम चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। आज प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं। मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान दलों को प्रशिक्षण देकर रवाना किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं स्वीप अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। इससे पहले कल पहले चरण के तहत वोट डाले गए। इस दौरान लगभग 76% मतदान हुआ। 162 नगरीय निकायों के लिए हुए चुनाव में 43,95,400 से अधिक लोगों ने वोट डाले। सबसे अधिक 91.98% मतदान प्रतापगढ़ जिले की अरनोद नगर पालिका में हुआ। वहीं सबसे कम 63.84% मतदान भीलवाड़ा नगर निगम में हुआ। छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान सुचारू और शांतिपूर्ण रहा। इसी के साथ 20,600 से अधिक प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीन में बंद हो गया है। जोधपुर में भारत और जापान की वायु सेनाओं के बीच वीर गार्जियन 2026 युद्धाभ्यास किया जा रहा है। कल से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। इस अभ्यास में पहली बार जापानी लड़ाकू विमान भारतीय एयरबेस और वायु क्षेत्र में ऑपरेशनल मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। वीर गार्जियन का पहला संस्करण वर्ष 2023 में जापान में हुआ था। युद्धाभ्यास में जापान के मित्सुबिशी F2 लड़ाकू विमान और भारतीय वायुसेना के तेजस, सुखोई 30, MKI और राफेल

हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वीर गार्जियन अभ्यास से ये तालमेल और मजबूत होगा। उन्होंने जापान वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भारत जापान रक्षा साझेदारी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये दोनों देशों के बढ़ते विश्वास और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। डीग में पशुपालन विभाग की ओर से पशु औषधि विक्रय केंद्र शुरू किया जाएगा। विभाग की उपनिदेशक डॉक्टर भावना यादव ने बताया कि इन केंद्रों पर पशुओं के उपचार के लिए गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं बाजार की तुलना में कम कीमत पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके साथ ही पशुपालकों को मिनरल मिक्सचर, पशु आहार और अन्य जरूरी पशु चिकित्सा सामग्री एक ही स्थान पर मिल सकेगी। इससे पशुपालकों का समय और परिवहन पर होने वाला खर्च बचेगा। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ये दिन दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भावनात्मक तनाव और कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे लोगों को समय पर सहयोग, समझ और उचित देखभाल की जरूरत होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति की बात धैर्यपूर्वक और बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनना उसे मदद लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान कल काठमांडू पहुंचा। 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए भारत ने डीएनए प्रोफाइलिंग उपकरण उपलब्ध कराए हैं। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच शाम 8 बजे दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

ये स्वर थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों के। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन और फिल्म का नाम था आपकी कसम। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म आपकी कसम में इस गीत में किस्सा है कि किशोर कुमार जी हंसते हुए कहते हैं, बजाओ बेटा जम के बजाओ, ईमानदारी से बजाओ। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हंसना तो बहुत अच्छा है, लेकिन बिना मतलब की हंसी अच्छी नहीं होती। हाँ, दूसरे का मजाक बनाकर हंसना ठीक नहीं होता, लेकिन कार्यक्रम में हंसना बहुत अच्छा लगता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का प्रसंग बहुत ही आकर्षक और रोचक है, कहीं गीत याद आ रहे हैं और हो सकता है ये गीत आप इस कार्यक्रम में शामिल भी करें। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चिर हरित मुस्कान बिखेरने वाली मंदाकिनी जिनके व्यक्तित्व के अनुरूप विषय गान और मुस्कान भरी सुरीला सफर लेकर आ रही हैं, अत स्वागतम। वही एक श्रोता ने लिखा है कि नमस्कार, ये बात बिल्कुल सच है कि आपकी खनकती आवाज, प्यारी बातें सफर को बहुत सुहाना और मत भरे गीतों से बहुत ही रोमांचक बना देता है। आपका स्वागत है। गीतों में कुछ गुनगुना रहे हैं, आपने कुछ गीतों का जिक्र किया है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में कुछ पल हंसने के लिए मिल जाए तो समझना चाहिए कि शरीर को फ्री का टॉनिक मिल गया है, यानी कि हम विविध भारती के श्रोताओं को सुरीला सफर प्रोग्राम में आज 1 से लेकर 2 बजे तक फ्री में हंसने का टॉनिक देने वाली हैं उद्घोषिका।

एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर बहुत ही खूबसूरत है। आज के सुरीले सफर में गीत की शुरुआत में, बीच में या अंत में आ रही हंसी की बात तो होने जा ही रही है, वो तो होनी ही थी। लेकिन इसके अलावा एक और हंसी की बात मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी छोटी बहना कमेंट पढ़ते वक्त या बीच में या अंत में कभी कभी मंद मंद खिलखिलाहट के साथ जब हंस देती है तब लगता है कि हंसी से भरी फुलवारी हो, ऐसी प्यारी प्यारी न्यारी लगती है। ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके साथ में बज रहा है हमारा रेडियो, हंस रहा है। अच्छा एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती का सुरीला सफर है, सुहाना होता है शुरू 1 बजे रोजाना।

0: यहाँ कब किसकी कमेंट पढ़ी जाए ये किसने जाना। अरे वाह, आपने तो किशोर कुमार का गाना ही लिख दिया है। एक श्रोता ने कहा है कि हमारी भावनाओं, परिस्थितियों और शारीरिक प्रतिक्रिया पर आधारित है। हंसी के विविध प्रकार हो सकते हैं, खिलखिलाना, ठहाके मारना, दबे हुए हंसना, मासूम हंसना, उपहास भरी हंसी, घबराहट वाली हंसी और सबसे प्यारी खुशी या आनंद वाली हंसी। सुर और शब्दों के साथ एक छोटी सी हंसी गीत को चार चांद लगा देती है और सुरीला सफर में आपकी आत्मीयता भरी हंसी दिल में घर बना लेती है। आज की अनुपम सुंदर थीम पर इतने सारे गीत याद आ रहे हैं कि दो या तीन सुरीले सफर भी कम पड़ जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो आपने लिख भी दिए हैं कुछ गीत, हो सकता है कि ये गीत इस कार्यक्रम में शामिल भी हों। चलिए हंसते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत सुनते हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं ये, अनुराधा पौडवाल और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज है। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।
1: ये क्या, लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
2: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
1: ओह माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
2: हिंदी कविता है ना?
1: हाँ।
2: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
1: तुम और हिंदी कविता?
2: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर। वो इंग्लिश।

0: भूल गए
1: जानी मेरा नाम
0: अच्छा?
1: चोरी मेरा काम जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और शाम
0: बंडल बाज
1: लड़के मिलन गीत गाता चल
0: बेशरम
1: चार का मौसम
0: बेशरम

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि कभी कभी गानों में एक मासूम सी नटखटपन खुली होती है और जब किसी धुन के बीच में अचानक से कोई खिलखिलाहट या कोई प्यारी सी गुनगुनाहट सुनाई दे जाती है तो लगता है जैसे किसी ने सुरों के आंगन में आकर रंग बिखेर दिए हों। कहीं उस हंसी में कोई मीठी सी शिकायत होती है, कहीं दोस्तों की मस्ती, कहीं चाहत का इकरार और कहीं एक ऐसी बेपरवाह हंसी जो गीत को सिर्फ एक रचना नहीं बल्कि जिंदगी का जीता जागता लम्हा बना देती है। बहुत सुंदर। हमारे श्रोता ने लिखा है कि गीत केवल सुरों और शब्दों का मेल नहीं होते, वे भावनाओं की ऐसी दुनिया है जहां कभी कभी एक छोटी सी हंसी पूरा गीत महका देती है। खासकर जब भी किसी गीत के बीच नायिका की सहज खिलखिलाहट अचानक सुनाई देती है तो मन जैसे उसी पल ठहर जाता है। वो हंसी कभी प्रेम की शरारत होती है, कभी छेड़छाड़, कभी नोकझोंक, कभी खुशी की निश्चल अभिव्यक्ति। सुरों के बीच घुली वो हंसी कानों में उतर कर सीधे दिल को छूती है और चेहरे पर अनायास मुस्कान ले आती है। गीत फिर केवल सुना नहीं जाता बल्कि महसूस होने लगता है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि गीतों की सुर लहरी का ऐसा जादू है कि पलकें नींद की दस्तक पर झपकती हैं और मगर मन को पंख और कल्पना को परवाज देते ये गीत की अनुगूंज पहरों पहर बनी रहती है। गायकों के दिव्य स्वर से रचा बसा कोई भी गीत रात को सोए कंदीलों तक को जगा देती है। ये है गीतों की ताकत। स्वर और लय अनादि है। हर गीत की मिठास जीवन की विविधता में प्राण फूंक देती है। गीतों के शब्द जितनी गहराई से मन को छूते हैं वो गीत उतना ही अक्षत और कालजयी हो जाता है। बहुत सुंदर इबारत हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि वाकई इन गीतों के बीच में हंसने के क्या मायने हैं, ऐसा वही महसूस करता है जो इन गानों से प्यार करता हो, मोहब्बत करता हो। अच्छा चलिए, दो सीधे साधे सवाल हमारी तरफ से आपके लिए कि आपको ऐसा कौन सा गीत पसंद है जिसमें गायक या गायिका की हंसी ने उस गीत की खूबसूरती और शरारत को आपकी दृष्टि में ज्यादा बढ़ा दिया है। कोई एक गीत का जिक्र आपको करना है, फिल्म का नाम, गाने के बोल के साथ। और हमारा दूसरा सवाल ये है कि क्या आपको ऐसी कोई घटना याद आती है जहां पर आप अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से बात करते करते अचानक जोर जोर से हंसने लगे या खिलखिलाने लगे, या आपके दोस्त या आपकी फ्रेंड जहां कहीं भी आप खड़े थे अचानक एक खिलखिलाती हंसी आपके बीच आई और आप सभी लोग देखने लगे चौंक कर कि ये क्या हुआ। ऐसा कोई लम्हा आपको याद है? कम से कम शब्दों में बतानी है आपको ये घटना, छोटी से छोटी शब्दों में, यूं कह सकते

0: हैं कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं की बातों को शामिल कर सकें। और आइए बढ़ते हैं शंकर जयकिशन के संगीत की ओर। हसरत जयपुरी के बोल हैं, किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है अंदाज। ये गीत तो हमें हंसने का मौका कई बार देता है ना?
1: जिंदगी

तो देखा आपने कितना खूबसूरत गीत था जो हमें हंसा देता है, है ना। और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी इस वक्त मुस्कुरा तो रहे होंगे कम से कम, और कुछ लोग हंस भी रहे होंगे।

हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इन गीतों में हंसी है, वाह वाह, आज तो हंसी की नाव पर हम सब मंदाकिनी जी के साथ गीतों की नदी में सैर करने वाले हैं। अच्छा, आप नाव की सैर कर रहे हैं मेरे साथ? चलिए, आप जिसमें खुश हैं हम तो उसी में खुश हैं। बस शर्त ये है कि हमें हंसते हंसाते हुए आज का ये सफर तय करना है, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने पूछा कि हमें कौन सा गीत पसंद है, ऐसा कोई फिल्मी गीत जिसमें गायक या गायिका की हंसी ने उस गीत की खूबसूरती और शरारत को बढ़ा दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि जवानी जाने मन नमक हलाल का गीत, जो कि आशा भोसले की आवाज में, ये गीत हमें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लव स्टोरी फिल्म का गाना है कैसा तेरा प्यार कैसा गुस्सा है तेरा और सारे शहर में आपसा कोई नहीं, ये गाना फिल्म बैराग का हमें बहुत अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्मी गीतों में हंसी तो हमें खुश कर ही देती है, लेकिन आपकी मधुर आवाज में भी हमें हंसी सुनाई देती है जो मन को प्रसन्न कर देती है। क्या बात है, आपको सुनाई देती है मेरी हंसी? मैं एक श्रोता लिखते हैं कि दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना, इस गाने में बड़ी अलग अलग हंसी है, खांसी वाली हंसी भी है। मुझे सबसे बड़ी अच्छी हंसी दिनेश हिंगू जी की लगती है उनकी फिल्मों में। क्या बात है। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि जब गीतों में किसी गायिका और गायक की गीतों में शरारतें होती है तो गीत में खूबसूरती आ जाती है। खासतौर से हमें तो गायिका की शरारत अच्छी लगती है। हमारे फिल्मी गीतों में इस तरह के बहुत सारे गीत हैं जो शरारतों से और खूबसूरत बन गए हैं। शायद मेरी शादी का ख्याल, अच्छा तो हम चलते हैं, ऐसे बहुत सारे गीत है जहां पर गायिका हंसती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हंसना और खिलखिलाना सच में जिंदगी के सबसे खूबसूरत और अनमोल तोहफे हैं। जब हमारा मन खुश होता है तो दिल झूम उठता है और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हंसने से हमारे शरीर और दिमाग को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। खिलखिलाकर हंसने से शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है, रक्त संचार बेहतर होता है जिससे दिल की बीमारियां दूर होती हैं। हंसमुख बने रहने से इंसान हर मुश्किल परिस्थिति में उम्मीद नहीं खोता। जो लोग ज्यादा मुस्कुराते हैं लोग उनकी तरफ भी होते हैं और उनके सामाजिक रिश्ते मजबूत बनते हैं। इसलिए जिंदगी में चाहे कितनी भी भागदौड़ हो, हंसने और मुस्कुराने का कोई भी मौका हाथ से हमें नहीं जाने देना चाहिए। बहुत सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि थोड़ी सी मुस्कुराहट उधार दे दे मुझे जिंदगी, कुछ अपने आ रहे हैं मिलने की रस्म अदा करनी है। आजकल की भागदौड़ और तनावपूर्ण जिंदगी में होठों के पास आए हंसी क्या मजाल है। फिर भी हमें हर हाल में रस्मी तौर पर मुस्कुराना पड़ता है। बच्चे की तरह उन्मुक्त और खिलखिलाती हंसी न सही, फिर भी थोड़ा बहुत तो हंसा ही जा सकता है। आजकल घरों में लोग सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिविटी के लिए हंसती हुई मूर्ति या लाफिंग बुद्धा रखते हैं। क्या अच्छा हो अगर घर के सभी सदस्य थोड़ी देर साथ बैठकर हंस बोल लें। एक लाइन में हम कह सकते हैं कि मुस्कुराइए, आप विविध भारती के साथ हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर टैगलाइन दी है आपने कि मुस्कुराइए हंसिए आप विविध भारती के साथ हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हंसी भी कितनी प्यारी चीज है, न कोई भाषा चाहिए न कोई वजह, बस दिल में निकली एक छोटी सी हंसी सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। कुछ हंसियां पल भर की होती हैं लेकिन उनकी मिठास बहुत देर तक दिल में रहती है। शायद इसलिए कहते हैं कि खुशियां बांटने के लिए शब्द नहीं एक सच्ची हंसी ही काफी होती है। तो हमारे जो श्रोता लिख रहे हैं कि हंसना बहुत मुश्किल काम है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हंसना इतना मुश्किल काम भी नहीं है जितना हमने इसे बना लिया है। क्योंकि हम तनाव अपने सिर पर ओढ़ लेते हैं, सारी परेशानियां सारे तनाव सारी मुश्किलात ओढ़े चलते रहते हैं और हंसना भूल जाते हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि जिंदगी में अच्छे दिन भी हैं बुरे दिन भी हैं, रात भी है तो सुबह भी है। हम अपनी जिंदगी को किन अर्थों में लेते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है आप हजार दुखों के साथ भी मुस्कुराकर जी सकते हैं, हंसकर जीवन को अपना कहते हैं ना कि बहुत ही सहज और सरल बना सकते हैं। देखिए इस गाने में दो सखियां किस तरह से एक दूसरे को छेड़कर ही हंस ले रही हैं। और ये हमारी जिंदगी में भी होता है कि जब हम अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं किसी अपने के साथ मिलते हैं तो हंसी मजाक करना पसंद करते हैं। आइए सुनते हैं शैलेंद्र के बोल, एसडी बर्मन का संगीत, गीता दत्त और आशा भोसले की आवाजें। फिल्म का नाम है इंसान जाग उठा। आपको भी बताना है कि आप भी कभी हंसे हैं ऐसे किसी अपने के साथ।

ये आवाजें गीता दत्त और आशा भोसले की थी। फिल्म का नाम था इंसान जाग उठा। तो देखा आपने कितनी खूबसूरत तरीके से हंसती हैं दोनों नायिकाएं, है ना? अच्छा, कभी आप हंसते हैं इस तरह से? बताइएगा हमें कि आप किस तरह से हंसना पसंद करते हैं या हंसना पसंद ही नहीं करते। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही मज़ेदार गीत चल रहे हैं, हम हंस रहे हैं और हमारे घर के जो पेंटर हैं, कलर कर रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं। सच में आपकी आवाज़ में भी हंसी छलक रही है। अच्छा, आपके घर में काम चल रहा है और वो पेंटर भी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और हंस रहे हैं, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीत के बोल तो याद रह जाते हैं मगर उन बोलों के बीच गूंजी हंसी अक्सर पुरानी पूरी कहानी कह जाती है। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वैसे आपकी मधुर आवाज़ में हंसी की खनक मौजूद रहती है जिसे हम अक्सर महसूस करते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी हमारी तारीफ करने के लिए। लेकिन यहाँ कार्यक्रम के बारे में आपको बताना है कि आपको कौन से गाने पसंद हैं जिनकी तारीफ में आप कुछ लिखिए या उस हंसी के बारे में लिखिए जो आपको बेहद पसंद है। जैसे कि एक श्रोता ने लिखा था कि उन्हें दिनेश हिंगू की हंसी बहुत पसंद आती है। अच्छा, आपको भी कोई ऐसी हंसी पसंद आती होगी किसी नायक या नायिका की, अपने आस पड़ोस में या अपने घर परिवार में या किसी बच्चे की, है ना, खिलखिलाती कोई हंसी जो आपको आकर्षित करती है, उसका भी जिक्र आप कर सकते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, ये इस गीत के अंत में लता जी की खिलखिलाती हुई पावन और जादुई हंसी है जो दुनिया की अनमोल मोती है। एक महज एक हंसी नहीं, स्वर साम्राज्ञी के कंठ से टपका पावन नूर है, दिल थम जाए ऐसा सुरूर है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, विश्व में अलग अलग लैंग्वेज है लेकिन हंसी की एक ही भाषा है। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि आप भी तो बहुत प्यारे हंसी वाले गीत सुनवा रही हैं अपनी सुंदर हंसी के साथ, क्या बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि

पड़ोसन मूवी का गीत एक चतुर नार वाला गीत हमें बेहद अच्छा लगता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि किशोरदा के द्वारा गाए गए कुछ गीत जो हमें बहुत पसंद आते हैं, चतुर नार, बाबू समझो इशारे, आके सीधी गिरी दिल पे। अरे वाह, इसमें तो किशोरदा ने दो आवाजें निकाली हैं, है ना। ये गीत तो बहुत ही सुंदर है। एक श्रोता लिखते हैं कि सत्या फिल्म का गीत तू मेरे साथ है, तू मेरे पास भी है, गुलजार साहब के बोल, लता जी की आवाज, हरिहरन की आवाज। और इसी फिल्म का एक अन्य गीत है, सपने में मिलती है कुड़ी मेरी, इस गीत में भी हंसी सुनने को मिलती है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म बेताब का गीत जब हम जमा होंगे, ये हमें बहुत पसंद आता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे फिल्म चांदनी फिल्म का गाना टाइटल गीत जो कि चांदनी ओ मेरी चांदनी, और इसमें आपको यकीनन श्रीदेवी की जो हंसी है वो बहुत लुभाती है ना, क्योंकि इतनी खूबसूरती के साथ वो उस गीत में हंसती हैं और इस गीत को इतना खूबसूरत तरीके से उन्होंने गाया है कि हम सुनना बार बार पसंद करते हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि गीतों में हंसी खोजना, वाह क्या बात है घोषिका जी, आपका सादर नमस्कार, बड़ा रोचक विषय है आज का, और सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार, शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि आज विविध भारती सुरीला सफर पेज खोलने से पहले मैं अनुमान लगा रही थी कि आज आप ही आएंगी, और ये देखिए आप आ भी गई। आपकी खनकदार आवाज का इंतजार रहता है, आज तो अलग ही प्रकार का आनंद रहेगा गाना सुनने में, बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि गीत में हंसी आना ऐसा है जैसे किसी बेहद संजीदा पेंटिंग के एक कोने में किसी बच्चे ने चुपके से रंग बिखेर दिया हो, क्या बात है। ये हमें याद दिलाती है कि माइक के उस पार कोई मशीन नहीं बल्कि धड़कता हुआ इंसान खड़ा था जो गाते गाते उस लम्हे में खो गया। ये हंसी गीतों को अमर बनाती है क्योंकि सुर भले ही कानों को छूकर लौट जाएं, लेकिन वो बेसाख्ता खिलखिलाहट सीधे दिल में उतर आती है, क्या बात है। हमारे श्रोता भी कितने शायराना अंदाज में अपनी बात लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सभी आपके साथ मिलकर हंसते मुस्कुराते हुए कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी खुशी जाहिर करेंगे, हंसना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है, सबसे ज्यादा फरमाइशी गीत भंवरे ने खिलाए फूली गाना आपको बेहद पसंद है। अच्छा, यहाँ लता जी जब हंसती हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो बहुत अच्छे गाने सुनने को मिलने वाले हैं जिसमें हंसी मुस्कुराहट सभी शामिल होने वाला है। मुझे लगता है एक गाना इसमें मुझे याद आ रहा है कि जय जय शिव शंकर, जिसमें बहुत ही हंसाया जाता है, और एक बात कहो गर मानू तुम, ये गाना भी हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देखिए आपने इस गीत को पसंद किया, और हमारा अगला गाना यही है हमारी लिस्ट में। आरडी बर्मन का संगीत है, गुलजार साहब के बोल, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम गोलमाल। बहुत हंसना हंसाना लता जी का इसमें भाता है ना। आप भी हंसिएगा ना इस गीत के साथ।

जी तो बताइए, गीत सुनने के बाद आप भी मुस्कुराए कि नहीं? और कभी कभी पता है ऐसा भी होता है ना कि हम खुद से ही बात करते हैं अकेले में और फिर मुस्कुराने लगते हैं या हंसने भी लगते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा बहुत बार, जब आप अकेले बैठे होते हैं या आराम कर रहे होते हैं या सोने जा रहे होते हैं तो कोई बात याद आ जाती है अपने दोस्तों की या अपने परिवार वालों की या किसी खास की और हम अकेले में हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। आपके साथ कभी ऐसा होता है बताइएगा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि कटी पतंग का प्रसिद्ध गाना है, मेरा नाम है शबनम और प्यार से लोग मुझे शब्बू कहते हैं। ये गाना जो आशा भोसले की चुलबुली और नटखट हंसी गाने की शुरुआत और अलग अलग अंतरा के बीच में जो नेचुरली पिरोई गई है वो बहुत अच्छा लगता है और जिसे महान गायिका आशा भोसले ने अपनी बेहतरीन आवाज में गाया है। बिल्कुल ये गाना इतना मुश्किल है और इसमें हंसना तो और भी ज्यादा मुश्किल, लेकिन हाँ इसे आपने समझा सबसे बड़ी बात यह है। एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे खूबसूरत और प्यारी छोटे बच्चों की हंसी होती है, कहते भी हैं कि दूर है मंदिर तो क्या हुआ, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। क्या बात है। वे एक श्रोता लिखते हैं कि जब भी मेरी धर्म पत्नी और मैं किसी भी होटल की या बिल्डिंग की लिफ्ट में अकेले होते हैं तो फिल्म एक दूजे के लिए का ये गीत मेरे जीवन साथी जरूर सुनते हैं, सुनाता हूँ। धर्म पत्नी हंस देती है और कहती है झूठा कहीं का और मैं भी हंस देता हूँ। बिल्कुल, जीवन में ये रोमांस होना बहुत जरूरी है। जब आप जीवन में कहीं ना कहीं रोमांचित होते हैं, रोमांस रखते हैं तो जिंदगी और भी आसान हो जाती है। एक श्रोता लिखते हैं कि सभी को दिलीप कुमार और लीना चंदावरकर पर फिल्माया गया गाना सारे शहर में आपसा कोई नहीं, आशा जी की हंसी बहुत ही प्यारी हंसती है और हम भी हंसते हैं और क्या गजब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी, इसमें आशा जी की जो हंसी है वो बाकमाल है। बिल्कुल सही कहा आपने, फिल्म लव स्टोरी का जो ये गाना है बहुत ही चुलबुली और शरारत भरी हंसी है उसमें आशा जी की। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय बहुत मजेदार है और एक श्रोता ने कहा है कि मुझे तो काजोल की हंसी और मुस्कुराना उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे मेरी 8 महीने की बेटी की हंसी सबसे ज्यादा पसंद है। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किशोरदा का गाना है चिल चिला के कजरी सुना, ये गीत सुनकर हंसी आई जाती है और इसके बोल भी बहुत शानदार है। वहीं एक श्रोता को हेमा मालिनी जी की हंसी देखने और सुनने में बहुत अच्छी लगती है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे तो हंसना बहुत पसंद है और सबको हंसाने में बहुत मजा आता है। स्कूल के दिनों में सब मुझे हंसमुख अजमेरा नाम से संबोधित करते थे क्योंकि सभी को मैं अक्सर हंसाया करती थी। बहुत अच्छी बात, जब भी तो कहते हैं कि हंसो और हंसाओ। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा और आगे इस सफर में। शंकर जयकिशन का संगीत सुनते हैं, हसरत जयपुरी के बोल हैं ये, आशा भोसले, मुबारक बेगम और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है आरजू। हाँ, इस गाने के आरंभ में ही हंसी आपको सुनाई देती है ना?

आगे आपने डैश डैश डैश और क्वेश्चन मार्क डाल दिया है, और क्या। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे पतिदेव का सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है, उनके 5 में से 4 बातें तो चुटीली ही होती हैं, अक्सर अकेले में उनकी बातें याद करके मैं हंस पड़ती हूँ। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मधुबाला की मुस्कुराहट और हंसी बहुत खूबसूरत और कातिलाना लगती है। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मुस्कुराती हूँ मैं कई बार, और जब नींद से जाग जाऊं तो याद आता है कि अरे ये तो सपना था, बस इसी बात पे हंसी आ जाती है। वही एक श्रोता को आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया वाला गाना बहुत पसंद आता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मैं आजकल अपनी बेटी के घर में हूँ, मेरी 2 छोटी सी नातिने हैं, दोनों आपस में खूब खेलती हैं, खूब खिलखिलाकर हंसती हैं और मुझे बहुत मजा आता है उनके साथ। बिल्कुल सही कहा आपने, बच्चों के साथ खिलखिलाना तो बहुत ही अद्भुत एहसास है ये। और आइए अब सुनते हैं आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी के बोल, युगल स्वर आशा भोंसले और किशोर कुमार के, फिल्म का नाम है बुलेट। इसमें देखिएगा कहां हंस रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की थीम बहुत ही खूबसूरत है। गीतों के बीच गायक या गायिका की वो कुदरती और बेसाख्ता हंसी गाने में एक अलग ही रूह और ताजगी भर देती है। आज के इस खास शो में गीतों के बीच खिलखिलाती हंसी और छेड़छाड़ वाले कई सदाबहार नगमे आज आपके साथ हम सुनने वाले हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वार्तालाप वाले गीत तो बहुत ऐसे सुने हैं, लेकिन उनमें खिलखिलाहट वाले गीतों को ढूंढकर उन्हें प्रस्तुत करने का प्रयोग ही अनूठा है आपका, और इस दृष्टिकोण से ही ये इबारत आपकी प्रशंसनीय है। और

0: यहाँ है,
1: इधर है,
0: उधर है,
1: ऊपर है,
0: नीचे है,
1: कहाँ है,
0: यहाँ है।
1: अरे यार तो कोई भी नहीं है भाई,
0: कोई भी नहीं।

0: थी। अच्छा ये सब छोड़ो, पर इतना तो सोचो कि मैं भी चुप और तुम भी चुप, तो किसने मचाया ये शोर? कौन है? कौन कौन है भाई?
1: अरे ये तो पर्दा है।

0: ले।
1: धड़कन को छेड़ा ना दिल से ही खेले, काश आज रात हम होते अकेले।
2: होते जो अकेले तो कयामत हो जाती, बाद में जो होता पर मोहब्बत हो जाती।
1: कैसी तुम्हें बड़ा बेशरम है, देखो फिर आया हमें कर रहा है ये बोर कौन है।
3: अरे कौन है रे, कौन है रे?
2: ये तो मैं हूँ भाई, चोरी चोरी छुपके छुपके।

0: है,
1: उधर है,
0: ऊपर है,
1: नीचे है,
0: कहाँ है,
1: यहाँ है,
0: अरे यहाँ तो कोई भी
1: नहीं है।
2: जी तो देखा आपने, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन सामने हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और लगातार इस सफर में हमारे साथ बने हुए हैं और हमें लिख भी रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गीत के बीच में सुनाई देने वाली ये हंसी जैसे किसी बंद किताब के पन्नों के बीच अचानक कोई मुस्कुराता हुआ फूल मिल जाए वैसी होती है। ये हंसी गीत का हिस्सा होकर भी गीत से कहीं ज्यादा कह जाती है। कभी प्रेम की शरारत, कभी मिलन की खुशी, तो कभी उस पल की अनायास खिली मासूमियत सुर कानों तक

पहुंचते हैं, मगर ऐसी हंसी सीधे दिल में उतर आती है और बरसों बाद भी वही चेहरे, वही दृश्य और वही खूबसूरत पल याद आ जाते हैं। शुरू के इस सफर में हंसी की छोटी सी झनकार जैसे बीते हुए पलों की खिड़की खोल देती है और तब महसूस होता है कि कुछ गीत सिर्फ आवाजों से नहीं, मुस्कुराहटों से, खिलखिलाहटों से और भी यादगार बन जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, तो यादगार रहेगा आज का ये सफर। और अब इस सफर से मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।

0: also making arrangements to continue the studies of children in flood-affected areas. Meanwhile, the situation remains concerned in Baltara, in Khagaria and Kursela in Katihar, where the Kosi is flowing about 1.5 meters above the danger mark. Teams of the Water Resources Department and District Administration are keeping a close watch on the situation. Nidhi Shree for Akashwani News, Patna.
1: In cricket, India will take on Bangladesh in the semi-final match of Women's Asia Cup today in Dubai. The match will begin at 8 p.m. IST. India will look to maintain their dominant run in the tournament. Harmanpreet Kaur's team won all three group matches, beating Thailand, Hong Kong and Pakistan convincingly. Bangladesh finished second in Group B behind Sri Lanka. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi meets philanthropist Prince Rahim Aga Khan V in New Delhi, discusses partnership in healthcare, rural development, youth and women's empowerment. WHO Chief Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus praises India's significant health gains in maternal and child care and non-communicable diseases. Brent crude oil prices continue to trade above $100 per barrel as Iran-US conflict intensifies. Weather Department issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Odisha today. And in cricket, India to take on Bangladesh in semi-final of Women's Asia Cup in Dubai this evening. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भी आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों तथा भारत एवं विदेश में आगे की संभावनाओं पर चर्चा की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमार के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की।

0: विश्व वित्त के लिए विश्वसनीय आपस में जुड़े और वैश्विक सिस्टम, ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आज तीसरा दिन है। एजेंटिक एआई एंड द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इन अ बिलियन यूजर नेशन विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते

0: हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन सी एस शेट्टी ने कहा कि भारत में बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे और यूआईडीएआई के पूर्व चेयरमैन नंदन नीलेकणी एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। शाम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कनेक्टेड इंडिया एम्पावर्ड फाइनेंस बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदनॉम घेब्रेसस ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र के दौरान हुई। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर टेड्रोस ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के करीब 1,60,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर की जांच की सुविधा मिल रही है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की भी सराहना की जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि टीकाकरण और संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिली है। उन्होंने भारत के तपेदिक उन्मूलन, चिकित्सा उत्पादों के बेहतर नियमन और WHO को समर्थन देने के प्रयासों की भी सराहना की। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किया। एक रिपोर्ट।
4: ये प्रतिबंध ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, मैक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान
5: कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, VIP और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसी हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
6: ब्रिक्स सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार दो दिन के गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि है। श्री कुमार ने कहा कि वे राज्य के बूथ लेवल अधिकारियों, BLO और चुनावी साक्षरता क्लब ELC के सदस्यों से बातचीत करेंगे। श्री कुमार आज शाम अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रमुख नागरिकों के साथ भारत में चुनाव विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विषय पर संवाद करेंगे।
7: गुजरात की पावन भूमि पर आने पर मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि भी और कर्म भूमि भी रहा है गुजरात। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी और गुजरात के कर्मठ बूथ लेवल ऑफिसर्स, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल, छात्र और छात्राओं के साथ आज और कल विभिन्न कार्यक्रमों में संवाद करेंगे।
6: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 270 सदस्यों वाली पूर्ण राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सूची में प्रमुख स्थान दिया है और उन्हें तमलुक संगठनात्मक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमिलगा वित्तीय कषगम टीवीके के नेतृत्व वाले सेकुलर सोशल जस्टिस विक्ट्री गठबंधन ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।

0: गठबंधन ने धरपुरम से सत्यभामा और मधुरंतकम से मरगथम कुमार विल को मैदान में उतारा है। विपक्षी डीएमके ने मधुरंतकम से पारंथमन और धरपुरम से एस सुगन्या को उम्मीदवार बनाया है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के लिए नामांकन 16 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी और 19 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1377 हो गई है। 5000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि सबसे अधिक मौतें चितवन में हुई, जहां 364 लोगों की जान गई। प्रभावित क्षेत्रों से 13600 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। इस बीच भारत ने विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है, जिसके तहत 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। कई नदियों का जलस्तर घट रहा है। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक, बागमती समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। जलस्तर में कमी के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य और तेज कर दिए हैं। पटना, वैशाली, सारण, मुंगेर, भागलपुर, अरवल समेत 14 जिलों में इस समय 40 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से पीड़ित है। विभिन्न स्थानों पर लगाए शिविरों के माध्यम से भोजन, मेडिकल सहायता और राहत सामग्रियां प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है। वहीं लगभग 700 ग्रामीण सड़कों के जलमग्न हो जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने सड़कों की स्थिति पर निगरानी बनाए रखने और पानी निकलते ही इन्हें तत्काल ठीक करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से मिनीश्री।
0: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। उत्तरी ओडिशा के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। विभाग ने आज मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से जहाजों पर किए गए सबसे बड़े हमलों के बाद आपूर्ति में और अधिक व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.1% बढ़कर 101 अमरीकी डॉलर और 86 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 74,804 पर, जबकि निफ्टी 12 अंक की बढ़त के साथ 23,443 पर था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल अनीता विलियम्स से मुलाकात की। अधिकारियों ने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और संयुक्त रूप से काम करने की क्षमता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक क्षमताओं, प्रस्तावित रक्षा खरीद और दोनों नौसेनाओं के बीच अधिक परिचालन सहयोग के अवसरों पर विचार विमर्श हुआ। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान

0: आमने सामने होंगे। भारत ने महिला हॉकी जूनियर विश्व एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मौके में आज भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारत की पूजा मलिक ने हैट्रिक लगाई, जबकि सनिका चंद्रकांत माने, मधुसिदा सुप्रिया और रोशनी एंड ने दो दो गोल किए। भारत 12 सितंबर को सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से खेलेगा। अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में कल बेन शेल्टन का मुकाबला फ्रांसिस टियाफो से होगा। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में पिछले वर्ष के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशेलसन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

ప్రస్తుతే కార్యక్రమం సదాబహార్ నగమే. इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है. कार्यक्रम का पहला गीत यानी इस कार्यक्रम का पहला गीत पंडित भरत व्यास का लिखा हुआ, कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ सुनिए. गायिका हैं लता मंगेशकर और फिल्म का नाम है बेदर्द जमाना क्या जाने.

ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था बेदर्द जमाना क्या जाने। कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोंसले और मोहम्मद रवि का गाया हुआ, फिल्म का नाम जाली नोट। शब्दकार राजा मेहदी अली खान और संगीतकार ओपी

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर। फिल्म काला पानी का दो गाना सुनिए, स्वर आशा भोंसले और मोहम्मद रफी के, शब्द मजरू सुल्तानपुरी के हैं और तर्ज सचिन देव बर्मन की है।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, फिल्म का नाम एक फूल चार कांटे। बोल हसरत जयपुरी के हैं और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है बरसात की रात। गीत साहिर लुधियानवी का है और धुन रोशन की।

ठंडक का सर जागता है, आँच देती हुई बरस

ठंडक का सर जागता है, आँच देती हुई बर

0: मैंने शायद तुम्हें
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता,
1: मार उड़ा दी निकके,
0: एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती,
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: और आइए अब सुनते हैं नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की रचना, स्वर लता मंगेशकर और साथियों के, फिल्म का नाम है मुगले आजम।

लता मंगेशकर और सखियों को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था मुगले आजम, गीतकार शकील बदायूनी थे और संगीतकार थे नौशाद साहब, गीतकार शकील बदायूनी थे। और आइए अब सुनते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। ये आवाज लता मंगेशकर की है, फिल्म का नाम है बिंदिया।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था बिंदिया। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों की और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आरती, आज तुम भी हो तो मेरे साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
2: मंजरी, आपको, सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: और बताओ कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक।
1: आज हमारे क्या क्या विषय हैं?
2: विषय सीधे विषय पे आते हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: तो आज हम विषय लेकर आए हैं घर की सफाई, क्योंकि त्योहारों का मौसम है मंजरी जी। तो ऐसा होता है ना कि जब त्योहारों का मौसम होता है तो साफ सफाई ये तो लगा ही रहता है, तो किस तरीके से हम घर की सफाई में लगते हैं और आसानी से सब लोग मान जाते हैं सदस्य घर की सफाई करने के लिए, या फिर नोक झोंक थोड़ी बहुत होती है, तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे।
1: बहुत और अच्छा
2: आप लोग भी, हम अपने श्रोताओं से कहेंगे ना कि वो लोग भी हमें बताएं कि उनके घर में जब साफ सफाई होती है तो सारे लोग अपने आप अपना परिश्रम करने को तैयार हो जाते हैं, या फिर कुछ कहना पड़ता है, नोक झोंक होती है, रूठना मनाना चलता है।
1: बिल्कुल। और इसी के साथ साथ उपयोगी टिप्स में बातें होंगे कि जब बनानी हो नई रेसिपी तो इसके अनुभव भी आप लिखे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है या क्या तैयारियां करती हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और मुझे कुछ कहना में है कि बस 5 मिनट बनाम घंटों की बातें,
2: जो अक्सर देखने में आता है।
1: आता क्या, हम लोग खुद ही करते हैं। तो चलो हमारे सभी साथी छोटी-छोटी सी यादों को ताजा करेंगे
2: कि आपके आप ऐसे किस इंसान को जानते हैं या किसको जानते हैं, हो सकता है आपके पड़ोसी ही हो कि जो 5 मिनट कहते हैं बस सब हम जा ही रहे हैं, लेकिन फिर घंटों चलती रहती है वो बातें, तो उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही आज हम लेकर आए हैं कहानी पद्मश्री के अंतर्गत जोधैया बाई बैगा, जो कि कला क्षेत्र में प्रसिद्ध है, उनके बारे में हम बात करेंगे।
1: और आज है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बहुत ही गहन विषय है, लेकिन उससे पहले हम लोग सुनते हैं एक गीत।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम 6:45 पर
1: सिर्फ विविध भारती पर।

0: तो आरती, आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के बारे में. और आज हम एक ऐसे दिवस की बात कर रहे हैं जिसके साथ एक ऐसा शब्द जुड़ा है जिस पर बात करना आसान नहीं, लेकिन बात करना बेहद ज़रूरी है. ये दिवस है आत्महत्या रोकथाम दिवस. आत्महत्या शब्द ही बहुत दुखद है, और इसलिए इस बात को गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस जागरूकता, इसे मतलब जागरूकता दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है. और जब भी कभी ऐसी दिमाग में किसी के भी ये बात आती है कि हम अपने जीवन को समाप्त कर ले, तो उनको सोचना चाहिए कि आपका जीवन जो मिला है जीने के लिए वो कितना महत्वपूर्ण है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है. तो एक बार विचार मंथन करें, फिर आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं, अपनी समस्याएं जो है वो किसी और को बता भी सकते हैं.
1: बिल्कुल. और इस दिवस को जागरूकता दिवस बनाने की शुरुआत हुई साल 2003 में, और अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम संघ द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के सहयोग से की गई थी. और इस दिन का उद्देश्य है लोगों में जागरूकता बढ़ाना, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बातचीत को प्रोत्साहित करना, और ज़रूरत के समय मदद लेने के महत्व को समझाना कि ऐसा नहीं है कि आप कमज़ोर हो जाएंगे अगर आप किसी की मदद ले लेंगे, बल्कि मदद लेने से क्या होता है ना कि हमारी जो समस्या है जो हम उसको उस समय हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं किसी परेशानी की वजह से, तो सामने वाला हो सकता है हमारी परेशानी का हल ढूंढ के में दे दे.
0: बिल्कुल आरती. और कभी कभी जीवन में परेशानियाँ इतनी बड़ी लगने लगती हैं कि इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगता है, और ऐसे समय में सबसे ज़रूरी है कि आपस में बातचीत की जाए. अगर कोई व्यक्ति जो है लगातार उदास दिखाई दे और लोगों से दूर रहने लगे, अलग अलग सा अपने आप को रखे, निराशा की बातें करे, या कहे कि वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा है, तो उसकी बात को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे वो घर के बच्चे हों, चाहे कोई भी हो व्यक्ति आपके साथ
1: मित्र
0: का
1: हो,
0: हाँ मित्र भी हो सकता है. तो कभी भी कुछ ऐसा आपको या उदास भी आपको दिख रहा है, तो आप उसकी उदासी को दूर करने के लिए उससे घुले मिले, उससे दिल की बात जानने के लिए आगे आइए, जिससे वो अपनी बातों को आपसे कह सके, और आप उसको ये विश्वास दिलाइए कि भाई तुम्हारी बातें मैं अपने तक ही रखूंगा, है ना.
1: बिल्कुल. और किसी को भी अगर कोई अपनी परेशानी आपको बता रहा है, तो उसे डांटने या उसकी परेशानी को छोटा बताने के बजाय, कभी कभी ऐसा होता है ना कुछ लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, तो ऐसा करने के बजाय उसकी बात को धैर्य और ध्यान से सुनना चाहिए, उसे इस बात का विश्वास दिलाना चाहिए कि वो अकेला नहीं है और हर परेशानी का हल शांति और समझदारी के साथ निकल सकता है. किसी की मदद करने के लिए हमेशा बड़े बड़े समाधान ज़रूरी नहीं होते, कभी कभी किसी की बात को ध्यान से अगर हम सुन लेते हैं ना, तो वही बड़ी बात जाती है, या फिर हम उसके लिए कुछ थोड़ा सा समय निकाल लें, उसके साथ थोड़ा सा समय बिताएं और उसे ये महसूस कराएं कि वो अकेला नहीं है, तो बहुत मायने रखती है. इतनी
0: बिल्कुल सही बात है, ऐसे में साथ बहुत ज़रूरी होता है किसी का भी. और इसीलिए जब भी ऐसा लगे कि परेशानियों से जूझना मुश्किल हो रहा है, माता पिता, परिवार के सदस्य, शिक्षक, मित्र या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से आप तुरंत बात करें. और अगर हमारी जानकारी में कोई मानसिक तनाव से गुजर रहा है, तो कुछ सरकारी व निःशुल्क हेल्पलाइन सेवाओं का संपर्क भी किया जा सकता है.
1: बिल्कुल, आप संपर्क कर सकते हैं और आप इंटरनेट पर इसको सर्च कर सकते हैं. और साथ ही वर्ष 2024 से लेकर 2026 तक के लिए इस दिवस की आधिकारिक थीम तय की गई है, जो कि है आत्महत्या पर धारणा को बदलना, और जिसका उद्देश्य इसके इर्द गिर्द के सामाजिक कलंक को कम करना और खुलकर बातचीत को शुरू करना है, जिससे कि बातचीत होने से हमारा तनाव भी कम होता है और हम अपनी परेशानियों का हल भी आसानी से ढूंढ सकते हैं.
0: बिल्कुल. और हम लोग सुन लेते हैं गीत.

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी हैं सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती, आज हम बात करने वाले हैं कहानी पद्मश्री की, जोधैया भाई बैगा, जो कला से संबंधित है और मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की रहने वाली। जोधैया भाई ने जीवन के 6 दशकों से अधिक समय तक बेहद गरीबी और कड़े संघर्ष का सामना किया। 60 वर्ष की उम्र पार करने के बाद उन्होंने रंग और कूची थामी और देखते ही देखते कला जगत का एक बड़ा नाम बन गई।
3: बिल्कुल, और जोधैया भाई, जिन्हें लोग जोधैया अम्मा के नाम से भी जानते हैं, उन्हें बैगा चित्रकार के रूप में प्रसिद्धि मिली है। वो आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाना माना नाम है। एक मजदूर से चित्रकार तक पहुंचने का जोधैया बाई का जो मार्ग था वो बहुत ही संघर्ष भरा रहा।
2: बिल्कुल, और जब जोधैया बाई के पति मैकू बैगा का निधन हुआ, उस समय जोधैया बाई के 2 मासूम बच्चे उनके साथ थे और तीसरी संतान गर्भ में थी। अपने बच्चों के लालन पालन के लिए मजदूरी करते हुए जोधैया बाई ने अपनी तीसरी संतान एक बेटी को जन्म दिया।
3: बिल्कुल, और बेटी के जन्म के साथ ही जोधैया बाई को कमजोरी ने घेर लिया। 3 बच्चों की जिम्मेदारी ने उन्हें अपने ही शरीर की कमजोरी के साथ लड़ने को विवश कर दिया था। परिणाम स्वरूप बेटी के जन्म के साथ ही वो एक बार फिर जीवन के रण में दुखों से संघर्ष करने के लिए उतर पड़ी थी।
2: और पीठ पर मासूम बच्चे

0: को बांधकर जोधैया बाई गाय भैंस बकरी चराने जाती थी। जंगल में वापसी में लकड़ियां बिन कर लाती थी और जिसका बोझ भी उनके अपने सिर पर होता था। गांव में लोगों के घरों को लीपना, आंगन और दीवारों को गेरू से सजाना, खेत में मजदूरी करना, यही उनके जीवन की भाग दौड़ थी। यानी बहुत ही संघर्ष भरा उनका दिन था।
1: बिल्कुल, और संघर्ष से जूझ रही जोधैया बाई के जीवन में बदलाव तब आना शुरू हुआ जब आशीष स्वामी ने लोढ़ा गांव में अपना स्टूडियो जगन तस्वीर खाना खोला और स्थानीय लोगों को अपने यहाँ काम पर रखा, जिसमें जोधैया बाई का बड़ा बेटा भी शामिल था। एक दिन आंगन लीपने के लिए वो अपनी माँ जोधैया बाई को स्टूडियो ले गया था और साथ ही जोधैया बाई ने अपनी ही शैली में उस आंगन को ऐसे लीपा और उसे गेरू और छुई मिट्टी से ऐसे सजा दिया कि उसे देखकर आशीष स्वामी इतना खुश हुए कि उन्होंने जोधैया बाई जैसी बुजुर्ग महिला से, और ये लेकिन साथ ही साथ वो उनसे काम कराने पर थोड़ा नाराज भी हो गए थे कि आपने इतनी उम्र दराज महिला से कैसे काम कराया। और इस दौरान उन्होंने सुरेश बैगा ने, जो उनके बेटे थे जोधैया बाई के, उन्होंने बताया कि उनकी माँ अभी भी मजदूरी करती हैं
0: और आशीष स्वामी ने उन्हें अम्मा करके संबोधित किया और कहा कि अब से अम्मा मजदूरी नहीं करेगी बल्कि चित्र बनाएंगी। जोधैया बाई ने बताया कि जब आशीष स्वामी ने उन्हें चित्र बनाने का काम दिया तो वे घबरा गई थी। उन्होंने पहले तो साफ मना कर दिया कि ये लिखने पढ़ने का काम उनसे नहीं हो पाएगा। तब आशीष स्वामी ने उन्हें उनसे दीवार पर चित्र बनवाया। बाद में लकड़ी और सूखे कुम्भड़े, लौकी और तरोई पर चित्र बनवाए। जब उन्हें चित्र बनाने के लिए कागज दिया तो वे डर गई कि कागज और रंग दोनों ही खराब हो जाएगा, लेकिन आशीष स्वामी ने उन्हें थोड़ा डांट कर चित्र बनाने के लिए कहा।
1: बिल्कुल, और जब गुरुजी की डांट पड़ने लगी तो 70 साल की आयु के करीब पहुंच चुकी जोधैया बाई किसी मासूम बच्चे की तरह अपने घर में छिप जाती थी और उन्होंने उनके जो गुरुजी थे उनके घर जाते और उन्हें जबरन अपने स्टूडियो ले आते। उनकी पेंटिंग्स में बैगा समुदाय की परंपराएं, लोक कथाएं, देवी देवता और विशेष रूप से प्रकृति, जैसे कि महुआ का पेड़, जंगली जानवर और पक्षी एकदम जीवंत रूप में दिखाई देते थे।
0: और उनकी बनाई पेंटिंग्स को देश विदेश में बेहद पसंद किया गया। उनकी कलाकृतियों की प्रदर्शनी भोपाल और दिल्ली के अलावा पेरिस, फ्रांस और मिलान, इटली जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहरों में भी आयोजित की गई। जब वर्ष 2022 में जोधैया बाई को राष्ट्रपति से नारी शक्ति सम्मान मिला था, तब स्वर्गीय आशीष स्वामी की तस्वीर के सामने बैठकर जोधैया बाई काफी देर तक रोती रही थी।
1: बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने उन्हें सिखाया था जी, उस जगह तक पहुंचाया था। फिर वर्ष 2023 में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 15 दिसंबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में जोधैया बाई बैगा की उनके पैतृक गांव लोरहा उमरिया में निधन हो गया। उनका जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि हुनर और सफलता के लिए उम्र कोई बंधन नहीं होता है।
0: बिल्कुल सही कहा आरती। और देखो, जहाँ पर वो रह रही थी तो आसपास की जो चीज़ें उपलब्ध थी, जैसे तरुई बताया है उन्होंने, है ना, कुम्भड़ा है, तो इन चीज़ों पे वो चित्र बना रही थी, तो एक कहते हैं हाथ भी साफ हो जाता है और आपकी जो कला है वो धीरे धीरे निखर के सामने आती ही आती है। और जब उनके सोचो अगर चित्र वो देखो तो कैसा लगेगा ना कि कितनी सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं उसमें।
1: बिल्कुल, तो और कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हमारे पास ये साधन नहीं है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक बहाने की तरह से ली जा सकती हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर एक करने का जज्बा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
0: भी हम सोचते हैं ना कि पहले इतने सारे ब्रश खरीद के लाएंगे या हमारे पास पूरे रंगों का डिब्बा होना चाहिए, तो इसकी जरूरत नहीं। अगर आपके पास दो रंग भी हैं तो आप उससे भी अपनी कला को शुरू कर सकते हैं।
1: देखिए, उन्होंने प्रकृति से ही कला को लिया, प्रकृति से ही रंगों को लिया और प्रकृति के सामान पे ही उसका उपयोग किया।
0: प्रकृति में तो कितने सारे रंग हैं और कितनी सारी कला है। हम आसपास नजर दौड़ाएंगे तो लगेगा हम ये पत्ती भी बना लें, ये फूल भी बना लें, है ना। तो जब तस्वीरें अच्छी बन जाती हैं तो उनको लगता है कि भाई हम इसको अपने पास एकदम संभाल के रख लें, है ना। तो चलो इसी के साथ
1: सुन लें।

0: तो आरती तस्वीर को इतनी अच्छी होती है ना, लगता है कि उसको सीने से लगा के रख ले, है ना?
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जब बात आती है कि घर में साफ सफाई की बात आती है तो बस लगता है कि
1: सारी तस्वीरों को तो नहीं रख सकते ना सीने से लगा के।
0: सही बात है। और जब घर में साफ सफाई की बात आती है तो लगता है कि भाई शुरुआत कहाँ से की जाए, है ना? तो हमारे जो श्रोता भाई लोग हैं, सखियां हैं, ये बहुत आसानी से हमें बता देंगे कि मतलब कहाँ से सफाई की जाए। तो हमारे साथी का संदेश हम उठा लेते हैं, लिखते हैं कि घर की साफ सफाई सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं है, वो रिश्तों का आईना है। जहाँ साझेदारी होती है वहाँ काम बढ़ जाता है और बोझ हल्का लगता है, लेकिन जहाँ इसे एक ही व्यक्ति की जिम्मेदारी

0: समझा जाता है वहाँ धीरे धीरे नोक झोंक पनपती है, इसलिए समझदारी इसी में है कि सफाई को ड्यूटी नहीं साझेदारी बनाया जाए। थोड़ी मदद, थोड़ी तारीफ और थोड़ा समय पर किया गया काम घर को भी साफ रखता है और मन को भी साफ रखता है। क्या बात आपने कही है ना?
1: बिल्कुल। एक और मेरे साथी जो कहते हैं कि घर की सफाई बिना नोकझोंक के घर के हर सदस्य की भागीदारी से होनी चाहिए। इस बात पर एक गुजराती मुहावरा भी है, झाझा हाथ रलियामड़ा, मतलब एक हाथ के मुकाबले ज्यादा हाथ से काम सुंदर तरीके से और जल्दी पूर्ण होता है। इसके अलावा फिल्म नया दौर का गीत भी सही संदेश देता है कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना।
0: बिल्कुल, सफाई करते समय ये गाना जरूर गुनगुनाना चाहिए जिससे एकता बने। और फिलहाल तो हम लोग एक अंतराल लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं।

0: अंतराल के बाद फिर सभी का स्वागत है और आरती कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। तो अगला संदेश क्या कहता है आरती, बताओ जरा।
1: अब हमारे एक श्रोता सभाई हैं जो मेरे साथी हैं, जो कहते हैं कि घर सिर्फ चार दीवारों से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के आपसी प्रेम से बनता है। एक साफ सुथरा घर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए सफाई को लेकर आपस में नोकझोंक करने के बजाय इसे एक खुशनुमा साझेदारी में बदले। जब पूरा परिवार मिलकर हाथ बढ़ाएगा तो घर का कोना कोना तो चमकेगा ही, साथ ही आपसी रिश्तों में प्यार की चमक भी बढ़ जाएगी।
0: क्या बात आपने कही है, बहुत अच्छी अच्छी सी बातें लिखकर भेजी हैं। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि घर की साफ सफाई हो या रोजमर्रा के छोटे बड़े काम, कभी कभी इन्हीं बातों को लेकर घर में नोकझोंक हो जाती है, कभी भाई बहन में, कभी पति पत्नी में, तो कभी परिवार के किसी और सदस्य के बीच। और तुमने ये सब काम क्यों नहीं किया, या मैं ही सब क्यों करूं, जैसी बातें सुनाई दे जाती हैं। लेकिन हर नोकझोंक मन मुटाव नहीं होती, घर की साफ सफाई में आपसी सहयोग, समझदारी और प्रेम से काम आप और थोड़ी सी नोकझोंक में मुस्कान जोड़ दें और मैं की जगह हम को महत्व दें। भाई ऐसी अगर बातें होती हैं ना, तो बेचारे जो हमारे सामान होते हैं ना, वो बेचारे इंतजार करते हैं कि भाई ये लोग तो आपस में ही लड़े जा रहे हैं, कब हमारे पास आएंगे, कब हमको पूछेंगे, है ना। तो भाई ये चीज है कि आप मुस्कुराएं एक दूसरे के साथ और आपस में हाथ बटाएं, है ना।
1: और एक साथ हमें कितना समय भी, सोचिए कितना समय भी बिताने को मिलता है, साथ में हम लोग काम कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, हो सकता है वहां पे गाने चला के अरे थोड़ी देर के डांस भी कर लें।
0: क्या
1: गुनगुना भी लें, बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: आरती तुम्हारा ये जो तरीका है ना, ये बहुत अच्छा है कि गाने बजा लें अपना, सुने बढ़िया गाने और मन करे तो डांस करें। लेकिन ये नहीं कि आपने लेके झाड़ू चालू हो गए डांस करना, तो
1: थोड़ी देर चलता है,
0: इधर उधर फैल गई गंदगी, वो भी ना करें। चलो अगला क्या संदेश है हमारे साथी
1: जो लिखते हैं कि घर की सफाई हमेशा समझदारी और आपसी तालमेल से होनी चाहिए, क्योंकि नोकझोंक से सिर्फ मानसिक तनाव बढ़ता है और काम का बोझ कम नहीं होता। जब घर के सभी सदस्य मिलकर जिम्मेदारी बांटते हैं तो सफाई एक बोझ बनने के बजाय एक खुशनुमा पारिवारिक गतिविधि बन जाती है। पर कितना भी समझदारी अपना लो, नोकझोंक तो होना ही है। बिना नोकझोंक हुए, चाहे वो बचपन में भाई बहन के साथ हो या ससुराल में पति पत्नी हो, जब तक ये ना हो सफाई में मजा ही नहीं आता। ये बात तो सही कही,
0: बिल्कुल सही कहा। और एक कहावत लिखते हैं हमारे साथी एक है कि सुंदर और स्वच्छ घर में ही खुशियों का वास होता है, लेकिन जब इसी घर में साफ सफाई की बात आती है तो अक्सर घरों का माहौल थोड़ा बदल जाता है। दिवाली की सफाई हो, वीकेंड का रूटीन हो या रोजमर्रा का झाड़ू पोछा, घर की सफाई अक्सर परिवारों में दो ही मोड़ लेती है, या तो ये बहस और नोकझोंक की वजह बन जाती है, या फिर आपसी मेलजोल और साझेदारी का एक जरिया। तो भी हम तो सफाई के मामले में ये कह सकते हैं कि जो छुट्टी का दिन हो उस दिन आप एक बैग ले लीजिए और बस जो चीज़ आपको, हर कमरे में जाइए, जो चीज़ आपको लग रही है कि हटा सकते हैं तो उनको उसमें रखते जाइए, और शाम होते होते आप देखेंगे कि आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी इकट्ठी कर ली हैं जो काम की नहीं है, बहुत टाइम से रखी हुई हैं। तो इस तरह

आप उनको हटा सकते हैं। तो और आप थोड़ा थक गए हों, ये नहीं कि लगातार काम ही करते रहिए, आपस में जाइए, एक चाय बना लाइए, पत्नी को पिला दीजिए, खुद पी लीजिए, अगर वो झगड़ा होते हैं तो रूठ गई है तो उन्हें मना भी लीजिए, है ना। और मनाना है तो भाई ये गाना भी सुना देते हैं, अगर पत्नी रूठ जाए तो वो पत्नी के लिए, पति के लिए गा ले, और पति रूठ जाए तो पत्नी गा ले, तो ये गाना सुन लेते हैं, फिर हम आगे बातें करते हैं।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: तो आरती, हमारी बातें चल रही थी ना, तो हमारे साथ एक

0: लिख रहे हैं कि परंपरागत रूप से हमारे समाज में घर की सफाई का पूरा जिम्मा महिलाओं का या किसी एक ही सदस्य पर डाल दिया जाता है, और जब घर के बाकी सदस्य गंदगी फैलाने में तो वो आगे रहते हैं लेकिन समेटने के वक्त गायब हो जाते हैं, तब नोकझोंक की शुरुआत होती है। ये बात तो सही है कि हमारी सखियां बहनें सारा समेटती रहती हैं, उनके दोनों हाथ चलती रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं आता है, बल्कि बच्चे तो और फैलाने लग जाते हैं। तो कहना चाहिए कि सबको सहयोग देना चाहिए, बच्चों को भी सिखाएं कि सफाई कितनी जरूरी है। आप जहां बैठते हैं, जिस कमरे में आप सोते उठते हैं, वहां पर सफाई रखिए, और अगर जहां पर खाना खाते हैं टेबल है तो उस जगह आप उसकी सफाई करिए। तो छोटे छोटे काम बांट देने चाहिए सभी को।
1: और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि घर की सफाई, नोकझोंक या साझेदारी बड़ा अच्छा मुद्दा है। घर की बहन की नोकझोंक, बहन से नोकझोंक हो जाती है, वो कभी पोछा लगा देती है तो हम जाले साफ कर देते हैं, जब कभी बर्तन मांजती है तो हम उसका फोन चलाने लगते हैं।
0: क्या बात है,
1: तब तो आपकी अच्छी तरीके से डांट पड़ती होगी।
0: सही बात है, फोन चला रहे हो काम
1: वो भी उसका।
0: और कई बार ऐसा मुझसे निकल जाता है कि हम इतने भूतों की तरह जुटे हुए हैं, तुम लोग काम नहीं कर रहे हो साथ में, तो वो चीजें भी कभी हंसी मजाक में भाई बहनों के बीच में निकल जाती है। तो हमारे साथी इसी तरह और लिखते हैं कि भाई जब घर की सफाई या नोक झोंक या साझेदारी की बात होती है तो मेरी पुस्तकें उनको वैसी लगती हैं, अजीब सी लगती है, और पुस्तकों की सुगंध उनको बदबू लगती है, मेरा रीडिंग रूम उनको कबाड़खाना लगता है, घर का माहौल ऐसा ही है, जोड़ी हमारी जमीन न जाने कैसे जानी, अब तो हम हैं अंग्रेजी तुम लड़की हिंदुस्तानी। और इस तरह उन्होंने गीत भी लिखा है कि भाई मुझे ये गीत सुना दीजिए। तो ये चीज तो बड़ी ऐसी चलती रहती है नोक जो घर में होती है सफाई के समय। तो
1: और साथ ही हमारे एक साथी जो लिखते हैं कि घर की सफाई, नोकझोंक या साझेदारी, मेरी छुट्टी का दिन हो और घर की सफाई का दिन हो तो मुझे सफाई का सामान पकड़ा देती हैं, और ड्यूटी पर धर्म पत्नी मुझे मतलब सफाई की ड्यूटी पर लगा देती हैं। अगर मैं आनाकानी करूं तो मुझे मेरी मनपसंद अदरक इलायची वाली चाय का लालच देती हैं, और कहती हैं कि जितनी बार भी पियोगे बना दूंगी, और मैं राजी भी हो जाता हूं, भाई चाय मिलेगी तो करना ही पड़ेगा काम।
0: मेरी कोई अगर घर का इतना सारा काम कर रहा है तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसके लिए एक कप चाय बना दें, उसको ताजगी महसूस होगी तो फिर वो और ज्यादा काम कर सकती है ना। और हमारे साथी लिखते हैं कि घर की साफ सफाई, नोकझोंक या साझेदारी, भाई वे घर अब कहाँ हुए जहाँ जब लोग ही फ्लैटों में रहने लगे हैं, नहीं अपितु मियां बीवी दोनों ही नौकरी पेशा होते हुए भी इस कल्चर से प्रभावित होने लगे हैं, फिर कहीं कोई कमी नजर भी आई तो उसके लिए दाई तो है ही ना। लेकिन ठीक है, हम किसी भी घर में रहें, चाहे वो फ्लैट में रहें, चाहे छोटे से घर में, चाहे बड़े से घर में, सफाई तो देखिए सब जगह ही होनी पड़ती, नहीं
1: थोड़ा बहुत काम हमें अपने आप करना ही पड़ता है।
0: वो कितना भी आप किसी से करवा लें, लेकिन एक बार तो एक रविवार को आपको जुटना पड़ेगा।
1: जो सफाई होती है, गहन सफाई तो हमें खुद ही करनी पड़ती है
0: ना। तो एक गीत सुनते फिर आगे बढ़ते हैं।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो आरती, जो हम बात कर रहे थे ना, तो हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि हम तो यही करते हैं, गानों के साथ काम या फिर भजन के साथ खाना बनाना। क्या बात है। मतलब बहुत ही फिर तो स्वादिष्ट खाना बनता होगा, क्योंकि भक्ति के रस में डूब के अगर आप एक रसेदार व्यंजन बना रहे हैं
2: बिल्कुल,
3: तो उसका स्वाद ही अलग होगा।
2: वो हमारे जो मन की सोच होती है ना, वो हमारे खाने में भी आ जाती है।
3: बिल्कुल आ जाती है। और भाई, जब हम खाना बना खा के जाते हैं, बाहर निकलते हैं और या कोई घर पे आ गया तो बातें करने लग जाते हैं, देख रहे हैं कि भाई वो सामने वाला कितना बोल रहा है। तो जब किससे शुरू होते हैं ना, तो उनका अंत ही नहीं होता, एक दूसरे से बातें करते हैं। और जब खाते खाते उन्हें बाहर छोड़ने जाते हैं तो भी दरवाजे पे खड़े होकर के घंटों बातें चलती है। और कई बार सोच भी रहे हैं कि भाई अच्छा अब चलें, अरे रुकिए भाभी जी ये किस्सा और ये भाई साहब ऐसी बात, तो ये सब चलती रहती है।
2: बिल्कुल। और मंजरी, अच्छा ये चीज देखिए, अक्सर हम कहते हैं ना कि अच्छा वो आप थोड़ी देर बैठ जाइए ना, थोड़ी देर बैठ जाइए, नहीं नहीं बहुत हो गया, अरे 5 मिनट बैठ जाइए ना, नहीं नहीं बहुत हो गया, ज्यादा देर हम बैठ नहीं पाएंगे, हमें बहुत काम है, घर पे सारे काम पड़े हुए हैं, अब बैठेंगे तो फिर बहुत काम हमारे पीछे रह जाएंगे।
3: हाँ, अभी फोन भी आता होगा किसी का ना, ऐसी
2: और ऐसा कहने के बाद भी एक घंटा निकल जाता है।
3: कई बार जिसके साथ आप बातें करें ना, वो ये कहता है अरे छोड़िए आइए एक एक कप चाय और हो जाए, मतलब थोड़ा और बैठ लीजिए। तो उनको भी लगे, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमने तो मान लो सही में कहा या संकोच बस कह तो दिया, लेकिन सामने बोला हाँ चलिए बैठ लेता हूँ एक कप चाय पी लेता, तब पता चलता है कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही लंबे बातें खिंच गई है ना। तो हमारे साथी क्या लिखते हैं ये हम लोग देख लेते हैं, है ना।

0: हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि एक मिनट से चलते 5 मिनट तक की बातचीत की सीमा घंटों तक पहुंचाए जाने में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का अव्वल नंबर आएगा। उनकी बातचीत में घर से लेकर मोहल्ले तक के इतने सारे विषय जुड़े होते हैं कि बातें खत्म होने में घंटा भर समय भी कम पड़ता है, फिर ये बातें फोन पर हो रही हो या फिर आमने सामने।
1: भाई देखिए, इसमें दोनों लोग की बात करते हैं, महिलाएं ही नहीं, महिलाएं तो करती वो तो फेमस है लेकिन हमारे साथी लोग भी खूब ऐसी बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि घर से निकले बाहर चौराहे पे चले गए या कहीं भी खड़े होकर बात कर रहे हैं,

0: करते हैं, महिलाएं ही नहीं, महिलाएं तो करती करती वो तो फेमस है लेकिन हमारे साथी लोग भी खूब ऐसी बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि घर से निकले बाहर चौराहे पे चले गए या कहीं भी खड़े होकर बात कर रहे हैं, महिलाएं तो चलो अड़ोस पड़ोस की खबरें लेकर के उनको पूरी खबर रहती है कि यहाँ क्या चल रहा
1: है, क्या बातें हुई,
0: और कई बार बहुत जानकारी भी मिल जाती है कि भाई इतने दिनों के लिए वो बाहर जा रहे हैं, तो सपोज आपने प्रोग्राम बनाया बाहर जाने का उसी दौरान, तो दो घर खाली रहेंगे, तो इससे पता चल जाता है कि भाई बगल वाला 15 दिन के लिए इस तारीख से जा रहा है, तो चलो हम थोड़े दिनों बाद चले जाते हैं, तो कभी कभी इस चीज़ का भी फायदा होता है। तो बात जरूर करिए, लेकिन हाँ भाई बहुत ज़्यादा देर ना करके थोड़ी देर करिए। हमारे साथी क्या लिखते हैं कि 5 मिनट बनाम 1 घंटा कुछ लोगों की नहीं बहुत लोगों की आदत है, मेरी एक परिचित घंटा भर फोन पर बात कर लेती हैं और तब बोलती हैं अरे तुम तो आती ही नहीं, आओगे तब मिलकर अच्छे से बात करेंगे, फोन पर कितना बात करें, पड़ोस की चाची सास चचिया सास घंटों घर में बैठकर बात कर लेंगे, पर जब आप उन्हें गेट तक छोड़ने जाएंगे तो वहां भी खड़े खड़े आधा घंटा बात करेंगे। उनकी इस हरकत से मेरी सासू माँ कभी चिढ़ जाती थी, गेट पर खड़ा कर क्या बात करना, घर में ही आधे घंटा और बात कर लिया करो, अब कैसे कहा जाए कि आप अब जाइए भाई साहब, जब जाएं तभी तो आदमी विदा ले उनसे, लेकिन पीछे से घर वाले जरूर परेशान होते हैं कि भाई तुम फिर वहां खड़ी बातें कर रहे हो या अड़ोस पड़ोस से बातें करने लग जाओ, तो ऐसी ऐसे सीन हमेशा देखने को मिल जाते हैं, लेकिन क्या करें भाई, चल गई बातें तो चल गई
1: चली चली जा रही हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि भाई होने को तो ऐसा भी होता है, जो लोग नौकरी पेशा नहीं है उनके पास समय होता है, ये लोग आपस में ऐसा करें तो बात समझ में आती है, लेकिन जब ऐसे लोग किसी नौकरी पेशा लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करने लगे तो ऐसे में वो बात करे या फिर नौकरी पर जाए, वो तब भी जब सामने वाला अपना कोई अपना ही हो तो आप उनको मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनको बुरा लग सकता है कि अब हमें जाना है निकलना है काम पर।
0: और एक लिखते हैं कि चाहे मोबाइल पर बातचीत हो या लैंडलाइन पर, मैं तो शॉर्ट में और टू द पॉइंट बात करना पसंद करता हूँ, ये मेरी आदत मेरी धर्म पत्नी की भी है। और एक लिखते हैं कि हम 6-7 सहेलियां पार्क के गेट पर आते जाते जब तक कि सुबह सभी बहुत बिजी रहती है, फिर भी खड़े खड़े बात करते रहे, फिर चलते हैं कहकर फिर कोई नई बात शुरू हो जाती है और 5 मिनट की बात 1 घंटे की हो जाती है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि हमें घंटों की निरर्थक बहसों और फालतू की गपशप को अलविदा कहना चाहिए, इसके बजाय 5 मिनट की सार्थक बातचीत को अपनाना चाहिए, और जो जो हमारे समय की इज्जत करे, हमें कुछ सिखाए और जीवन को एक कदम आगे बढ़ाए।
0: और हमें एक गीत सुन लेना चाहिए।
2: यूं ही तुम

0: तो भाई देखो, हमारी जो सखियों ने लिखे हैं कि उपयोगी टिप्स में लिखा है कि रेसिपी में लिखी सभी सामग्रियां, मसाले, सब्जियां, तेल आदि पहले इसे निकाल कर काउंटर पर रख लें, चॉपिंग पहले कर लें, सब्जियों को काटना, प्यूरी बनाना या सूखा मसाला पीसना, ये सारे काम गैस चालू करने से पहले ही पूरी तरह से कर लें। बदलाव से बचें, पहली बार में सामग्री को किसी दूसरी चीज़ से बदलने की कोशिश ना करें, जो लिखा है वही इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल। और हमारी एक साथी जो हमें एक रेसिपी लिख कर भेज रही हैं कि जैसे कि पिज़्ज़ा रोटी है, तो रोटी चाट और आप बचे हुए रोटी से आप सैंडविच भी बना सकते हैं, वो भी खाने में बेहद स्वाद लगते हैं। इसी तरह आपको बचे हुए चावल से नई रेसिपी बनाने की टिप्स देती हूँ। चावल के पकौड़े, चावल को आप फ्री करके करके खा सकते हैं, और फ्राइड राइस भी बना सकते हैं उसको, और फ्राई करके भी खा सकते हैं, फ्राइड राइस भी बना सकते हैं, और बेहद स्वादिष्ट लगते हैं।
0: और हम गीत

0: तो भाई हमें तो जाना ही पड़ेगा, तो कार्यक्रम से लेते हैं विदा सभी को, मंत्री वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अंशी पाठ। सखी सहेली।

0: नमस्कार दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। इस कार्यक्रम में आप ही की बातें हैं, आपकी ही पसंद है, आप ही की यादें हैं और आप ही की फरमाइश भी है। तो आइए कुछ बातें करें, जुड़े आप सब से आपके अपने खूबसूरत सफर से। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो
1: जी, हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार मंदाकिनी जी।
0: नमस्कार, अरे कौन बोल रहे हैं आप।
1: जी मैं लक्ष्मी कुमार बोल रहा हूँ, जिला महाबा उत्तर प्रदेश से।
0: कैसे हैं?
1: जी मैम मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
1: जी मैम अभी तो खाली है, बस आपका सीजन चल रहा है।
0: अच्छा
1: जी, अभी गांव में थोड़ा बहुत काम लगता है तो कर लेते हैं।
0: जैसे क्या काम कर रहे हैं गांव में? कौन सा गांव है आपका?
1: जी मेरे गांव का नाम है कीरतपुरा।
0: कीरतपुरा
1: जी।
0: अच्छा, कैसा है आपका गांव? अपने गांव के बारे में थोड़ा बताइए हमें, क्या क्या सुविधाएं हैं या क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको?
1: जी मैम यहाँ पे ज्यादा सुविधाएं तो नहीं है, वैसे ही तो देखते हैं कि यहाँ पे ज्यादा कीचड़ हो जाता है बरसात के सीजन में। हाँ, तो हमारे गांव के पास में एक दूसरा गांव, वहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, तो वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं।
0: अच्छा,
1: वहाँ पे हनुमान जी को कहते हैं कि पसीना भी आता है उनकी मूर्ति से।
0: अच्छा, ऐसी मान्यता है, ऐसा तो, लोग कहते हैं।
1: जी मैम वहाँ पे उनको एसी लगाना पड़ता है उनके कमरे पे, गर्मी के सीजन में इतना पसीना निकलता है।
0: अच्छा अच्छा,
1: मेरी आपसे 2 महीने पहले बातचीत हुई थी।
0: अच्छा, कब हुई थी?
1: जी मैम 22 जून को हुई थी आपसे।
0: अच्छा, आपने तारीख को नोट कर लिया या आपको याद है ये तारीख?
1: नहीं मैम तारीख याद है, आपसे बात हुई है, कैसे भूल सकते हैं हम लोग।
0: बहुत सुंदर। किस तरह के कार्यक्रम सुनते हो विविध भारती में? कौन से कार्यक्रम पसंद आते हैं आपको?
1: जी आपका इस सभी सहेली कार्यक्रम और आपका जिज्ञासा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है मैम।
0: अरे वाह, जिज्ञासा पसंद है, यानी आपको साइंस पसंद है।
1: जी मैम।
0: बड़ा गंभीर कार्यक्रम है वो तो, और उसमें जानकारी मिलती है ना, ज्ञान विज्ञान को लेकर। और सखी सहेली में आप सखाओं को क्या पसंद आता होगा?
1: जी मैम हम तो बचपन से ही सुन रहे हैं विविध भारती सर, तो हम तो बचपन से ही सखी सहेली सुन रहे हैं। और ऐसा है कि जानकारी तो कहीं से ही मिले लेनी चाहिए।
0: हाँ ये बात अलग है कि जानकारी आपको कहीं से भी मिल सकती है ना।
1: जी।
0: तो कभी रसोई में घुसकर खाना बनाया है आपने? जब सखी सहेली कार्यक्रम सुनते हैं तो उसमें तो हम व्यंजनों की बात भी करते हैं, सखी सहेलियों की बात भी करते हैं।
1: जी मैम खाना बनाना तो नहीं आता लेकिन सुन लेते हैं।
0: खाना खाना आता है बस, है ना।
1: जी मैम।
0: हाँ, और खाने में नुक्स निकालना आता है कि आज नमक नहीं डाला, आज पानी ज्यादा डाल दिया, आज तेल ज्यादा डाल दिया, मिर्च कम डाल दी, ऐसा?
1: ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए।
0: तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? कौन सा गीत आपके दिल के सबसे करीब है?
1: जी मैम फिल्म का नाम है कुदरत का कानून, उसमें एक गीत है तुझे कितना प्यार करें।
0: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो
1: हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: आप मंदाकिनी दीदी बोल रहे हो?
0: हाँ जी जी बिल्कुल, आप बताइए अपना नाम।
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती पद्मा सिंगर बात कर रही हूँ दीदी। तीन महीने हो गए दीदी मेरे कॉल को, तीन महीने से आपके आपके साथ ही बात हुई हुई थी दीदी मेरी।
0: अरे वाह, क्या नाम बताया आपने अपना? पद्मा।
1: पद्मा सिंगर।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर नाम है आपका तो।
1: गाना सुनना है दीदी, आप कैसे हो दीदी?
0: मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छी हो गई हूँ।
1: मेरे को गाना सुनना है दीदी।
0: गाना तो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये बताइए आज आप क्या कर रही हैं, कितनी बिजी हैं, आज दिन भर आपने क्या काम किया, कुछ तो बताइए।
1: आज तो दिन भर में इतना काम करे दीदी का, मेरी बेटी आई थी कल तो उन राखी बांधने के लिए, तो मेहमान का खाना बनाया दीदी, जो आए थे अपनी मेरी मम्मी पन आई थी।
0: अरे वाह।
1: हाँ बहुत सारा काम करी दीदी आज मैंने।
0: थक गई फिर?
1: थक गई आज, मेरे भैया पन आए थे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, जब बहुत ज्यादा काम करके थक जाती हो तो क्या करती हो, विविध भारती सुनने लगती हो?
1: नहीं तो दीदी हम तो रेडियो सुनते ना दीदी, हेलो फरमाइश सुनते हो दीदी?
0: अच्छा।
1: हाँ चालू रहता है दीदी मेरे यहाँ।
0: अरे वाह, सुबह से शाम तक चालू रहता है विविध भारती?
1: चालू रहता है, सुबह हमारे अमरावती ये केंद्र के कार्यक्रम सुनती हूँ।
0: हाँ।
1: और 11 बजे से हमारा उम्मीद भारती चालू रहती है।
0: अच्छा तो एक बात बताइए, आपने इतना सारा खाना बनाया त्योहार के लिए, क्या क्या बनाया था खाने में?
1: मैंने दीदी रोटी बनाई, चावल बनाई, दाल बनाई, पूरन पोली बनाई दीदी।
0: पूरन पोली तो मुझे भी बहुत पसंद है।
1: आओ दीदी खाने को।
0: हाँ अब मुझे लगता है आना पड़ेगा आपके घर ना पूरन पोली खाने मुझे।
1: आओ ना अभी अमरावती आएगी ना हमारे घर आना दीदी।
0: पक्का पक्का, बिल्कुल आऊंगी।
1: हाँ दीदी,
0: आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। आज आप बहुत खुश भी लग रही हैं, इतनी व्यस्त होते हुए भी थकान भी नहीं लग रही है आपकी बातों में, है ना?
1: नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो थकान रोज ही नहीं रखती दीदी, रोज मैं काम करती हूँ, घर का काम करती हूँ, और मेरे जो पोता पोती है
0: हाँ।
1: उनको स्कूल ले जाना, छोड़ना, लाना, ये सब मैं करती हूँ दीदी।
0: अरे ऐसे तो आधी थकान दूर हो जाती है बच्चों के साथ तो
1: दूर हो जाती दीदी।
0: हाँ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी आप?
1: डॉन फिल्म का चित्रपट है दीदी।
0: डॉन फिल्म का कौन सा गाना?
1: अरे दीवानो मुझे पहचानो।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: अरे दीवानो मुझे पहचानो।

0: दीवानो मुझे पहचानो जरा पहचानो मैं हूँ डॉन।
1: हेलो
2: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते, हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
2: न मांगी कोई दुआ, न कोई गुजारिश की, न कोई फरियाद, न कोई नुमाइश की, जब झुका सर सजदे में खुदा के, तो हेलो फरमाइश में जिनसे मेरी बात हो रही है उनकी खुशी की ख्वाहिश की।
1: अरे किनसे बात हो रही है आपकी हेलो फरमाइश में?
2: मंदाकिनी जी से।
1: अरे शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी, आपने हमारी खुशहाली की दुआएं की है। बताइए अपना नाम, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं ये तो बताइए।
2: पालदा नाका इंदौर से मोहम्मद रफी मंसूरी।
1: कैसे हैं आप बताइए मोहम्मद रफी साहब?
2: बहुत अच्छे मैडम, आप कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं।
2: जी जी।
1: क्या कर रही हैं इन दिनों?
2: इन दिनों मैडम सिलाई का काम करते हैं हम लोग।
1: अच्छा, क्या सिल रहे हैं?
2: घनी बैग का काम है।
1: बैग का?
2: हाँ जी।
1: अच्छा, आपका नाम इतना खूबसूरत है, क्या याद आता है आपको अपने नाम के साथ?
2: मेरे को मैडम रफी साहब याद आते हैं और उनके गाने याद आते हैं।
1: रफी साहब का कौन सा गाना आपके दिल के सबसे करीब है?
2: ये उम्मीद का है ना, मुझे इसके तुझे से, फिर राजा रंग का, फिरकी वाली, सारे गाने मैडम उनके तो
1: पसंद आते हैं। अच्छा, आपको घर में किस नाम से पुकारते हैं? आपका घर का नाम क्या है?
2: घर का नाम बबलू है मैडम।
1: बबलू, बड़ा प्यारा नाम है ये बबलू, है ना? तो बताइए, जब आप छोटे थे आपको बबलू कहा जाता था, यानी आप बचपन में ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको तुरंत खुश कर देती थी?
2: मुझे तो मैडम खिलौने मिल जाते थे तो बहुत खुशी हो जाती थी मैडम।
1: अच्छा, खिलौने मिलते थे बचपन में? आपके माता पिता खिलौने ला के देते थे आपको?
2: हाँ, मेरी मम्मी ने बहुत ध्यान रखा मेरा और खिलौने भी मुझे ला के दिए थे, तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी।
1: क्या क्या खिलौने थे आपके पास बताइए?
2: वो गाड़ी आती थी चार पहिए की प्लास्टिक की मैडम, वो और बंदूक आती थी वो।
1: लड़के लोगों के पास बंदूक नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता है, जभी तो हमने जानना चाहा।
2: चाबी की मोटर आती थी ना, जो उसको चलाते थे अपन।
1: हाँ हाँ हाँ,
2: चाबी की मोटर, उसको चाबी भर दो तो छोड़ दो तो वो बहुत दूर तक जाती थी।
1: उसको देख कर तो मजा आता
2: था। बचपन की यादें कभी भुला नहीं सकता मैडम।
1: लेकिन अगर अब आप अपने बच्चों के बचपन की बात करें तो क्या कहेंगे? आपके बच्चे हैं, क्या ला के देते हैं उनको खिलौने? ला के देते हैं?

0: पहचानी मेरी।
1: अरे आपकी तो शादी ही नहीं हुई। चलिए तो
0: नहीं।
1: आप भी अपने बच्चों के बचपन का जो है ख्याल रखिएगा, जब आपकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, तो उनका जो बचपना है उसे कभी दूर मत होने दीजिएगा, क्योंकि बचपन से सुंदर जो है समय कभी नहीं मिल पाता।
0: जी, सही।
1: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप बताइए?
0: फिल्म का नाम है हम पांच, मिथुन चक्रवर्ती और स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया है। और गाने के बोले का जानू मैं सजनिया चमके ही कब चंदनिया गरमा गरी।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ मैडम, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
0: कैसे हैं लोकेंद्र जी?
1: बस बिल्कुल मैडम जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और विविध भारती को, प्रसार भारती मोबाइल ऐप और जो डीटीएच पर भी सुन लेते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहते हैं विविध भारती के।
0: आपसे तो पहले भी बात हो चुकी है मेरी, बहुत पहले।
1: हाँ आज से करीब 6 महीने पहले हुई थी मेरी बात आपसे।
0: कैसे हैं बताइए, इन 6 महीनों में क्या कुछ खास किया आपने?
1: खास तो मैडम जी मेरा तो हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस है और मैं हेयर कटिंग सैलून पर काम करता रहता हूँ और आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। आपके अलग जो भी विविध भारती के सारे प्रोग्राम आते हैं, जैसे मन चाहे गीत है, हेलो फरमाइश है, सखी सहेली है। सखी सहेली में वो प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, जैसे कि वो खाना बनाने की टिप्स बताते हैं ना अलग अलग, खाना अलग अलग किस प्रकार के भोजन व्यंजन बनाते हैं वो अच्छा लगता है। और सभी प्रोग्रामों की मुझे जो अपडेट है वो अपडेट फेसबुक पेज के माध्यम से मिल जाती है।
0: इसका मतलब आप खाने के शौकीन है तभी आपको वो पसंद है?
1: बिल्कुल अच्छा लगता है मैडम जी खाना, और मैं खाना घर में बना भी लेता हूँ, वाइफ के साथ में उनको हाथ बटा देता हूँ, सिर्फ मुझे रोटी बनाना नहीं आती, बाकी सभी व्यंजन बना लेता हूँ।
0: अरे क्या क्या व्यंजन बनाते हैं बताइए, पत्नी का हाथ कैसे बटाते हैं?
1: हमारे यहाँ उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध भोजन रहता है दाल बाफला और लड्डू। ये मालवा अंचल का मतलब सबसे प्रसिद्ध भोजन है, ये भी बनाने में उनका साथ में सहयोग कर देता हूँ। और जैसे दाल चावल फ्राई है, दाल फ्राई है और मटर पनीर की सब्जी है, ये सब प्रकार के व्यंजन मैं खुद बनाता हूँ।
0: अरे क्या बात है, कहाँ से सीखा आपने?
1: मैडम जी ये तो सब मैंने आपके यहाँ से जो टिप्स मिलते हैं उसको देखते हैं, और बाकी जो घर में कभी कभी महिलाएं भी बनाती तो उनको देखकर हम भी सीख जाते हैं।
0: सही बात है ना, और जिनको खाने का शौक होता है ना तो वो कहीं ना कहीं से रेसिपी देख ही लेते हैं कि किस तरह से कौन सा व्यंजन बनाया जा सकता है ना।
1: और खास कर

0: मेरी एक खासियत है कि मैं सिर्फ घर का बना भोजन ही खाता हूँ। मैं बाहर मतलब डिनर पे या कहीं बाहर जाता हूँ ना,
1: हाँ।
0: तो मैं बाहर का व्यंजन इतना ज्यादा अवॉइड करता हूँ सभी चीजों को, क्योंकि बाहर के जो व्यंजन रहते हैं खैर लगते तो लुभावने हैं, जैसे पिज्जा है, बर्गर है, ये चीजें, पर ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहते हैं। क्योंकि घर का जो शुद्ध शाकाहारी भोजन आप खाएंगे तो उससे आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। आज मेरी 52 साल की उम्र है पर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, ना थायराइड है, बीपी है, शुगर है, कुछ भी नहीं है।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात। आपने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि पिज्जा बर्गर खाने के हम जितने शौकीन हैं उतनी ही बीमारियां हम पाल भी ले रहे हैं ना। खासतौर से हमारे बच्चे जो फास्ट फूड के शौकीन है, आए दिन उनको फास्ट फूड चाहिए है ना, स्ट्रीट फूड चाहिए, तो माता पिता को चाहिए कि घर में ही बना के वो खिलाएं ताकि बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं हो। आप 52 ईयर्स ओल्ड हैं, आपने कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं है, बहुत अच्छी बात है।
0: आज उज्जैन में महाकालेश्वर जी की सवारी निकल जाती है, शाही सवारी।
1: अच्छा, हाँ।
0: और आज शाही सवारी उज्जैन में निकल रही है, बाबा महाकालेश्वर जी खुद दर्शन देने के लिए पालकी में सवार होकर जनता का हालचाल जानने के लिए निकल रहे हैं, और वो सवारी निकल रही है आज।
1: वाह, बहुत सुंदर दृश्य होगा और काफी लोगों की तादाद होगी, भीड़ होगी, काफी लोग आजू बाजू चलेंगे।
0: बिल्कुल मैडम जी, और ये उज्जैन महाकालेश्वर के जो स्थान है ये तो ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है ही सही, पर आज जो शाही सवारी निकली है इसमें करीब 5 लाख से यात्री जो उज्जैन में दर्शन करने के लिए आए।
1: बहुत बड़ी बात, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर कि कितना खास दिन हम मना रहे हैं और उज्जैन में खास तौर से इतने श्रद्धालुओं की भीड़ है।
0: जी जी मैडम
1: जी, तो बताइए आपकी पसंद का कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
0: गाना सुनना है मुझे लता मंगेशकर जी की आवाज में, फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, और इसमें एक गाना है ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है।
1: अरे बहुत सुंदर गाना है लता जी की आवाज में, चलिए आप सुनना चाहते हैं ये टाइटल सॉन्ग सत्यम शिवम सुंदरम।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ धन्यवाद दीदी, मैं यहाँ राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश से राजेश अग्रवाल बोल रही हूँ।
0: राजेश जी स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद।
0: कैसे हैं?
1: बढ़िया दीदी, यहाँ प्रिंटिंग प्रेस पे बैठा हुआ, पानी भी गिर रहा है अभी।
0: अच्छा अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस।
1: बारिश जोरदार हो रही है, एक घंटा हो गया है।
0: अरे वाह, अच्छी बात है ना।
1: मतलब हाँ, मतलब एक महीने से पानी नहीं आ रहा था यहाँ पर। हाँ, और हमारे परिवार के लोग हैं जो करीब 40 वर्षों से कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: अच्छा, कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप विविध भारती के?
1: विविध भारती के जैसे तो मनचाहे गीत अभी चालू कर दिया आपने।
0: आपने पत्र लिखा मनचाहे गीत में?
1: बिल्कुल, छुट्टियाँ बहुत जारी है, लेकिन उसका समय कम है, डेली किया जाए। और हेलो फरमाइश का समय भी जैसे आपने एक ही दिन कर दिया, ये आप दो दिन ही किया जाए।
0: चलिए तो आप प्रिंटिंग प्रेस में काम करके समय निकाल लेते हैं हमसे फोन करने का।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमारे कारीगर काम करते हैं ना, हम तो क्या है डायरेक्शन देते हैं, जैसे मतलब हमारे पास दो तीन कारीगर है। और बाकी के समय हम जैसे सुनते रहते हैं, समय रहता है तो फरमाइश कार्यक्रम हमारा खास है, जैसे मनचाहे गीत है, इसके बाद ये हेलो फरमाइश है।
0: हाँ हाँ, ये सभी कार्यक्रम आपको पसंद है बिल्कुल।
1: हाँ
0: तो बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं?
1: आज गीत है ये उजाला पिक्चर का झूमता मौसम मस्त महीना, जो के जय किशन साहब की पुण्यतिथि है।
0: जी जी,
1: तो उनका बनाया हुआ गीत है ये, तो वह नहीं सुनवा दीजिए, और हमारे साथ में हमारे परिवार के लोग भी सुन रहे हैं इस गीत को। शांति महाजन है, मुकेश महाजन है, नीता महाजन है और राकेश महाजन है।
0: चलिए तो आप सभी मिलकर सुनिए अपनी पसंद का ये गीत
2: झूमता।

0: चले गई। हेलो,
1: आपकी दोस्ती ही मेरी जान है, शायद इस हकीकत से आप अनजान है। मुझे खुद नहीं पता मैं कौन, क्योंकि आपकी दोस्ती ही मेरी पहचान है।
0: क्या बात है, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में अपना बताइए, अपने बारे में आप कौन हैं?
1: मंदाकिनी मैडम जी नमस्कार, सबसे पहले तो आपको
0: नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। अपना नाम बताइए हुजूर।

0: जयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ मैडम।
1: दिलीप सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
0: बहुत ही बढ़िया हूँ मैडम, आज आपसे बात हो गई तो और भी अच्छा हो गया मैडम।
1: अरे पहले भी शायद आपसे बात हुई भी है हमारी, तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है।
0: बिल्कुल 18 जून को बात हुई थी आपसे मेरी 2025 में, उसके बाद आज हो रही है।
1: चलिए तो अच्छी बात है कि आपकी दोबारा हमसे बात हो रही है। और कैसा है आपका शहर?
0: मैडम
1: आपका शहर बताइए।
0: बहुत ही बढ़िया एकदम मैडम।
1: सही बारिश हो गई है जितनी उम्मीद थी?
0: बारिश अभी हुई नहीं है, एक महीने से कल हुई शाम को आधा पौन घंटा, थोड़ी ठीक हुई लेकिन उससे थोड़ी उमस हो गई है।
1: बिल्कुल सही
0: कहा। और आसार है, झीलें अभी खाली है।
1: बिल्कुल, क्योंकि प्रॉपर बारिश होनी चाहिए थी, वो तो हुई नहीं, जो झीलें भर जाती
0: जी।
1: लेकिन पर्यटक काफी आए होंगे घूमने?
0: पर्यटकों की तो धूम मची हुई है मैडम।
1: लेकिन इस गर्मी में उनका हाल बेहाल हो जाता होगा ना?
0: फिर भी उनको जरा भी चिंता नहीं रहती है।
1: हाँ हाँ, खैर घूमना तो एक इतना जानदार और शानदार काम है कि आदमी सब कुछ भूल कर निकल पड़ता है घर से, है ना?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
1: आपको यात्रा पे कहीं जाने का मौका मिला है?
0: जी अभी कुछ समय पहले ही होके आया था मैं उज्जैन महाकाल की नगरी।
1: अच्छा,
0: वहाँ हमारे प्रिय मित्र लोकेंद्र वर्मा जी से मुलाकात करके आया। बड़ा ही अच्छा लगा, वो भी खुश हो गए और मैं भी खुश हो गया।
1: अच्छी बात है, दो मित्र मिलेंगे तो खुश होना ही चाहिए। तो क्या लगा इंदौर जाकर महाकाल के दर्शन करके जब आप लौटे तो क्या महसूस किया आपने?
0: वहाँ का एक आनंद ही अलग था मैडम, जिधर देखो उधर मतलब महाकाल की नगरी में एक तो महाकाल के जो नारे थे वो बड़े ही एकदम मन को शांति और सुकून पहुँचा रहे थे, उसमें सब कुछ भूल गया मैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, आप जिस भाव को लेकर गए थे उससे कहीं ज्यादा आपको महसूस हुआ है ना?
0: अभी वापिस मानस बन रहा है इसी महीने में।
1: चलिए तो आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय हो, इसी उम्मीद के साथ हम आपसे गाना जानना चाहेंगे। कौन सा गाना आज आप सुनना चाहते हैं?
0: देवानंद साहब की फिल्म का है और रफी साहब की आवाज का गाना है। फिल्म का नाम है काला बाजार और गाने के बोल है खोया खोया चांद खिला आसमान आंखों में।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मोहब्बत की समा जला कर तो देखो, मोहब्बत की समा तो देखो, दिल की दुनिया सजा कर तो देखो, तुम्हें हो ना जाए मोहब्बत तो कहना, जरा एक बार हमसे नजरें मिला कर तो देखो।
0: क्या

0: बात है, मुकर्रर मुकर्रर।
1: दिल की दुनिया सजाकर तो देखो, तुम्हें होना जाए मोहब्बत तो कहना, जरा एक बार हमसे नजरे मिलाकर तो देखो।
0: क्या बात है, क्या बात है। हमारे सभी श्रोता सब शायर, नगमा निगार, गीतकार हैं।
1: बिल्कुल मैम, ये विविध भारती की देन है जो कि हम लोग इतना टैलेंट और इतनी खूबसूरत अंदाज से बोलना सीख गए आप लोगों को देख देख कर।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। बताइए अपना नाम, कहाँ से बोल रहे हैं, अपनी जानकारी दीजिए हमें।
1: मैं ग्रामा पोस्ट बक्सीना डिस्ट्रिक्ट बदायूं, तहसील दातागंज यानी उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बदायूं शहर से विमल ठाकुर बात कर रहा हूँ मैम।
0: विमल जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे।
0: अपनी जगह जो है बदायूं, उसके बारे में बताइए। नाम हमने बहुत सुना है लेकिन इसके बारे में चूंकि हम कभी आए नहीं है, तो बताइए कैसा है आपका ये अपना शहर?
1: जी बिल्कुल, मेरे यहाँ पर एक मजार है, दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मिन्नतें लेकर, और हमारे यहाँ पर एक बरेली के पास में आंवला पड़ता है, ठीक है मैम? आंवला शहर है, तो उसमें क्या है कि मनोरा धाम नाम से जो श्याम जी का एक दरबार लगता है, वहाँ पर काफी दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं।
0: क्या बात है, ऐसी श्रद्धा है ना, तो काफी लोग आते होंगे, काफी श्रद्धालु आते होंगे, काफी भक्त जन आते
1: होंगे। बिल्कुल मैम, यहाँ पर टूरिस्ट हूँ, जब जाता हूँ देखता हूँ टूरिस्ट बसें लगातार लगी रहती हैं, क्योंकि काफी देर के बाद गुरुजी से मिलने का नंबर भी आता है, क्योंकि लाइन काफी लंबी रहती है, तो इस समय यात्री ज्यादा रहते हैं जो श्रद्धालु ज्यादा है, तो इस चक्कर में थोड़ा सा टाइम तो लगता है मैम।
0: हाँ खैर, वो तो है ही, जहाँ श्रद्धालु या भक्तगण ज्यादा होंगे तो वहाँ तक पहुँचने में हमें वक्त लगेगा। आप कभी इस लाइन में लगे, इस श्रद्धा के साथ खड़े हुए?
1: जी मैम, मैं वहाँ पर घूमने तो गया हूँ और जल भी लेकर आया।
0: खैर चलिए, इतना फायदा तो आप भी लेंगे ही जब आप वहीं रहते हैं।
1: जो लोग अपने प्रॉब्लम में रहते हैं वो लाइन लगाकर कतार में जरूर खड़े रहते हैं, उनकी जो दुखद समस्या वो सुनाने के लिए गुरु
0: जी को। जी, वो किसी विश्वास और श्रद्धा के साथ आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर और वहाँ लाइन में लगते हैं ताकि उनको उचित मार्गदर्शन मिल जाए, है ना, इसी भावना के साथ आते हैं। हाँ, आप अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं विमल जी आप?
1: वैसे तो मैं जब आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो इस समय तो हरिद्वार में एक जॉब कर रहा हूँ।
0: अच्छा, चलिए तो बहुत अच्छी बात है, और आप हमें कॉल भी कर रहे हैं, हरिद्वार में रहकर भी आप हमें सुन रहे हैं, बहुत
1: बिल्कुल मैम, हरिद्वार में रहते हैं और साथ में हमारे बच्चे भी इस समय इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। लव गुनगुन शुभ अमेरी वाइफ सरता।
0: क्या बात है, चलिए सुनिए आप सभी अपनी पसंद का गीत, बताइए आप कौन सा गाना सुनेंगे।
1: मूवी का नाम रहेगा राम अवतार, और इसमें बेहतरीन सुनूंगा तेरी बेवफाई का शिकवा करूँ तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी, ये सब सुनवा दीजिएगा।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: नमस्कार
0: नमस्कार हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: जी जी जी मैम, मैं रामबाबू मालवी बोल रहा था, कोलार रोड भोपाल से।
0: भोपाल से रामबाबू जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, और परिवार में भी सब आनंद मंगल में हैं। मम्मी भैया भाभी परिवार में हमारे बच्चे बच्चे सब आनंद और मंगल में हैं।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो कि सब आनंद मंगल से हैं, है ना
1: जी।
0: तो
1: और हंसी खुशी के साथ, आनंद मंगल के साथ में हम विविध भारती को साथ में रखते हैं, हमेशा चलती रहती है और सुनते रहते हैं। और आपके जिस प्रोग्राम है ना विविध भारती के, बहुत अच्छे लगते हैं हमको, पूरे परिवार को अच्छे लगते हैं। चलती रहती है विविध भारती हमारे साथ में और सुनते रहते हैं, काम वाम भी करते रहते हैं। और ये पत्र भी हम अभी डाल के आए, आपसे मतलब बात करी ना, उससे 2 मिनट पहले ही मैंने पोस्ट ऑफिस में पत्र डाल के आया हूँ वहीं पे।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं डालने गया तो उनने मेरे को देखा, मैम ने बोले भैया इसमें डाल दीजिए, बोले काका है उनकी वहाँ का डाल दीजिए, जी वहाँ डाल दीजिए। बोले हमको भी एड्रेस बताना ना भैया, आपको गलत बुरा ना लगे तो। मैं ठीक है, मैंने एड्रेस बता दिया उनको, बोले हम भी डालेंगे, हम भी सुनते हैं विविध भारती का।
0: अरे
1: हाँ जी जी जी बिल्कुल। उनने दोनों मैम ने मतलब मेरे पास में एड्रेस रखा तो उन दोनों ने लिया एड्रेस, बोले हम भी डालेंगे पत्र।
0: क्या
1: हम भी बहुत सुनते हैं, हमारे हस्बैंड और हमारे सास बहुत सुनती है प्रोग्राम।
0: उन्होंने ऐसे कहा जो पोस्ट ऑफिस में बैठी थी महिलाएं।
1: हाँ जी जी जी जी बिल्कुल
0: जी। बहुत अच्छी बात है कि विविध भारती को आप सभी लोग इतना प्यार करते हैं और जिंदगी बन गई है विविध भारती आपकी, है ना।
1: बहुत बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से बचपन से सुनते हैं, हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी मान के चलो, हमारे दादा परदादा भी सुनते थे जब से रेडियो चालू हुआ, जब से हमारे दादाजी भी सुनते थे, हमारे पापा भी सुनते थे, मैं भी सुनता हूँ, उसके बाद में हमारा बेटा है वो भी सुनता है।
0: अरे अच्छा, आप
1: हमारा बेटा तो बहुत बहुत ध्यान से सुनता है, हमारा वो बेटा है ना, बहुत ध्यान से सुनता है, वो होमवर्क वगैरह भी करता रहता है और सुनता रहता है।
0: क्या बात है। तो आपने अपने दादा को याद किया है, तो दादा नाना की कोई बात याद है आपको ऐसी?
1: जी वो मतलब वो मैं ज्यादा छोटा था उस टाइम पे, वो गुजर गए थे, वो नहीं है, शांत हो गए थे।
0: अच्छा आप अपने बारे में बताइए फटाफट से, आप क्या करते हैं?
1: अपने ये ड्राई क्लीनिंग का लॉन्ड्री का काम है, वो तो चलता रहता है, विविध भारती हमेशा साथ में रहती है, आपको याद है हमारा काम ही ऐसा है, बिना सुने तो हमारा काम नहीं होता है।
0: चलिए अच्छी बात है, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: जी बिल्कुल, आपसे निवेदन करना चाहूंगा आज प्रोग्राम में, जैसे दिल है के मानता नहीं, इसी का टाइटल सॉन्ग अनुराधा पौडवाल जी का गाया हुआ गाना सुनना चाहूंगा मैं, और मेरे परिवार वाले सभी सुनना चाहेंगे।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते, हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हाँ जी मैम नमस्ते, मैं शाहजी नगर देवलूर जिला नांदेड़ से संतोष भाकरे बोल रहा हूँ।
0: संतोष जी कहाँ से बोल रहे हैं? जिला नांदेड़ से।
1: हाँ जी देवलूर।
0: बिल्कुल, कैसे हैं आप संतोष जी?
1: हाँ जी अच्छे हैं मैम।
0: बताइए अपने बारे में, बताइए क्या करते हैं आप?
1: आज बहुत दिनों बाद फोन लगे है तो बहुत खुशी हो रही है मुझे।
0: अरे वाह, पर आप इतनी गंभीरता से बोल रहे हैं, मुझे तो खुशी कहीं नजर नहीं आ रही है। पहले अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं?
1: बिल्कुल जी, तो मैं प्राइवेट अस्पताल में कंपाउंडर की ड्यूटी करता हूँ।
0: अच्छा, कंपाउंडर की ड्यूटी करते हैं जी, बिल्कुल। तो क्या समय रहता है ड्यूटी का?
1: ड्यूटी का समय डे रहता है मैम।
0: अच्छा, दिन में करते हैं ड्यूटी। अच्छा, पता है कंपाउंडर बनना आसान नहीं होता है, है ना? बनने का मतलब कि उसको निभाना, उस जो ड्यूटी को निभाना जो है बड़ा मुश्किल है। मुझे याद है एक एक्सीडेंट में एक जो कंपाउंडर थे उन्होंने बहुत समय तक इलाज करने के बाद ही कहा कि माफ़ करना दीदी, हमें ऐसा बनना पड़ता है ना, बहुत स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है। मरीज कितना भी रो रहा है, चिल्ला रहा है, उन्हें अवॉइड करना पड़ता है, उन्हें अपनी पट्टी गाज सब लगाना ही पड़ता है ना?
1: बिल्कुल सही बात है,
0: बड़ा बड़ा मुश्किल काम होता है।
1: पेशेंट के साथ साथ पेशेंट के रिलेटिव को भी हमको बोलना पड़ता है।
0: हाँ, रिलेटिव्स को भी डांटना पड़ता है, मतलब उन्होंने डांट भी दिया कि आप सही से ट्रेल लगाइए, ब्लड नीचे नहीं गिरना चाहिए, है ना? और जब अंतिम दिन उन्होंने जब कहा इस सब बात के बारे में, उन्होंने बताया कि मेरी ड्यूटी में शामिल है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मरीज ठीक नहीं होता है।
1: बिल्कुल मैम, ये सब कुछ बातें सब करना पड़ता है हमें।
0: हाँ
1: आप बराबर पहचाने।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल। तो पेशेंट जब गंभीर अवस्था में आते हैं मैम, और जब अच्छे होते जाते हैं ना, तो बड़ी खुशी होती है हमें,
0: लेकिन उसका इलाज करते समय कठोर बनना पड़ता है ना?
1: बिल्कुल बनना तो पड़ता है मैम।
0: जी जी जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: हाँ जी, मैं लावारिस फिल्म का गीत सुनना चाहूंगा, आशा भोसले और किशोर कुमार जी की आवाज में, सबके बिछड़े हुए हैं।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: हाँ जी, ये गीत सुना गया, धन्यवाद।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश जी, हाँ रहीम खान पठान बात कर रहे हैं।
0: स्वागत है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: परभणी महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं भाई।
0: अच्छा, स्वागत है, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है। आपकी विविध भारती 1975-77 से हम सुनते आ रहे हैं और आज भी हमारी सुनने की तमन्ना है। सखी सहेली फलो फरमाइश, इतना मनोरंजन, यानी हमारे देश की सुरीली धड़कन हमारे परभणी में नहीं बल्कि हमारे पूरे ओड़ में मशहूर है।
0: क्या बात है कितना
1: हमारा रेडियो चलता है और साथ में काम भी चलता है। हम ग्रुप में काम करते हैं और रेडियो विविध भारती लगा के रख देते हैं और उसका पूरा सखी सहेली सपना जितने भी प्रोग्राम है उसको का मजा लेते हैं। सबसे ज्यादा अच्छा और सुरेना मौका बोल तो हमको सखी सहेली सुनने में बहुत मजा आता है। कई
0: क्या अच्छा लगता है आपको सखी सहेली में?
1: इतने अच्छे मीठे मीठे हमारे मंदाकिनी ताई, ममता दीदी जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा काम करते करते काम किधर हो रहा है हमें कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि हंसी मजाक और गाने का मनोरंजन आता है तो बड़ा अच्छा लगता है हमको। चाहिए,
0: चलिए अच्छी बात है, आपको अच्छा लगता है हमारी बातचीत करने का अंदाज।
1: हाँ जी हाँ, चाहिए आपकी बात, आपकी आवाज, यानी हमारा विविध भारती, मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि हम 1975-77 से हमारे दिल में ख्याल ही आता था जब हम रेडियो सुनते थे तो हम रेडियो से कब बात करेंगे, आपके जैसी हमारी आवाज कब आएंगी। अब देखिए हमको भी समझो कुछ होता, उन्होंने नंबर दे दिया आपका और हमारा भी कॉल बहुत जमाने के बाद लगा, हमें इसकी खुशी हो रही है कि किसकी हद में।
0: बहुत अच्छी बात है ना कि आपको आपके ही दोस्तों ने नंबर दिया विविध भारती का और आपने हमें कॉल कर लिया।
1: जी हाँ भाई। अच्छा, प्रोग्राम में एक छोटा सा शेर बोलने की अनुमति मैं लेने चाहिए।
0: बिल्कुल बोलिए बोलिए।
1: जहाँ वहाँ मिले वतन हमारा, ये नई मंजिले ये नए रास्ते, कांटों से है इसे बचाना।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। आप क्या करते हैं, परभणी में रहते हैं?
1: जी हाँ परभणी में रहते हैं।
0: तो अपने शहर के बारे में थोड़ा बताइए हमें, परभणी के बारे में बहुत नाम सुना है हमने।
1: एक खूबसूरत मंदिर मोटा मारुति है जो हमारे परभणी के सभी नागरिक वहाँ पे आते हैं, मिलते हैं। और दूसरी खास बात ये है कि हमारे परभणी शहर में हजरत तुराबुल हक की दरगाह है, जहाँ का उरुस के लिए बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं, देव भक्त आते हैं और दरगाह का पूरा दर्शन करके जाते हैं। और इतना बड़ा मेला भरता है जो कि हमारे महाराष्ट्र में तीसरे नंबर पे आता है, चाहे वो परभणी हजरत तुराबुल शाह के दरगाह का उरूस यानी मेला।
0: बिल्कुल,
1: ये हर 2 फरवरी को भरता है यहाँ पे परभणी शहर में। बल्कि हमारे अच्छे देश के अच्छे नागरिक और हमारे विविध भारती के ज्यादा से ज्यादा श्रोता आके पूरा मेले का आनंद लेके जाते हैं।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही उम्दा जानकारी आपने दी। कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: आज के इस प्रोग्राम में हमारा फोन लगा है, सबसे बड़ी तो हमें हमारे को बहुत खुशी हो रही है। एक सरगम फिल्म का नाम है और गाने के बोल है डब्ल्यू वाई डब्ल्यू बजा।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: और बहुत धन्यवाद।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लग गई है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 02228670288, 02240024662। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंकुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघविंद्र सिंह नेकी।
1: हेलो फरमाइश, विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के ठीक 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों को आशा गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। कैसी हैं हमारी सभी सखियाँ? उम्मीद करती हूँ अपने परिवार के साथ खुश होंगी और स्वस्थ भी, और अपने मनपसंद कार्यक्रम को सुनने के लिए कर रही होंगी हमारा इंतजार। तो लीजिए सखियों, आपका इंतजार समाप्त हुआ। आज हम फिर हाजिर हैं एक नया विषय लेकर, जिसमें हम आपको देंगे नई नई जानकारियाँ और सुनवाएंगे प्यारे प्यारे गीत। सखियों, आज हमारी चर्चा का विषय है प्रगति के छोर पर भी पकड़े रहिए परंपरा की डोर, और आपको जानकारी देंगे स्वस्थ जीवन शैली के लिए सरकार की पहल योग पार्क पोर्टल के बारे में, और विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के बारे में। साथ ही विविधा में हम जानेंगे महिलाएं घर से बाहर निकलते समय कैसे रखें खुद को सुरक्षित। सखियों, आज जरा अपने आसपास नजर डालिए, हमारी जिंदगी कितनी बदल गई है। पहले किसी से बात करने के लिए चिट्ठी लिखते थे, फिर फोन आया, और अब मोबाइल में एक बटन दबाते ही दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से आमने सामने वीडियो कॉलिंग पर बात हो जाती है। पहले बाजार जाकर सामान खरीदना पड़ता था, अब घर बैठे सामान हमारे दरवाजे तक पहुंच जाता है। पहले बच्चों को पढ़ाई के लिए किताबों और शिक्षकों पर निर्भर रहना पड़ता था, और आज मोबाइल और इंटरनेट पर दुनिया भर की जानकारी मौजूद है। यानी समय के साथ बहुत कुछ बदला है, और प्रगति के दौर में बदलना भी चाहिए। लेकिन इस बदलाव के बीच एक सवाल हमारे सामने है, क्या आगे बढ़ने की दौड़ में हम अपनी पुरानी अच्छी बातें, अपनी परंपरा को तो पीछे नहीं छोड़ रहे हैं? आज इसी पर हम बात करेंगे प्रगति के छोर पर भी पकड़े रहिए परंपरा की डोर। सखियों, प्रगति करना कौन नहीं चाहता? हर माता पिता चाहता है कि उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, हर महिला चाहती है उसे भी अपनी पसंद का काम करने, सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिले, और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़कर समाज में अपनी पहचान बना भी रही हैं। यह बदलाव बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे बढ़ते हुए अपनी जड़ों को भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि जड़ें मजबूत होंगी तभी पेड़ मजबूती से खड़ा रहेगा। और हमारी जड़ें क्या हैं? हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे संस्कार, हमारे त्योहार, हमारे रिश्ते और हमारी अच्छी परंपराएं। अब जरा परिवार की बात करें, पहले घर में सब साथ बैठकर खाना खाते थे, दिन भर की बातें होती थी, दादी कुछ बताती थी, बच्चे कुछ पूछते थे, और सब अपने अनुभव साझा करते थे। आज घर में सब लोग साथ तो होते हैं, लेकिन सबके हाथ में मोबाइल होता है, कोई टीवी में व्यस्त होता है, आपस में सब बात हो ही नहीं पाती। आजकल के बच्चों को अपनी संस्कृति और परंपराओं के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो बच्चों को तो पता तब लगेगा जब हम उन्हें बताएंगे और सिखाएंगे। तो बच्चों को समय दीजिए, उन्हें बताइए। मान लीजिए दीपावली आने वाली है, बच्चे पूछते हैं मम्मी दीपावली क्यों मनाते हैं, तो बस इतना कहकर बात खत्म ना कर दें कि त्योहार है इसलिए मनाते हैं। उन्हें उससे जुड़ी पूरी कहानी समझाइए, त्योहार का महत्व बताइए, घर की सफाई में उनकी मदद लीजिए, दिए सजाने में, मिठाई बनवाने में उन्हें साथ लगाइए। इसी तरह होली हो, तीज हो, गणगौर हो, रक्षाबंधन हो या कोई दूसरा त्योहार, बच्चों को उन त्योहारों के पीछे की भावना बताइए। उन्हें बताएं कि सिर्फ नए कपड़े पहनने या मिठाई खाने के लिए त्योहार नहीं होते, त्योहार हमें रिश्तों के करीब लाते हैं और खुशियाँ बांटना सिखाते हैं। सखियों, एक समय था जब बच्चों के लिए दादी नानी की कहानियाँ, जैसे राजा रानी की कहानी, पंचतंत्र की कहानी, लोक कथाएँ, वीर गाथाएँ या कोई धार्मिक कथा बच्चों को सुनाई जाती थी, तो वो अपनी परंपराओं को जानते थे, सीखते थे। लेकिन आज बच्चे मोबाइल इंटरनेट में व्यस्त हैं, हम लोग भी

आज कामकाजी होने के कारण पुरानी परंपराओं को समय नहीं दे पाते, यूं ही समय बर्बाद करना समझकर छोड़ देते हैं, तो बच्चे क्या सीख पाएंगे। सखियों, आप स्वयं अच्छी परंपराओं को अपनाएं, जिससे बच्चे उन्हें देखकर जानें और सीखें। बच्चों को संस्कार केवल समझाने से नहीं, अपने व्यवहार से मिलते हैं। सखियों, अगर हम चाहते हैं कि बच्चे बड़ों का सम्मान करें, तो हमें भी बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अपनी भाषा को ना भूलें। आज के समय में अंग्रेजी सीखना जरूरी है, दूसरी भाषाएं भी सीखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए। हमारी भाषा में अपनेपन का एहसास होता है। अपना पहनावा, अपने क्षेत्र का खान पान, रहन सहन हमें आपस में जोड़े रखता है। सखियों, हमारे देश की खूबसूरती यही है कि हर क्षेत्र की अपनी भाषा, बोली, लोकगीत, पहनावा और खान पान है। राजस्थान की लोक संस्कृति की बात करें तो यहाँ के लोकगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक व्यंजन और त्योहार हमारी संस्कृति की पहचान है। अगर हम उन्हें नहीं अपनाएंगे तो हमारी अगली पीढ़ी उन्हें कैसे जानेगी, और धीरे धीरे ये चीजें सिर्फ किताबों में रह जाएंगी। इसलिए खुद भी परंपराओं को जानें और बच्चों को भी उनका महत्व बताएं। सखियों, सबसे जरूरी है घर में प्यार, सभी का सम्मान और सहयोग का माहौल होना चाहिए। परिवार को समय दीजिए, उनके दुख सुख में हमेशा साथ रहें, रिश्तों को जोड़े रखिए, और प्रकृति के संरक्षण और जीवों की सेवा भी हमारी परंपरा का हिस्सा है। अपनी परंपराओं को बचाने के लिए, उनसे जुड़े रहने के लिए कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं, बस छोटी सी कोशिश ही काफी है। त्योहार पर पूरा परिवार साथ बैठिए, बच्चों को उनका महत्व बताइए, और मोबाइल की बजाय दादा दादी या नाना नानी के साथ कुछ समय बिताने के लिए बच्चों को प्रेरित करिए। सखियों, घर में कभी पारंपरिक भोजन बनाइए, पुराने लोकगीत सुनिए, अच्छे व पारंपरिक वस्त्र पहने, अपने परिवार की पुरानी अच्छी बातें साझा करें। यही प्रगति और परंपरा का संतुलन है। सखियों, परंपरा की डोर को पकड़े रहने का मतलब यह नहीं कि जो कुछ पुराना है उसे बिना सोचे समझे अपनाते रहें। समय बदलता है, इसलिए परंपराओं में भी अच्छे बदलाव हो सकते हैं। अगर कोई पुरानी प्रथा भेदभाव करती है या किसी के साथ अन्याय या हिंसा करती है, तो उसे बदलने के बारे में भी सोचना जरूरी है। यानी हमें अपनी अच्छी परंपराओं से जुड़ा रहना और गलत बातों को पीछे छोड़ना है। हम इंटरनेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और त्योहार भी मना सकते हैं। हम आधुनिक शिक्षा भी ले सकते हैं और अपनी मातृभाषा को भी बोल सकते हैं। हम आधुनिक जीवन शैली के साथ अपने परिवार के लिए समय निकालें और प्रगति के दौर में भी परंपराओं से जुड़े रहें। सखियों, आपसे बातें यूं ही जारी रहेंगी, क्यों ना आपका करवा दिया जाए मनोरंजन एक प्यारे से गीत के साथ। तो आइए आप और हम मिलकर सुन लेते हैं ये

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: सखियों, आपने सुना ये गीत? उम्मीद करती हूँ आपको यह गीत बहुत पसंद आया होगा। सखियों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सभी अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित तो रहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए समय निकालना कई बार मुश्किल लगता है। सुबह उठते ही काम की चिंता, बच्चों की जिम्मेदारी, नौकरी या घर के काम, और फिर दिन भर की भागदौड़। ऐसे में व्यायाम और योग के लिए समय निकालना पीछे छूट जाता है। लेकिन अगर हमारे आसपास ही ऐसी जगह उपलब्ध हो जहां हम सुबह शाम कुछ समय योग, प्राणायाम और ध्यान के लिए निकाल सकें, तो स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ाना थोड़ा आसान हो सकता है। इसी सोच के साथ आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने योग पार्क पोर्टल की शुरुआत की है। योग पार्क पोर्टल को वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के दौरान शुरू किया गया। सखियों, आप सोच रही होंगी कि आखिर यह योग पार्क पोर्टल है क्या? तो यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य देश के अलग अलग हिस्सों में पहले से मौजूद सार्वजनिक पार्कों को ऐसे वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करना है

जहां लोग नियमित रूप से योग, ध्यान और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में भाग ले सकें। यानी पार्क सिर्फ टहलने या घूमने की जगह ना रहकर लोगों के स्वस्थ जीवन का हिस्सा बने। इन योग पार्कों को विकसित करने में नगर निकाय, ग्राम पंचायतें, पंचायती राज संस्थाएं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, योग संस्थान, सामाजिक संगठन और कॉरपोरेट संस्थाएं भाग ले सकती हैं। यानी योग पार्क बनाने की जिम्मेदारी सरकार के अलावा स्थानीय संस्थाएं भी ले सकती हैं। इन पार्कों में योग मंच, ध्यान क्षेत्र, हरित वातावरण और सामुदायिक स्वास्थ्य गतिविधियों की सेवाएं विकसित की जा सकती हैं। योग पार्क केवल एक स्थान ही नहीं बल्कि स्वस्थ समाज, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता की दिशा में एक स्थायी कदम है। यह पहल योग को जन जन तक पहुंचाकर भारत को एक स्वस्थ और जागरूक राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सखियों, इसका उद्देश्य यह भी है कि योग हमारे जीवन का सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम ना बने बल्कि रोजमर्रा की आदत बने। मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक पार्क है, आप रोज सुबह वहां टहलने जाते हैं। अगर उसी पार्क में योग के लिए एक निर्धारित जगह हो और वहां नियमित योग हो तो आपको अलग से योगा के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप वहीं टहल सकती हैं, योग कर सकती हैं और कुछ समय ध्यान के लिए भी निकाल सकती हैं। योग पार्क का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सामुदायिक भागीदारी। जब किसी पार्क में लोग मिलकर योग करते हैं तो एक दूसरे को देखकर उत्साह बढ़ता है। बुजुर्ग नियमित रूप से आने लगते हैं, बच्चे योग सीख सकते हैं और पूरा परिवार भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकता है। सखियों, इस योग पार्क पोर्टल पर योग पार्कों से जुड़ी जानकारी, दिशा निर्देश और संसाधन भी उपलब्ध कराए गए हैं। तो आइए योग को सिर्फ योग दिवस तक सीमित ना रखें, सुबह का थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें, कुछ कदम चलें, कुछ आसन योगासन करें और प्राणायाम करें, कुछ पल शांत रहें और अपने पार्कों को स्वस्थ जीवन केंद्र बनाने में सहयोग दें और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें और इस पोर्टल के बारे में जानें। सखियों, कहा भी गया है, स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ परिवार बनता है और स्वस्थ परिवार से स्वस्थ समाज और राष्ट्र बनता है। तो रोजाना करें योग और रहें निरोग। सखियों, अब हम एक बहुत संवेदनशील लेकिन बेहद जरूरी विषय पर बात कर लेते हैं, वो है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। हर साल 10 सितंबर यानी आज ही के दिन विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। इसे इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन यानी IASP ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से शुरू किया था। सखियों, इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को आत्महत्या की रोकथाम के प्रति जागरूक करना, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों पर खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित करना और मुश्किल समय से गुजर रहे लोगों तक समय पर मदद पहुंचाना है। सखियों, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी पढ़ाई का दबाव, कभी नौकरी या आर्थिक परेशानी, कभी पारिवारिक तनाव, रिश्तों में समस्या या अकेलापन, ऐसी कई परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें व्यक्ति खुद को बहुत परेशान और असहाय महसूस कर सकता है। ऐसे समय में सबसे जरूरी है कि व्यक्ति को अकेला महसूस ना होने दिया जाए। हम अक्सर शारीरिक बीमारी के बारे में तो आसानी से बात कर लेते हैं लेकिन जब मन परेशान हो तो उसे छिपाने लगते हैं। यही सोच बदलने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति लगातार उदास या परेशान दिखाई दे रहा है, लोगों से दूरी बनाने लगा है, रोजमर्रा की चीजों में उसकी रुचि कम हो गई है या वह बार बार निराशा और बेबसी की बातें कर रहा है तो उसकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो ऐसे समय में उसे यह कहने की बजाय कि इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा, या फिर तुम छोटी छोटी बातों को बड़ा बना रहे हो, हमें उसके साथ बैठकर उसकी बात सुननी चाहिए। कभी कभी किसी परेशान व्यक्ति को तुरंत सलाह से ज्यादा जरूरत होती है किसी ऐसे इंसान की जो उसकी बात शांति से सुने और समझने की कोशिश करे। हम उससे यह कह सकते हैं कि तुम अपनी बात मुझसे कह सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके लिए छोटा सा भरोसा बहुत मदद कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचाने या आत्महत्या करने का खतरा दिखाई दे

तो मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसे अकेला ना छोड़े, तुरंत परिवार के भरोसेमंद व्यक्ति, डॉक्टर, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, आपातकालीन सहायता से संपर्क करना चाहिए। सखियों, हमें ये समझना होगा कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है। जिस तरह शरीर में परेशानी होने पर हम डॉक्टर से सलाह लेते हैं, उसी तरह मन में लगातार तनाव, निराशा या परेशानी होने पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना भी सामान्य और सही कदम है। परिवार के सभी लोग साथ रहकर उसकी मदद करें, उसकी समस्याओं को समझें, उसके निदान में सहयोग करें, ना कि उसकी मजाक बनाएं या उस पर गुस्सा करें। अगर आप खुद किसी मुश्किल दौर से गुजर रही हैं, तो चुपचाप सब कुछ अकेले सहने की जरूरत नहीं है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें, जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ से सलाह लें। सखियों, याद रखिए, मुश्किल समय स्थायी नहीं होता। आज मुश्किल है तो कल अच्छा समय भी आएगा। तो अपना व अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए और मुश्किल समय से भागे नहीं, डटकर सामना करें, खुश रहें। सखियों, आपसे बातें यूं ही जारी रहेंगी, क्यों ना आपको सुनवा दिया जाए एक और प्यारा सा गीत। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: सखियों, आपने सुनाई गीत? उम्मीद करती हूँ आपको यह गीत भी बहुत पसंद आया होगा। सखियों, विविधा में हम जान लेते हैं घर से बाहर निकलते समय महिलाएं कैसे रखें खुद को सुरक्षित। सखियों, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे रहती हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। लेकिन बात आती है सुरक्षा की, तो महिलाओं की सुरक्षा एक गंभीर विषय बना हुआ है। आए दिन देश के किसी न किसी हिस्से से महिलाओं के साथ हुए अपराधों की खबरें देखने और सुनने को मिलती हैं। ऐसे में घर से बाहर निकलते समय या घर से बाहर रहने पर ना सिर्फ महिलाओं को डर लगता है, बल्कि उसके परिवारजन भी काफी चिंतित रहते हैं। किसी हादसे या दुर्घटना के दौरान महिलाएं घबरा जाती हैं या दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसे में घबराने की बजाय हिम्मत से काम लेना चाहिए और कुछ टिप्स जान लेने चाहिए, जिससे वो खुद को सुरक्षित रख सके। सखियों, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी ताकत है। वैसे तो हादसे या अनहोनी कहकर नहीं आते, लेकिन महिलाओं में कॉन्फिडेंस की कमी है या वह घबरा जाती है तो अपराधी आसानी से अपने टारगेट बनाते हैं। ऐसे में जब भी आप सड़क पर चलें तो डरें सहमे ना रहकर पूरे कॉन्फिडेंस से चलें। रास्तों पर सतर्क रहें, अकेले सफर करते समय नुकसान सुनसान रास्तों से ना जाएं। शॉर्टकट रास्तों की बजाय भीड़ भाड़ वाले रास्तों को चुनें। सफर के समय सुरक्षित रहें। कैब या ऑटो बुक करते समय टैक्सी स्टैंड या टैक्सी सर्विस ऐप से ही बुक करें। अनजान लोगों से लिफ्ट ना लें। अकेले सफर करने के दौरान अपने परिवार को अपने ऑटो नंबर या टैक्सी नंबर जरूर भेजें, साथ ही अपनी लाइव लोकेशन भेजें। इसके साथ ही मोबाइल पर आसपास के पुलिस स्टेशन के नंबर या घर के किसी सदस्य का नंबर स्पीड डायल पर रखें, जिससे जरूरत पड़ने पर उस नंबर पर कॉल कर सकती हैं। अगर ड्राइवर गलत रास्ते पर ले जा रहा है तो उसे टोकें और तुरंत पुलिस की सहायता लें। अगर आप अकेली पार्टी में जा रही हैं तो अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें। पार्टी में नशीली चीजों का सेवन ना करें और ना ही किसी अनजान व्यक्ति से कुछ लेकर खाएं। घर से, ऑफिस से या जब भी घर से बाहर जाएं, अपना मोबाइल फुल चार्ज रखें या चार्जर पावर बैंक साथ में रखें। फोन में जरूरी नंबर सेव रखें, जिससे आप जरूरत पड़ने पर कॉल कर सकें। किसी अनजान व्यक्ति से बहुत ज्यादा निजी जानकारी साझा करने से बचना चाहिए। सखियों, हर महिलाओं और लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सीखने चाहिए। अपने पर्स में हमेशा पेपर स्प्रे साथ रखें। अगर कोई ज्यादा परेशान करे तो आप उसे इमरजेंसी में यूज कर सकती हैं। सखियों, अगर कोई परेशानी हो तो इमरजेंसी नंबर पर 112 पर हेल्प ले सकती हैं। सखियों, सुरक्षा सिर्फ सावधानी से नहीं बल्कि जागरूकता और आत्मविश्वास से भी आती है, इसलिए खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। सखियों, आपसे बातें करने का तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे नए विषय व जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपनी रेडियो सखी आशा गुप्ता को। सखियों, आपको प्यार भरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी प्यारी दोस्त आरजे वंशिका, और आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो शो युववाणी, जहां बात होती है दिल की, दिमाग की और जिंदगी की। आज का टॉपिक थोड़ा चुभेगा, थोड़ा सोचने पर मजबूर करेगा और शायद थोड़ा बदल भी देगा। ज़रूरत से ज़्यादा आराम और हद से ज़्यादा प्रेम इंसान को कमज़ोर बना देता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगा ना, पर आज हम इसे समझेंगे, महसूस करेंगे और शायद खुद को इसमें कहीं ना कहीं पाएंगे भी। चलो शुरुआत करते हैं एक छोटे से किस्से से। एक लड़का था, हर काम उसके लिए कोई ना कोई और किया करता था। जैसे मम्मी खाना खिला देती थी, पापा फैसले ले लेते और दोस्त नोट्स बना देते। उसे लगता था जिंदगी कितनी आसान है। लेकिन फिर एक दिन जैसे ही वो अकेला पड़ा, एक छोटा सा फैसला भी उसके लिए पहाड़ बन गया। क्यों? क्योंकि उसे आराम की आदत लग चुकी थी। जो कांटों पर चलना भूल गया, वो फूलों की राह में भी गिर गया। दोस्तों, ज़रूरत से ज़्यादा आराम हमारी ताकत नहीं बढ़ाता, बल्कि हमारी कैपेसिटी छीन लेता है। आराम ज़रूरी है, लेकिन जब आराम आदत बन जाए तो इंसान स्ट्रगल करना भूल जाता है। अब बात करते हैं हद से ज़्यादा प्रेम की। दोस्तों, प्रेम दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है, लेकिन जब प्रेम हद से ज़्यादा हो जाए तो वो सहारा नहीं, सहारा बनकर कमज़ोर बन जाता है। जैसे एक लड़का बोलता है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। लड़की बोलती है, हाँ शायद नहीं। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है डिपेंडेंसी। जहाँ प्यार हिम्मत देता है, वहीं ज़्यादा प्यार सेल्फ कॉन्फिडेंस भी छीन लेता है। मोहब्बत में हदें जब टूट जाती हैं तो पहचान भी कहीं छूट जाती है। दोस्तों, ज़िंदगी का असली मज़ा कंफर्ट जोन से बाहर है। जब आप खुद गिरते हैं, खुद उठते हैं, खुद लड़ते हैं, तभी आप स्ट्रांग बनते हैं। अच्छा, तो एक छोटी सी सच्चाई, अगर ज़्यादा आराम तो कम मेहनत, कम मेहनत तो कम सेल्फ कॉन्फिडेंस, और अगर ज़्यादा डिपेंडेंसी तो भी कम सेल्फ कॉन्फिडेंस। सोचिए, अगर बच्चा हमेशा उंगली पकड़कर चलेगा तो क्या वो कभी दौड़ पाएगा? नहीं, उसे गिरने देना पड़ेगा, तभी वो संभलना सीखेगा। गिरकर जो संभल गया, वही असली खिलाड़ी है। जो हर वक्त सहारा ढूंढे, वो अधूरा सितारा है। अब सवाल ये है कि क्या हमें प्यार नहीं करना चाहिए? क्या हमें आराम नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एक बैलेंस के साथ, क्योंकि बैलेंस बनाए रखना ही असली ताकत है। इतना आराम करो कि शरीर रिचार्ज हो जाए, लेकिन इतना नहीं कि आप आलसी बन जाओ। इतना प्यार करो कि सामने वाला स्ट्रांग बने, लेकिन इतना नहीं कि वो आपके बिना कमज़ोर हो जाए। जैसे माँ बोली, बेटा मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। बेटा बोलता है, लेकिन माँ मुझे खुद भी तो चलना सीखना है। यही है असली समझदारी। सहारा बनो, सहारा मत बनाओ, हौसला दो पर खुद पर चलना सिखाओ। दोस्तों, ज़िंदगी एक जंग है और एक सफ़र भी। यहाँ आराम ज़रूरी है, लेकिन स्ट्रगल भी। यहाँ प्यार ज़रूरी है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस भी। तो आज का टेक अवे, खुद को थोड़े चैलेंजेस दो, खुद डिसीज़न लो, खुद गलतियाँ करो और खुद सीखो। क्योंकि जो खुद की ताकत पहचान लेता है, वो दुनिया से डरना छोड़ देता है। तो दोस्तों, आराम करो लेकिन ज़रूरत भर, प्यार करो लेकिन समझदारी से। क्योंकि ज़िंदगी उन्हीं की होती है जो खुद खड़े होना जानते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा आराम और हद से ज़्यादा प्रेम इंसान को कमज़ोर बना देता है। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं एक छोटा सा म्यूज़िक।

0: तो दोस्तों, आज है थर्सडे और आप सभी को पता है कि एवरी थर्सडे हम आपके लिए लाते हैं इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बिंदास बोल। और आज का हमारा उसका टॉपिक है, युवाओं से परिवार वालों की एक्सपेक्टेशंस आखिर होती क्या हैं और क्या ये एक्सपेक्टेशंस सही हैं या गलत, इसी पर करेंगे खुलकर बात। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो, हाँ जी, एक्सक्यूज मी, आप दोनों?
1: यस मैम।
0: सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मैं आरजे वंशिका, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के युववाणी कार्यक्रम से। मैं जानना चाहूंगी आप दोनों के नाम।
2: जी, मेरा नाम काकू।
3: मैम, मेरा नाम रेनू।
0: अच्छा, तो मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहूंगी।
2: हाँ हाँ, बिल्कुल।
1: Why not?
0: कि आपके परिवार वाले आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं?
2: क्या
0: मतलब ये कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आपसे कुछ ना कुछ या कोई ना कोई उम्मीद या एक्सपेक्टेशन जरूर रखते हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि वो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं।
2: जी हाँ, सबसे पहले थैंक यू मुझसे ये क्वेश्चंस करने के लिए कि मेरे फैमिली मेंबर्स मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। और देखो, सीधी बात, सिर्फ क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं यही नहीं, बल्कि ये बोलो कि क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होती।
0: अच्छा, जैसे?
2: जैसे कि पहले बोलेंगे कि अच्छे नंबर लाओ,
0: फिर
2: अच्छी नौकरी पाओ, फिर शादी कर लो और फिर बच्चे कर लो।
3: बिल्कुल। और हम लड़कियों से तो और भी ज्यादा उम्मीदें होती हैं।
0: जैसे
3: घर भी संभालो, करियर भी बनाओ और हमेशा परफेक्ट दिखो। बिल्कुल परफेक्ट।
0: अच्छा, मतलब ये मान सकते हैं कि

0: प्रेशर ज्यादा है आप लोगों के ऊपर।
1: हाँ हाँ, कभी कभी तो लगता है कि हम उम्मीदों के लिए नहीं, उम्मीदें हमारे लिए बनी है।
0: बिल्कुल, आज आप दोनों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा।
1: नहीं मैम, हमें भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हम बहुत इम्प्रेस हुए, मतलब ऐसे दिल को छू गए आप अभी।
0: बस ऐसे जुड़े रहिए और
2: ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के युववाणी कार्यक्रम को
0: डेली सुनिए, चैनल नंबर 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: ओके मैम, थैंक यू।

0: तो दोस्तों अब बात करते हैं इसी विषय पर एक पिता से, क्योंकि हम ये जानना चाहेंगे कि एक पिता होने के नाते उनका इस विषय पे क्या नजरिया रहता है। हाँ जी, तो नमस्ते अंकल, मैं ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के युगवाणी कार्यक्रम से।
1: नमस्ते बेटा, नमस्ते, और आपके साथ साथ आपके युगवाणी श्रोताओं को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।
0: अंकल, आज हम बात कर रहे हैं कि जो यूथ है, जो हमारे युवा है, उनसे परिवार वाले बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं।
1: जी हाँ, सही कह रहे हो आप।
0: तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आखिर आप लोग इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों रखते हैं?
1: देखिए, एक्सपेक्टेशंस का मतलब प्रेशर नहीं होता। आपको उसके पीछे का प्यार और चिंता को समझना चाहिए, क्योंकि हर एक माता पिता ये चाहता है कि उनके जो बच्चे हैं वो उनसे बेहतर जिंदगी जिए।
0: लेकिन आपको नहीं लगता कि कभी कभी ये प्यार दबाव बन जाता है?
1: हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन जरा सोचो, जब हम बच्चों से पढ़ाई करने के लिए कहते हैं तो इसलिए कि उनका भविष्य सुरक्षित रहे।
0: पर हर किसी का सपना अलग भी तो हो सकता है ना?
1: हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और आज के माता पिताओं को ये बात सीखनी चाहिए कि बच्चों के सपनों को समझें, सिर्फ अपने सपने उन पर ना थोपें।
0: अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम जनरेशन गैप की वजह से है?
1: हाँ, आप कह सकते हैं कि ये एक जनरेशन गैप है, लेकिन एक्चुअल में यूथ जो है वो फ्रीडम चाहता है, जबकि पेरेंट्स स्टेबिलिटी चाहते हैं। यूथ रिस्क लेना चाहते हैं, पेरेंट्स एक्चुअल में रिस्क के खिलाफ नहीं है, लेकिन पेरेंट्स ये चाहते हैं कि रिस्क कैलकुलेटेड हो, क्योंकि पेरेंट्स ने स्ट्रगल देखा है और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी वही सब कुछ झेलें।
0: बिल्कुल, आपने सही बात कही है और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और आपसे बात करके आज मुझे

0: काफी अच्छा लगा।
1: मुझे भी आप आपसे और आपके श्रोताओं से बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद।
2: हाँ तो दोस्तों, आपने सुना कि स्ट्रगल ही हमें मजबूत बनाता है, क्योंकि किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि मुश्किलें ही इंसान को तराशती है।

0: तो दोस्तों इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारी सोसाइटी की जानी मानी हस्ती दादी से इस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगी। चलो तो आइए जानते हैं दादी के क्या विचार रहते हैं, क्या थॉट्स रहते हैं इसके बारे में।
1: हाँ तो दादी,
2: जय श्री राम।
1: अच्छा तो दादी ये बताओ कि जो पुराने समय में जो उम्मीदें थी, मतलब आप लोग अपने बच्चों से कुछ ना कुछ उम्मीद रखा करते थे, तो वो उम्मीदें कैसी थी?
2: हमें इतने सोचने का टाइम नहीं था, जो मिलता उसमें ही खुश रहते थे। जमींदारा का खेती बाड़ी का काम था हमारे को, तो इतना टाइम नहीं हमको।
1: अच्छा

0: तो मतलब पहले उम्मीदें कम थी?
1: उम्मीद तो तब भी थी पर दिखावा कम था, और लोग आपसरी में एक दूसरे को समझते थे, जो मिलता जो उसमें ही खुश हम।
0: तो दादी ये बताओ कि आज ऐसा क्या हो गया कि ये सब बदल गया?
1: अब की समय में ज्यादा तुल्ला ज्यादा हो गया, तो एक दूसरे को होती उसका बेटा तो ऐसा करता है तुम नहीं करते हो, अब उम्मीदें थोड़ी हो गई।
0: हाँ तो दादी आपने काफी अच्छा बताया हम सभी को, आपसे बात करके अच्छा लगा।
1: जय श्री राम।
2: तो दोस्तों आपने सुना कि हमें दादी ने कितना अच्छे से बताया, कितना अच्छे से समझाया कि पहले के

बात आती है कि आखिर इसका क्या सॉल्यूशन है और इसे कैसे बैलेंस करें। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन, खुलकर बात करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पर ट्रस्ट करना चाहिए कि हम अपने फैसले ले सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस में उनका भला ही छुपा होता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी कि प्यार और समझ दोनों तरफ से हो। इसलिए तो दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस गलत नहीं हैं, बस उनका तरीका सही होना चाहिए। उम्मीदें रिश्तों को जोड़ भी सकती हैं और तोड़ भी सकती हैं। सब कुछ इस बात पर है कि हम उन्हें कैसे निभाते हैं। तो दोस्तों, अपने सपनों को जियो और अपनों की उम्मीदों का सम्मान करो।

चलो तो दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। ओवर थिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। कभी आपने ऐसा फील किया है कि एक छोटी सी बात दिमाग में घूमते घूमते इतनी बड़ी बन जाती है कि नींदें तक हराम हो जाती हैं और सुकून खो जाता है? अगर हाँ, तो ये अब आगे की कुछ खास टिप्स आप ही के लिए। ओवर थिंकिंग एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान खुद ही फंसता है और फिर खुद ही उलझता जाता है। सोचते सोचते ये हाल हो गया, हर ख्याल एक सवाल हो गया, सुकून ढूंढते रहे हम उम्र भर और दिमाग ही बवाल हो गया। तो चलिए आज समझते हैं ओवर थिंकिंग क्या है, क्यों होती है और इससे कैसे बचा जाए। दोस्तों, जब हम किसी बात को जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, बार बार सोचते हैं और उसका कोई हल नहीं निकाल पाते, तो वही ओवर थिंकिंग है। रिसर्च बताती है कि इंसान दिन में अप्रॉक्स 60,000 थॉट्स सोचता है और उनमें से 80% तो नेगेटिव होते हैं। सोचिए, अगर हम उन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे तो दिमाग खुद अपने आप ही थक जाएगा। अब सवाल ये है कि ओवरथिंकिंग होती क्यों है और इसके क्या रीजंस हैं? सबसे पहले तो फ्यूचर की टेंशन। हम अक्सर सोचते हैं अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। फिर आता है कि पास्ट में हुई कुछ ऐसी चीज़ें जो बार बार हम सोचते रहते हैं, लाइक काश मैंने ऐसा किया होता या मैंने ऐसा नहीं किया होता। फिर आती है कि सेल्फ ट्रस्ट की कमी। फिर है कि लोग क्या सोचेंगे, इसका डर। जो बीत गया उसे क्यों दोहराना, जो बीत गया उसे क्यों दोहराना, जो आया नहीं उसे क्यों अपनाना, जो आज है बस उसी में जी लो, जो आज है बस उसी में जी लो, यही है सुकून का असली खजाना। तो दोस्तों, अब सबसे ज़रूरी बात कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जाए। सबसे पहले अवेयरनेस, अपने विचारों को पहचानो। जब भी आप ज़्यादा सोच रहे हो, खुद से पूछिए क्या ये ज़रूरी है। 70% केसेस में आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट, डीप ब्रीथिंग मेडिटेशन। 5 मिनट गहरी सांस लेना दिमाग को शांत कर देता है। सिर्फ 5-10 मिनट मेडिटेशन करने से स्ट्रेस 30% तक कम हो सकता है। फिर है लिखने की आदत डालो। जो माइंड में चल रहा है उसे कागज पर उतार दो, इससे माइंड काफी हल्का हो जाता है। नेक्स्ट, स्टे बिजी। खुद को इतना व्यस्त रखो क्योंकि खाली दिमाग ओवरथिंकिंग का घर है। कोई हॉबी फॉलो करो, म्यूजिक सुनो या वॉक पर जाओ या कुछ और करो, लेकिन खुद को बिजी रखो। नेक्स्ट, सोशल मीडिया से दूरी। ज़्यादा कंपैरिजन, ज़्यादा सोच, फिर ज़्यादा स्ट्रेस। जो लोग दिन में 3 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उनमें ओवरथिंकिंग और एंजाइटी ज़्यादा देखी गई है। नेक्स्ट है, क्या हमारे कंट्रोल में है।

से समझें, हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, जो है बस उसी पर ध्यान दो और उसी को एक्सेप्ट करो। किसी से बात करो, लाइक फ्रेंड, फैमिली या कोई ट्रस्टेड इंसान, क्योंकि बात करने से मन हल्का हो जाता है। और नेक्स्ट है, नींद पूरी लो, कम नींद ज़्यादा सोच। 7-8 घंटे की नींद दिमाग को बैलेंस रखती है। दिमाग को थोड़ा आराम भी दे दो, खुद को थोड़ा सुकून भी दे दो। हर बात का हल सोच में नहीं होता, कभी खुद को वक्त भी दे दो। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, हर सोच सच नहीं होती। हमारा माइंड कभी कभी हमें डराता है, लेकिन हकीकत उतनी डरावनी नहीं होती। एक मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताती हूँ इंस्टेंट रिलीफ के लिए। जब भी ओवरथिंकिंग शुरू हो, खुद से पूछो, क्या ये 5 साल के बाद भी मायने रखेगा? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दो। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, इसे सोच सोच कर नहीं जी कर बिताइए। जिंदगी को इतना भी मत सोचो, जिंदगी को इतना भी मत सोचो कि जीना ही भूल जाओ। हर पल को खुलकर जी लो, कहीं ये पल ही ना छूट जाए। तो दोस्तों आज से एक छोटा सा वादा कीजिए खुद से, कम सोचेंगे और ज़्यादा जिएंगे। तो दोस्तों अब समय आ गया है आप सभी से विदा लेने का। मैं आपकी अपनी प्यारी दोस्त आरजे वंशी का आपसे इजाज़त लेती हूँ, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, हंसते खेलते रहें। आई होप आपने आज का प्रोग्राम और गानों को काफ़ी एंजॉय किया होगा। फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे पेशियंस, स्टे स्ट्रॉन्ग, और खुद पर भरोसा रखिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। ओके, गुड बाय।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
6: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
5: हाँ।
6: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
5: हाँ।
6: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
5: हाँ? पता नहीं।
6: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
7: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी

0: इंडिया स्पेस जर्नी रिफ्लेक्ट्स दिस फिलोसॉफी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति शी 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वैश्विक अस्थिरता, पश्चिम एशिया में संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये यात्रा ब्रिक्स सहयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल मानी जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से सोमवार तक राजधानी में ड्रोन और अन्य छोटे हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत ये आदेश जारी किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में स्टार्टअप, वैज्ञानिक, उद्योग, उद्यमी और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारक एक मंच पर आएंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने दूरदराज और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में भरोसेमंद बिजली विकल्प उपलब्ध कराने में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री नाइक ने आज भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी के पूर्वावलोकन कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में उल्लेखनीय बदलाव आया है। और खेलों में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज रात 8 बजे दुबई में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। और भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में भी अपना स्थान पक्का कर लिया है। अब 12 सितंबर को सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हुए हैं। अब समय है कार्यक्रम विवरण का।

शाम 6:10 पर आप सुनेंगे विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के संदर्भ में भेंटवार्ता। जीवन है अनमोल, आत्महत्या कायरता है। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। तत्पश्चात 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। संध्या 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाणी। संध्या 7:30 पर आप सुनेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 अंतर्गत दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे भारत बनाम बांग्लादेश क्रिकेट मैच के पहले सेमीफाइनल का आंखों देखा हाल। रात्रि के 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

26 अंतर्गत दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे भारत बनाम बांग्लादेश क्रिकेट मैच के पहले सेमीफाइनल का आंखों देखा हाल मैच की समाप्ति तक।

श्रोताओं, कल हमारे प्रसारण आरंभ होंगे प्रातः 5:51 से। प्रातः 6:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे वंदनवार। प्रातः 6:30 पर आप सुनेंगे झरोखा। प्रातः 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। संगीत सरिता कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 6:45 पर विविध भारती के मुंबई केंद्र से। सुबह 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार अलवर। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। समाचार प्रभात आप सुनेंगे सुबह 8:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुबह 9:00 आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। सुबह 9:10 से आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। दोपहर 12:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। दोपहर 12:05 से आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। दोपहर 1:00 आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। दोपहर 2:00 आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में। तत्पश्चात 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, ये थे हमारे आज के शेष प्रसारण और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

रात्रि के 9 बजे आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि के 9:15 से आप सुनेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2004

FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। शाम के 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के संदर्भ में भेंटवार्ता। जीवन है अनमोल, आत्महत्या कायरता है। डॉक्टर जे एस शर्मा से शिव कुमार की बातचीत।

0: सुप्रभात अलवर सुनने वाले सभी श्रोताओं को शिव कुमार शर्मा का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत जर्मन दार्शनिक के उस कथन से करना चाहेंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि जीवन एक रंगमंच है जहां कष्टों के सामान्य नाटक में खुशी एक संयोगिक घटना है। कुछ लोग अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं सिर्फ इस कारण से क्योंकि वो कष्ट में हैं, दुखी हैं। तो क्या हम इतने कायर हैं कि ईश्वर के बनाए इस विशाल रंगमंच के अभिनय से घबरा कर भाग खड़े होना चाहते हैं और ये जानते हुए कि इस रंगमंच के सारे पात्रों को कहीं ना कहीं हर कदम पर कष्टों की भूमिका अदा करनी होती है। हम तो ये कहना चाहेंगे कि आत्महत्या कायरता है उस परिवार और माता के प्रति जिसने हमें अपने पसीने से सींचा है। अपने जीवन को कुछ लोग क्यों समाप्त कर लेते हैं, क्या ये कायरता है? आज हम एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो संवेदनशील मुद्दा है आत्महत्या। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जी एस शर्मा जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत करते हैं स्टूडियो में।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार सर। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो आत्महत्या जिसकी काफी चर्चाएं हम सुनते हैं, ये आत्महत्या कहते किसे हैं?
1: देखिए आजकल आए दिन लगातार अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में या टीवी चैनल्स पे सुनने में आता है कि अमुक आदमी ने आत्महत्या कर ली। वास्तव में आत्महत्या है क्या? जैसा कि इस नाम से सर्वविदित है कि आत्महत्या, अपनी आत्मा की हत्या करना ही आत्महत्या होती है। इसका मतलब कि आदमी स्वयं के ऊपर इतना आघात करे कि वो मर जाए, इसको ही आत्महत्या कहते हैं मूल रूप से
0: जी।
1: दूसरी चीज क्या होती है कि आत्महत्या एक ऐसी चीज है जो सिर्फ ह्यूमन बीइंग में, जो मानव जो होता है ना उसी में ये मिलती है। किसी जानवर को आपने नहीं सुना होगा किसने आत्महत्या करी
0: जी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है सर।
1: बिल्कुल। और दूसरी चीज क्या होती है कि ये आत्महत्या मनुष्यों में क्यों होती है? क्योंकि भगवान ने अपन

0: को एक बहुत सजा सजाया यंत्र दिया है दिमाग के रूप में, और उस दिमाग में एक बहुत अच्छी क्वालिटी है इमोशंस की। अपने पास में इमोशंस हैं, जानवरों के पास में कोई इमोशंस नहीं है। अपन किसी चीज का अच्छा बुरा सुख दुख की अनुभूति कर सकते हैं, और जानवर इस चीज की अनुभूति नहीं कर सकती। जब अपन इस चीज की अनुभूति करते हैं तो अपन को यह भी लगता है कि अपना भविष्य क्या है, भविष्य में क्या करना है, अपना पास्ट क्या है, इतिहास अपना क्या है। तो इन सब चीजों के झमेले में, इन सब चीजों के इसमें ही इमोशंस इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं कि आदमी आत्महत्या की तरफ मुड़ जाता है, और वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग में या मनुष्यों में ही मिलता है, जानवरों में नहीं।
1: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि पशुओं में ये नहीं पाया जाता, तो क्या ये माना जाए कि जो मनुष्य है वो पशुओं से भी बदतर है? क्योंकि आत्महत्या की जब सोचता है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पशुओं में ये प्रवृत्ति नहीं होती लेकिन इंसान में ये होती है।
0: देखिए, ये तो क्वालिटी होती है, बहुत सारी चीज पशुओं में आदमी से ज्यादा है और बहुत सारी चीज मनुष्यों में पशुओं से ज्यादा है। जहां तक आत्महत्या का सवाल है, मैं समझता हूँ ये किसी भी मनुष्य का सबसे निकृष्ट कर्म होता है कि वो अपने ऊपर ही आघात करे। जिस मानव शरीर को भगवान ने अपन को दिया है इस दुनिया में आने के लिए, अच्छे अच्छे कर्म करने के लिए, और उसको समय से ही पहले ही अपने ऊपर आघात करके नष्ट कर दिया जाए, ये सबसे बड़ी कायरता होती है। दूसरी चीज क्या होती है कि आपने कभी देखा होगा कि किसी जानवर को मारो, जैसे छिपकली को भी मारने की कोशिश करते हैं या किसी चूहे को भी मारने की कोशिश करते हैं, तो एक तरह का लाइफ रिफ्लेक्स होता है, जीने के प्रति एक संवेदनशीलता होती है। वो कभी किसी अंधेरे में घुसेगा, कभी मोरी में घुसेगा, कभी अपने आप को बचाने की 100 तरह की कोशिश करता है,
1: संघर्ष करता है, वो
0: काफी संघर्ष करता है। जब आप जानवर जिसमें सोचने समझने की बिल्कुल मादा नहीं है, जिसमें सोचने समझने का महत्व तो नहीं है, वो भी जिंदगी के प्रति इतने संघर्ष करता है जीने के लिए, तो आदमी तो उससे ज्यादा सोच समझ का है, लेकिन फिर भी ये आदमी की कायरता है, ये उसकी बुद्धि का हास होता है कि वो आत्महत्या से प्रेरित हो जाता है और अपने ऊपर कुठार आघात करके शरीर को नष्ट करता है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न अब उभर कर आता है कि आत्महत्या के ऐसे कौन कौन से कारण हैं? क्योंकि हमने आपने बताया किस तरह से पशु अपने जीवन के लिए संघर्ष करता है अपने को बचाने के लिए, और व्यक्ति खुद ही अपनी हत्या कर लेता है कभी आत्महत्या के रूप में, तो कुछ तो कारण ऐसे होंगे जो कि पशुओं से और इंसान को अलग करते हैं, वो क्या कारण है जो आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं?
0: देखिए, इसके प्रति अपन ये तो नहीं कह सकते कोई एक कारण है जो आत्महत्या करता हो, इसके लिए अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार के कारण होते हैं।
1: परिस्थितियों पर निर्भर,
0: परिस्थितियों के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर करता है। जैसे आर्थिक लॉस किसी को हो जाए, व्यापार में घाटा लग जाए तो आत्महत्या कर लेते हैं। जैसे भी आपने देखा होगा बहुत सारे किसान आत्महत्या कर लेते हैं
1: जी,
0: क्योंकि उन्हें कर्जा ले रखा है, फसल अच्छी नहीं हुई है, कर्जा कैसे चुकाएंगे, इस चक्कर में वो आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरा क्या होता है कि परिवार की आपसी कलह, पति पत्नी की नहीं बनती, पड़ोसियों की नहीं बनती, या और किसी प्रकार का अपना आचार विचार ठीक नहीं हो, ये जो कलह होती है ये आत्महत्या का कारण होता है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा, ये एक आत्महत्या का बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे पास में इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, उस चक्कर में वो आत्महत्या कर लेता है। आजकल का जो प्रतियोगात्मक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, ये भी आत्महत्या को प्रेरित करता है। ये भी एक इस तरह की चीज़ है जिसमें कि लोग बाग आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में लोग बाग सक्सेस नहीं होते, जैसे आपने सुना होगा 10वीं क्लास में कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया, फेल हो गया तो आत्महत्या कर लिया। मेरे को देख के तो बहुत आश्चर्य होता है कि मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा था कि एक किसी लड़की के अच्छी परसेंट नहीं आई, पहले उसके 97% आते थे, यस मन मुताबिक नहीं आई, और 95% या 97% से 92% आ गया तो उसने आत्महत्या कर लिया। इस प्रकार की चीज हो जाती है। फिर आत्महत्या का एक मुख्य कारण है मानसिक रोग। मानसिक रोगों में डिप्रेशन की जो बीमारी होती है, अवसाद की जो बीमारी होती है, वो आत्महत्या के लिए बहुत बड़ा कारण है।
1: जी डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे युवाओं के, खास तौर पे युवाओं की, क्योंकि युवाओं में ये देखा जाता है कि आत्महत्या की जो प्रवृत्तियां हैं वो कुछ कई बार बढ़ी हुई प्रतीत होती हैं, जैसे कि कॉम्पिटिशन काफी हो गया है, और भी कई कारण, कोचिंग अटेंड करने के बावजूद कहीं सिलेक्शन नहीं होना, ये एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है। तो क्या कहना चाहेंगे आपकी युवाओं में खास तौर पे, इनके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं आत्महत्या के लिए?
0: देखिए, युवाओं में आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है। आदमी जब अपने स्कूल से किसी कॉलेज में जाता है, फिर कंपटीशन के लिए जाता है, तो बड़े बड़े सपने संजोता है, और ये जब सपने उसके पूरे नहीं होते, दुनियादारी की ये सामाजिकता की जब युद्ध में सामने आता है, तो अपने आप को असहाय पाता है, और इस असहाय की वजह से ही बेरोजगारी, असहायता, ये मुख्य कारण है युवाओं में। आजकल के युवाएं सपने तो बहुत बड़े बड़े बना लेते हैं, लेकिन उसके मुताबिक उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, लक्ष्य पूरे नहीं होते। अब वो

0: लक्ष्य पूरे नहीं होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इन चीजों के लिए आत्महत्या एक ऐसा साधारण सा उनके सामने विकल्प छूट जाता है कि ये कर ले तो ठीक है। लेकिन मैं हरेक युवाओं से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि किसी भी संकट की घड़ी में आप अपने धैर्य को नहीं खोएं। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि आत्महत्या करने के बाद एक नई समस्या पैदा हो जाती है। और आप, भगवान ने आपको 100 साल का बना के इस दुनिया में भेजा है, तो 100 साल के लिए आप रहिए, धैर्य रखिए, देखिए, वेट एंड वॉच वाली स्थिति करिए, सब कुछ चीज आपके फेवर में हो जाएगा। जो आदमी शांत और नम्र रहता है वो सभी लड़ाइयां जीतता है। जो आदमी बड़ा उतावलेपन में रहता है कि मेरे को अभी ये मिल जाए, वो चीज उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। इसके अलावा युवाओं में सहन शक्ति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे युवाएं जो बिल्कुल घर से बाहर जाते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे कोटा में जाते हैं, यहाँ से लोग बाग पढ़ने के लिए जाते हैं, अब वहां क्या होता है, बच्चों के साथ में एक बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है। बच्चे अपने माता पिता से दूर, उनका कोई ऐसा नहीं जो उनके इमोशंस में, उनकी विकल्प विषम स्थितियों में संकट के समय कोई साथ दे। इधर पढ़ाई का प्रेशर, और बच्चा अगर मान लो खुदा ना खास्ते उस वातावरण में पढ़ाई के हिसाब से एडजस्ट नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, वो अपने आप को हताश महसूस करने लग जाता। और यही हताशा का कारण है कि कितने सारे लोग बाग कोटा में जाके या किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके आत्महत्याएं करते हैं, आए दिन अपना अखबार में पढ़ते हैं। अगर उनके माता पिता उनके पास में रहे, उनके दोस्त उनके पास में रहे, तो मैं समझता हूँ शायद वो आत्महत्या नहीं करेंगे।
1: जी डॉक्टर साहब, आप क्योंकि मन के एक डॉक्टर हैं, तो आपसे जानना हम जरूर चाहेंगे कि परिवार भी कितना उत्तरदायी होता है। मान लो कोई बच्चा कहीं पढ़ने गया है, कहीं कोचिंग क्लास अटेंड करने गया है, तो परिवार का कितना इसमें भूमिका होती है, उस पर कितना प्रेशर बच्चे पर होता है, कितना प्रेशर उन पर डाल दिया जाता है जिसके कारण वो आत्महत्या जैसे कृत्य को सेलेक्ट करता है।
0: देखिए, सबसे ज्यादा चीज तो फ्रस्ट्रेशन के लिए या सहनशीलता के लिए अपने घर से शुरू होती है। मैं हर एक माता पिता को एक सलाह देना चाहूँगा, आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट ना करें ज़्यादा, उनको जीवन के लिए सिखाएं कि जीवन में कितने संघर्ष करने पड़ेंगे। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को इतना कोमल तरीके से रखते हैं, इतना प्रोटेक्टेड सुरक्षित रखते हैं कि इसको कुछ नुकसान नहीं हो जाए, इसको कुछ कष्ट नहीं हो जाए, इसको दबाव में नहीं आ जाए। मैं समझता हूँ वो गलत परिपाटी है। माता पिता के दायित्व है कि बच्चे को विषम से विषम परिस्थिति के लिए तैयार करें। दूसरा क्या होता है कि जब भी माता पिता दूसरी जगह बच्चे को भेजते हैं तो उसके बारे में ख्याल रखें, पूरा उससे कॉन्टैक्ट बनाए रखें, हर एक शाम को उससे बात करें, उसकी परिस्थितियों को देखें, समस्याओं को सुलझाएं, वहां जाके भी देखें, ये उनका दायित्व बन जाता है। बच्चे को अलग थलग छोड़ के वो अपने भरोसे कुछ भी कर रहा होगा, ये गलत है। हर एक माता पिता अभिभावक का एक कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे के ऊपर पूरी नजर रखें। जो अभिभावक या माता पिता अपने बच्चे के ऊपर नजर नहीं रखते, या तो वो गलत रास्ते में मादक दवाओं के में चले जाते हैं, या फिर वो आत्महत्या जैसी कोशिश करने लग जाते हैं।
1: जी, जब भी कोई व्यक्ति ये तय करता है कि उसे आत्महत्या करनी है, तो क्या वो अचानक ये सोचता है या पहले से ही उसकी पृष्ठभूमि तैयार रहती है और छोटी छोटी बहुत सी बातें बनकर अचानक एक दिन आत्महत्या का जो माहौल है वो उसके लिए तैयार हो जाता है?
0: देखिए, आत्महत्या कोई सडनली चीज एकदम नहीं होती, अकस्मात नहीं होती है। आदमी अपने सहन शक्ति नहीं होती है तो कई तरीके से उधेड़बुन करके समस्याओं से समाधान ढूंढने की कोशिश करता है, समाधान नहीं मिलता है तो और विकल्प ढूंढने की कोशिश करता है, दोस्तों की सहायता लेता है, फिर भी उसका अगर संसाधन कम पड़ जाते हैं तो फिर वो आत्महत्या की सोचता है। आत्महत्या करने से पहले आदमी बहुत तरह के इंडिकेशन संकेत देता है, आसपास के लोगों को, दोस्तों को, माता पिता को, शिक्षकों को, अभिभावकों को, उनके प्रति बहुत ज्यादा जागरूक रहना चाहिए। जैसे जो आत्महत्या करने वाला आदमी होगा वो किसी न किसी रूप से ये इच्छा प्रकट करने लग जाएगा कि मेरी जिंदगी खराब है, मर जाऊं तो अच्छा है, इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए। आचार विचार में बदलाव हो जाता है, जैसे बहुत सारे लोग बाग बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, सडनली 2-4 दिनों से ऐसा लगता है कि अलग थलग से हो गए, चुपचाप से रहते हैं, तो उससे पूछिए कि ऐसा क्यों हो गया है, हो सकता है कि वो आत्महत्या करने की सोच रहा हो चुपचाप। कुछ लोग बाग बहुत चुपचाप रहते हैं और अपने आप को ढकने के लिए अगर आत्महत्या का विचार आता है तो बोलना चालना शुरू कर देते हैं, अच्छे अच्छे कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं, ये भी एक तरह का व्यवहार में बदलाव है जो अलार्मिंग चीज होती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग बाग बिना किसी कारण के ही बहुत ज्यादा अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं, शराब ज्यादा पीने लग जाते हैं या अन्य प्रकार की मादक दवाएं शुरू करना शुरू कर देते हैं। उसका कारण है कि उसकी जिंदगी में कहीं ना कहीं तनाव है और उस तनाव को भूलने की कोशिश कर रहा है। अगर उसने मादक दवाओं का या शराब का ज्यादा सेवन कर दिया है तो हो सकता है उसके दिमाग में आत्महत्या की बात चल रही हो और अपन को उससे बात करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, कई बार कुछ लोग आत्म

0: हत्या करने की कोशिश करते हैं लेकिन असफल रहते हैं कई बार, तो ऐसे में मनोचिकित्सक है उसकी भूमिका कितनी हो जाती है? क्या काउंसलिंग के माध्यम से उसको फिर से जिंदा रहने की एक प्रेरणा मिल सकती है?
1: बिल्कुल, देखिए अगर कोई आदमी आत्महत्या कर रहा है और अपन ठीक समय पे उससे बात कर लेते हैं, संवाद कर लेते हैं, 2 मिनट की बात भी उसकी जिंदगी को बचा सकता है, उसको नया रास्ता दे सकता है। जब आत्महत्या आदमी करता है कि सोचता है या प्लान बनाते रहता है तो उसकी जिंदगी में बिल्कुल अंधकार होता है, चारों तरफ से उसको ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, मैं गिर गया हूँ, मेरा मरना ही एक विकल्प है। इस समय अगर किसी ने उससे 2 मिनट भी बैठ के बात कर ली तो उसके मन की भनास निकल जाएगी, कैथारसिस हो जाएगा और उसको मन को हल्कापन होगा और उसी दौरान आप उसको नया विकल्प भी सुझा देंगे, भाई तेरी समस्या का ये समाधान है जो शायद उसने कभी सोचा नहीं। और यही एक चीज ऐसी है जिससे अपन उसकी आत्महत्या को बचा सकते हैं। जहां तक मनोचिकित्सक का सवाल है, मनोचिकित्सक एक ट्रेंड साइकेट्रिस्ट होता है, एक ट्रेंड आदमी होता है जो इस प्रकार के इमोशंस को, इस प्रकार के सिचुएशंस को डील करता है। अगर आप सही समय पे मनोचिकित्सक के पास में इस आदमी को या ऐसे ऐसे व्यक्ति को आप लेके जाएंगे तो मनोचिकित्सक उसकी प्रयास करके, उसकी साइकोथेरेपी करके, उसकी काउंसलिंग करके इस प्रकार के इम्पल्स को हटाएगा और इसमें सक्सेस भी हो जाते हैं।
0: जी तो सब कहा जाता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, तो जब कोई व्यक्ति बहुत ही हमें प्रेरणादायक बातें बताता है या कोई ऐसा कहता है कि जीवन से बहुत अधिक प्यार करना सिखा देता है, संघर्ष के बारे में बात करता है, तो उस समय तो ऐसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि भाई ठीक है, अब हम बहुत अच्छा अपनी जीवन जिएंगे। तो क्या इस तरह की जो प्रेरणा जो बातें होती हैं, जो प्रेरणास्पद बातें होती हैं या जो काउंसलिंग के माध्यम से भी कई बार उनको समझाया जाता है, उसमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट निकलते हैं?
1: बिल्कुल, काउंसलिंग में बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट निकलते हैं और हम लोग काउंसलिंग में भी उसकी जो आदमी होता है उसके हम सुनते हैं, उसको नए नए विकल्प सुझाते हैं। इसके अलावा जितने भी जैसे बड़े बड़े धर्मगुरु होते हैं अच्छे वाले, वो भी अपने जैसे रामायण में, महाभारत में आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे अच्छे ऐसे प्रसंग हैं जिनमें कि लोग बाग आत्महत्या के लिए प्रेरित हुए या किसी न किसी प्रसंग में उनकी इस आत्महत्या की जो स्थिति उसको भगवान ने, कृष्ण ने, राम ने उनको समाधान दिया। तो इसी प्रकार की जो चीज़ें होती हैं अपन अपने साहित्य में पढ़ के, अपने पुराणों में पढ़ के, अपने वेदों में और अपनी अच्छी किताबों में पढ़ के भी अपन उसको सुधार सकते हैं। ये भी एक काउंसलिंग है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें डॉक्यूमेंटेड साइकोथेरेपी की किताब है, वो है गीता। और सबसे पहले जो विश्व का साइकोथेरेपिस्ट हुआ है वो है भगवान कृष्ण, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में कृष्ण को गीता का उपदेश दिया था। वो गीता का उपदेश डॉक्यूमेंटेड है साइकोथेरेपी की किताब के रूप में।
0: जी डॉक्टर साहब, क्या ये कहा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है, उसका जो अपना जीवन से प्रेम है और उसके कष्ट हैं, हम दोनों की तुलना करें तो क्या उसके कष्ट इतने बढ़ जाते हैं कि अपने जीवन से जितना वो प्रेम करता है वो उससे ज्यादा हो जाते हैं, इस वजह से वह आत्महत्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आत्महत्या जब करता है आदमी का तो उसके पूरा का पूरा जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, वो एक तरीके से उत्तेजित हो जाता है और जब उत्तेजना की स्टेज होती है तो आपका पेन थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है, जो पीड़ा की जो आपकी सहन शक्ति वो बढ़ जाती है। जैसे किसी ने अगर कोई अपना हाथ काट के या गर्दन काट के या पंखे पे लटके आत्महत्या करता है फांसी लगा के, तो उसमें पेन तो होता है, वही आदमी अगर कहीं से थोड़ा सा भी जल जाएगा तो अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन आत्महत्या का विचार आने पे उसका पेन थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है, उसका पीड़ा सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए उसको इस चीज की पीड़ा महसूस नहीं होती और वो आत्महत्या कर लेता है।
0: जी डॉक्टर साहब, एक बात और हमारे जहन में अभी अभी आई है कि बहुत से ऐसे खतरनाक खेल, जैसे कि ब्लू व्हेल का हम नाम लें, तो उसमें बहुत से ऐसे खेल हैं जो आत्महत्या को प्रेरित करने वाले थे और जो मोबाइल के माध्यम से उन गेम्स के द्वारा बहुत सी आत्महत्याएं भी करवाई गई हैं, तो इस तरह के खेल के बारे में क्या कहेंगे, कैसे इनसे दूर रखा जाए और किस तरह से इनसे बचा जा सकता है?
1: जी ये बहुत ही अहम चीज़ है। मैंने अभी पिछले समय, आपने सबने पढ़ा होगा, ब्लू व्हेल्स नाम का एक इस तरह का एपिसोड चला था जिसमें बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या की सोची, कमिट भी किया था। मेरे पास भी ऐसा बच्चा आया था जो ब्लू व्हेल से ग्रसित था और वो आत्महत्या की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसके माता पिता मेरे पास उसको लेके आए। ब्लू व्हेल्स एक इस तरह का एपिसोड, एक ऐसा सीरियल था जिसमें कि बच्चे को चारों तरफ से झकझोर दिया जाता था और अंत में उसको ये कह दिया जाता था कि तुम इसके लिए आत्महत्या करो, ये होगा। तो बच्चा अपने आप को निकलने की कोशिश नहीं कर सकता था, उसकी मानसिकता इतनी वीक हो जाती थी या इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता, ना तो माता पिता से कहे ना किसी दूसरे से कहे, अपने इमोशंस में बंधता चला जाता था और वो ब्लू बेल्स में जैसी उसको इंस्ट्रक्शंस मिलती थी, निर्देश मिलते थे, उसको कमिट कर देता था। इस बच्चे को हमने साइकोथेरेपी देकर उसको आत्महत्या से बचाया।
0: जी

0: चलिए, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब आपने बताई। अब बातचीत के अंतिम पड़ाव में हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आत्महत्या से कोई व्यक्ति, यदि किसी के मन में आ रहा है, आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार में कोई व्यक्ति है इस तरह का जिसने पहले ऐसा कृत्य किया है और वो बच गया है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप कि किस तरह से आप इन बातों से बच सकते हैं?
1: देखिए, एक तो ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखिए कि अगर कोई आत्महत्या करने वाला आदमी है या कुछ इस तरह का आदमी है और वो एक्सप्रेस कर रहा है कि मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मेरे को सुइसाइड करना है या प्लान कर रहा है, तो उसके प्रति एकदम सचेत हो जाइए, उसके प्रति कॉन्शियस हो जाइए। ये सोचिए कि ये कर सकता है और अपन को जो भी अपने संसाधन है सारे इस पर लगा देने चाहिए। सबसे बढ़िया जो संसाधन ये होता है कि उससे बात करिए। बात का तरीका ऐसा होता है जो कहीं पे भी आप कर सकते हैं और कहीं पे भी आप उसको सलाह दे सकते हैं। उसको इस अमुक समय पे सलाह की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ना कि दवाइयों की। अगर उसको आपने 2 मिनट का समय दे दिया, उसकी बात सुन ली, उसको नए संसाधन, नए उसको प्लान बता दिए, तो आत्महत्या नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ध्यान देता हूँ कि अगर आदमी एक बार आत्महत्या की कोशिश करता है या असफल हो जाता है, तो ये मान के चलिए ये बार बार प्रयास करेगा, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी इतनी वीक है कि आगे से भी फ्रस्ट्रेशन सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं ये आत्महत्या करने वालों की। जो पर्सनैलिटी को अपन बदलना मुश्किल है, जब भी स्ट्रेस आएगा, जब भी कोई तनावग्रस्त स्थिति आएगी, तो आत्महत्या की तरफ हो जाएगा बार बार। इसीलिए इन लोगों को काउंसलिंग की या साइकोथेरेपी की जरूरत होती है,
0: उस पर विशेष नजर की जरूरत है।
1: बिल्कुल।
0: तो डॉक्टर साहब, बहुत ही आज आपने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। वैसे तो इस मुद्दे पर और भी बहुत सारी बातें निकलती हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम का वक्त है वो बिल्कुल समाप्ति की ओर है, शर्मा जी आप स्टूडियो में आए, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें आपने हमें बताई है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: धन्यवाद मेरी तरफ से भी।

अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, जीवन है अनमोल, आत्महत्या कायरता है, डॉक्टर जयशंकर शर्मा से शिव कुमार की बातचीत। FM बैंड 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल। 147 निकायों में सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की जरूरत। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के मौके पर आज से राज्य में 1 महीने के जन जागरूकता अभियान की शुरुआत। और प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी। जयपुर सहित कई जिलों में कल से बारिश का नया दौर शुरू होने के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल होगा। 6 नगर निगम, 24 नगर परिषद और 117 नगर पालिकाओं में कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इनमें अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर नगर निगम, टोंक, बहरोड, डीग, दौसा नगर परिषद और भीलवाड़ा, पाली, सलुम्बर, डूंगरपुर, बारा और अन्य नगर पालिकाओं सहित 147 निकाय शामिल है। दूसरे चरण में कुल 4,774 वार्डों में मतदान होने वाला है। इसके लिए 9,758 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे चरण के लिए कल शाम 6 बजे प्रचार समाप्त हुआ। उम्मीदवार घर घर जाकर वोटों की मनुहार कर रहे हैं। इस चरण के लिए 87 लाख

0: 60,000 से ज्यादा मतदाता, 18,200 से अधिक उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुगम तथा सुचारू मतदान के लिए 54,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। उदयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। उन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व के प्रति मतदाताओं से अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की है।
1: वोटर्स के लिए, पोलिंग पार्टीज के लिए जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज होती हैं, वो सबका प्रावधान वहाँ पर किया जा चुका है। जो पुलिस जाप्ता है वो भी निर्धारित मात्रा में, निर्धारित ब्रीफिंग के साथ में वहाँ पर तैनात रहेगा तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं वहाँ पर कर ली गई है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, आप सबके माध्यम से मेरी सबसे यही अपील है कि आप लोग कल आवश्यक रूप से अपना आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
0: इस बार घर घर जाकर पर्ची का वितरण नहीं किया गया है। मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर वोटर लिस्ट में अपना नाम खोज सकते हैं। इससे पहले कल पहले चरण में 162 निकायों में वोट डाले गए। मतदान 76% से ज्यादा रहा। भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने जीत के लिए रणनीति बनाते हुए अपने अपने प्रत्याशियों को सुरक्षित स्थानों पर रखा है। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत नगरीय निकाय चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। मतगणना 14 सितंबर को होगी। इसके बाद अध्यक्षीय पदों के लिए 15 सितंबर को लोक सूचना जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आज पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब अंतरिक्ष में कई देशों की गतिविधियां हो रही हैं। ऐसे में टकराव के स्थान पर सहयोग और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है। अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक भी ले जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने बताया कि इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ के समाज सेवा के कामों में उनके योगदान को भी याद किया। सर्वोच्च न्यायालय ने नाबालिगों की सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए सुरक्षा उपायों की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की सहमति दी है। इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को अनुबंध करने से रोकने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि फेसबुक और स्नैपचैट सहित अन्य प्लेटफॉर्म 13 साल की उम्र से अकाउंट बनाने की अनुमति देते हैं, जबकि भारतीय कानून में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नाबालिग माना जाता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और निराशा तथा तनाव से जूझ रहे लोगों को बिना किसी डर के खुलकर अपनी बात रखने के लिए प्रेरित करना है। जयपुर की मनोवैज्ञानिक यशिका अरोड़ा ने बताया कि आत्महत्या एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है। अकेलापन और अवसाद होने पर अपनों से बातचीत करने तथा विशेषज्ञ से संपर्क कर आत्मघाती विचारों से बचा जा सकता है।
2: इस डे पर हमें ये

0: करना बहुत जरूरी है कि आजकल स्पेसिफिकली यूथ में या हर उम्र के बच्चों में पहचानना कि सुसाइड को कैसे रोका जा सकता है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स देखना अपने लेवल पर, एंड जब भी उन्हें मदद की नीड है तो मदद के लिए सही टाइम पर उन्हें पहचान कर पहुंचाना, उसे ये सपोर्ट और विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है कि हम आपके साथ हैं सिचुएशन में, एंड अगर कुछ भी आप ऐसा फेस कर रहे हो, अपने लेवल पर चीजें नहीं हैंडल हो पा रही, नहीं समझ आ रहा क्या करें, तो ऑफ कोर्स सही समय पर एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, एक साइकोलॉजिस्ट को कॉन्टैक्ट करना बहुत जरूरी है। काफी सारी फ्री हेल्पलाइन केयर्स भी आपको मिल जाएंगी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे सुसाइड हेल्पलाइंस, तो इनसे स्टेप लेना बहुत जरूरी है।
1: विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के मौके पर प्रदेश में आज से विशेष अभियान की शुरुआत हुई। राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष गायत्री राठौड़ ने बताया कि एक महीने के इस अभियान के दौरान मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और आत्महत्या की रोकथाम के लिए जन जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां होंगी। रैलियों, कार्यशालाओं, क्विज पोस्टर और निबंध प्रतियोगिताओं के साथ ही सोशल मीडिया के जरिए तनाव प्रबंधन और भावनात्मक बुद्धि का संदेश लोगों तक पहुंचाया जाएगा। राजस्थान संपर्क पोर्टल में दर्ज 60 लाख से अधिक प्रकरणों में से 59 लाख का निस्तारण किया जा चुका है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज सचिवालय में हुई बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने शेष लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने राज निवेश पोर्टल और मिशन हरियालो राजस्थान की प्रगति की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ पौधरोपण के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 9 करोड़ 68 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। राजधानी जयपुर सहित पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में कल से बारिश की गतिविधियों का नया दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में कल हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं अगले 2-3 दिनों में दक्षिणी पूर्वी भागों में मानसून के फिर से सक्रिय होने के आसार हैं। 13-14 सितम्बर को कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं मध्यम से भारी बरसात का पूर्वानुमान है। बीकानेर संभाग में भी 13-15 सितंबर को छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश और जोधपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस बीच फिलहाल बरसात का दौर थमने से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, झुंझुनू और चूरू सहित 9 से अधिक स्थानों पर दिन का पारा 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर रही है। श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक समरसता का विराट उत्सव माने जाने वाले रामदेवरा मेले के लिए देशभर से श्रद्धालुओं की आवक जारी है। मुख्य मेला 13 सितंबर को भरेगा। इस बीच बाबा रामदेव की समाधि स्थल रामदेवरा के रास्ते में श्रद्धालुओं के पैदल जत्थे, ध्वज यात्राएं और जयकारे माहौल को भक्तिमय बना रहे हैं। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि मेले के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं।
2: श्रद्धालुओं को लेकर जिला प्रशासन ने सफाई, सुरक्षा, विद्युत, पेयजल, छाया, यातायात, पार्किंग, चिकित्सा, सूचना एवं निगरानी सहित विभिन्न व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया है। मेला क्षेत्र को 4 जोन में बांटकर प्रत्येक जोन में करीब 225 सफाई कर्मी लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला क्षेत्र में 7 सूचना केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेला क्षेत्र में 200 से अधिक नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही ग्राम पंचायत के 64 कैमरे पहले से ही संचालित है। वहीं मच्छरों एवं मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए वाटर बेस्ड केमिकल से मेला क्षेत्र सहित विभिन्न वार्डों में फॉगिंग एवं स्प्रे करवाया गया है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
1: मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कल से मेला स्पेशल ट्रेनें शुरू करने का निर्णय लिया है। ये 3 जोड़ी विशेष रेलगाड़ियां भगत की कोठी और श्रीगंगानगर से पोखरण के बीच 15-15 फेरे करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल। 147 निकायों में सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की जरूरत। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के मौके पर आज से राज्य में एक महीने के जन जागरूकता अभियान की शुरुआत। और प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी। जयपुर सहित कई जिलों में कल से बारिश का नया दौर शुरू होने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार

0: बुलेटिन समाप्त हुआ, नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख अजय सिंह शक्तावत ने तैयार किया है। चित्तौड़गढ़ जिले में नगर निकाय चुनाव के तहत तीन नगर निकायों चित्तौड़गढ़, रावतभाटा और बेगू में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। निर्वाचन विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में लगभग 70% मतदान दर्ज किया गया। बेगू नगर निकाय में सबसे अधिक 84.36% मतदान हुआ। चित्तौड़गढ़ में 67.87% तथा रावतभाटा में 66.82% मतदान हुआ। तीनों नगर निकायों में लगभग 1,60,000 मतदाताओं में से 1,11,000 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दूसरे चरण के तहत कल निम्बाहेड़ा, बड़ी सादड़ी, आकोला और कपासन नगर पालिका में वोट डाले जाएंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान दल रवाना कर दिए गए। मतदान कल सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक दिवसीय प्रवास पर पिछले दिनों निम्बाहेड़ा दौरे पर रहे। उन्होंने अटल गौरव स्मृति समारोह में शिरकत की और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर 15 जिलों में 5,600 करोड़ रुपए से अधिक के 944 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत 1,500 गांवों को हर घर नल से जल की सौगात भी दी। इस मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा जीवन राष्ट्र प्रथम की भावना को समर्पित रहा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा, सहकारिता मंत्री गौतम दक, सांसद सीपी जोशी, निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी मौजूद रहे। बीते दिनों 18 देशों के 36 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर चित्तौड़गढ़ पहुंचे। उन्होंने विश्वविख्यात चित्तौड़ दुर्ग का भ्रमण कर सांस्कृतिक विरासत को करीब से जाना। विदेश मंत्रालय की सार्वजनिक कूटनीति पहल के तहत आए इन इन्फ्लुएंसर्स ने कुंभा महल, विजय स्तंभ, जौहर स्थल, पद्मिनी महल सहित प्रमुख स्मारकों का अवलोकन किया। इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से चित्तौड़ दुर्ग की तस्वीर, वीडियो और अनुभव अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंचेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री गौतम दक ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश धाकड़ ने राज्यपाल का संदेश वाचन किया। समारोह में स्कूली विद्यार्थियों ने सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 65 प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पिछले दिनों जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने जिला पर्यटन और विकास समिति की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग सहित जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों के समग्र विकास, पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने से जुड़े विषयों पर चर्चा की। बैठक में जिला कलेक्टर ने केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्वीकृत देश योजना के तहत दुर्ग पर कराए जाने वाले विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही फोर्ट फेस्टिवल का आयोजन करने, दुर्ग मार्ग को हेरिटेज रोड के रूप में विकसित करने और दुर्ग स्थित कीर्ति स्तंभ पर भी फ्लड लाइट लगाने को कहा। इसके अलावा जिले के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों मातृकुंडिया, मैनाल, जोगणिया माता तथा सांवलिया धाम में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। सैनिक स्कूल का 66वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ पिछले दिनों मनाया गया। स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में भारतीय सेना के साउथ वेस्टर्न कमांड के वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट जनरल ने सैनिक स्कूल परिसर में बने स्मृति का पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सैनिक स्कूल की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव रा दूजा दौर रात काल सुमारे 7 बजाऊ वोट पड़ेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में कहो, वसुधैव कुटुंबकम री भावना ने धरतियों आगे अंतरिक्ष ताई ले जावण री जरूरत। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस रे मौके आज राज्य में 1 महीना रो जन जागरूकता अभियान शुरू करी जियो। और प्रदेश में घनखर ठोड़ा पारो चढ़ियो, जयपुर समेत कई ठोड़ा काल बिरखा ओजू शुरू है वन रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव रा दूजा दौर रा तेत काल वोट पड़ेला। 6 नगर निगम, 24 नगर परिषद और 117 नगर पालिकाओं में काल सुमारा 7 से 6 बजे ताई वोट दियो जा सकेला। अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर नगर निगम, टोंक, बहरोड़, डीग और दौसा नगर परिषद सागे, भीलवाड़ा, पाली, सलूम्बर, डूंगरपुर और बारां समेत न्यारा न्यारा जिला री नगर पालिकाओं रा चुनाव सारू काल वोट डालिया जावेला। दूजा दौर माए 4774 वार्डा माए भे वनवाड़ा चुनाव सारू 9758 मतदान केंद्र बनाई चिया है। इन चुनाव सारू काल सिंजा प्रचार रो काम पूरो फेक्यो हो। इन पाछे उम्मीदवार घर घर जार वोट देवन वाला री मनवार कर रिया है। स्थानीय निकाय चुनाव रा दूजा दौर माए वोट देवन रा पात्र 87,60,000 बत्ता मतदाता 18,200 बत्ता उम्मीदवार रा सियासी भाग रो फैसलो करेला। मतदान सारू सगली तैयारियां पूरी फेकी है। कानून व्यवस्था बनाई रखन और आसानी मतदान सारू 54,000 बत्ता कर्मचारियां रो हिफाजती अमलो रहवेला। उदयपुर रा जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल वोट देवन रा काबिल सगला लोगाओं लोकतंत्र रा प्रति जिम्मेदारी निभावन री अरज कीनी है।
1: वोटर्स के लिए, पोलिंग पार्टीज के लिए जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज होती है वो सब का प्रावधान वहाँ पर किया जा चुका है। जो पुलिस जाप्ता है वो भी निर्धारित मात्रा में निर्धारित ब्रीफिंग के साथ में वहाँ पे तैनात रहेगा तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं वहाँ पे कर ली गई है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, आप सबके माध्यम से मेरी सबसे यही अपील है कि आप लोग कल आवश्यक रूप से अपना आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
0: इन दफा घर घर जार चुनाव पर्ची नहीं बांटी जा रही है। आप राज्य निर्वाचन आयोग री वेबसाइट माथे वोटर लिस्ट माई नाम देख सको हो। चुनाव रा काल व्या पहला दौर माए 162 निकायां माए 76% बत्ता लोग वोट दीना। भाजपा और कांग्रेस दोनों खास सियासी पार्टियां जीत सारू रणनीति रा तेत आप आपरा उम्मीदवारा ने एक सागे राख रही है। वन स्टेट वन इलेक्शन री सोच रा तेत कराया जा रहा नगरीय निकाय चुनाव माए पड़वा वाला वोटा री गिनती 14 सितंबर न करी जावेला। पाछे अध्यक्ष ओहदा सारू 15 सितंबर ने लोक सूचना जारी करी जावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि भारत अंतरिक्ष हलका ने सुरक्षित, शांत और टिकाऊ बनायो रखन री मंशा रखे है। वे आज फ्रांस री राजधानी पेरिस में राखी जे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जरिए बोल रहा है। श्री मोदी कहो कि अंतरिक्ष में इंसानी हलचल अंतर्राष्ट्रीय कानून संवाद और न्यारा न्यारा पखारी आपसी मदद माथे आधारित वेवनी चाहिए। प्रधानमंत्री कहो कि ज्यों ज्यों अंतरिक्ष में इंसानी हलचल बढ़ रही है त्यों त्यों टकराव रे बजाय मदद, थोड़ा वगत रा फायदा रे बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव रे बजाय समावेश माथे खास ध्यान दियो जावनु चाहिए। प्रधानमंत्री कहो कि भारत रो वसुधैव कुटुंबकम रो नजरियो एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य री भावना।

0: इंसानी हलचल अंतरराष्ट्रीय कानून संवाद न्यारा न्यारा पखारी आपसी मदद माथे आधारित वेवणी चाहिए। प्रधानमंत्री कहो कि ज्यों ज्यों अंतरिक्ष में इंसानी हलचल बढ़ रही है त्यों त्यों टकराव रे बजाय मदद थोड़ा बगतरा फायदा रे बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव रे बजाय समावेश माथे खास ध्यान दियो जावणू चाहिए। प्रधानमंत्री कहो कि भारत रो वसुधैव कुटुंबकम रो नजरियो एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य री भावना माथे आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय रा 50वां इमाम और समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम सागे मुलाकात कीनी। सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए श्री मोदी बतायो कि बातचीत रे दौरान वे स्वास्थ्य सेवा खेतीबाड़ी गांवई हलकां रा विकास नौजवाना और महिलावां ने मजबूत बनावण में आगा खान विकास नेटवर्क सागे भारत री भागीदारी ने और मजबूत बनावण रे बारे में विचार करी चियो। सुप्रीम कोर्ट नाबालिग कानून सोशल मीडिया काम लेवण नु जुड़िया हिफाजती इंतजाम री मांग करण वाली अर्जी माथे सुनवाई री मंजूरी दे दीनी है। अर्जी में 18 साल नु कम उम्र वाला सागे किनी डिजिटल प्लेटफॉर्म ने करार करण नु रोकण री मांग करी ची है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना री पीठ एक गैर सरकारी संगठन री अर्जी माथे केंद्र सरकार और दूजी पार्टियां ने नोटिस जारी कीनो। अर्जी माए कही जियो है कि फेसबुक और स्नैपचैट समेत न्यारा न्यारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 13 साल री उम्र माए अकाउंट बनावन री मंजूरी देवे है जबकि भारत माए कानून रे मुजब 18 साल कम उम्र वाला ने नाबालिग माना जावे है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ओ दिन मनावण रो मकसद मानसिक स्वास्थ्य माथे खास ध्यान देता थका निराशा और तनाव रो सामो करण वाला ने बिना डरिया वारी बात खुलर रखन री सीख देवे है। जयपुर री मनोवैज्ञानिक याशिका अरोड़ा बतायो कि आत्महत्या गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है। अकेलापन और मानसिक अवसाद रा हालात माए अपना लोगों बातचीत कर जानकारों संपर्क कर आत्महत्या रा विचारों बचो जा सके है।
1: इस डे पर हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आजकल स्पेसिफिकली यूथ में हर उम्र के बच्चों में पहचानना कि सुसाइड को कैसे रोका जा सकता है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स देखना अपने लेवल पर एंड जब भी उन्हें मदद की नीड है तो मदद के लिए सही टाइम पर उन्हें पहचान कर पहुंचाना, उसे ये सपोर्ट और विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है कि हम आपके साथ हैं सिचुएशन में। अगर कुछ भी आप ऐसा फेस कर रहे हो अपने लेवल पर चीजें नहीं हैंडल हो पा रही, नहीं समझ आ रहा क्या करें, तो ऑफकोर्स सही समय पर एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एक साइकोलॉजिस्ट को कॉन्टैक्ट करना बहुत जरूरी है। काफी सारी फ्री हेल्पलाइन केयर्स भी आपको मिल जाएंगी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे सुसाइड हेल्पलाइन, तो इनसे स्टेप लेना बहुत जरूरी है।
0: विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के मौके प्रदेश में आज खास अभियान शुरू करी जियो। राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण री अध्यक्ष गायत्री राठौड़ बतायो कि एक महीना रा ई अभियान रे दौरान मानसिक स्वास्थ्य जुड़ी सेवाओं मजबूत बनावण और आप हित्यारी रोकथाम बाबत जाग जगावण सारू न्यारा न्यारा कार्यक्रम राख्या जावेला। राजस्थान संपर्क पोर्टल माथे दर्ज कराई जी 60 लाख 32 शिकायतों में आयु 59 लाख रो निपटारो करतीयो चियो है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर में आ जानकारी दीनी। वह बचोड़ा मामला तेजी निपटावण रा हुक्म दीना। मुख्य सचिव बतायो कि चालू माली साल में 10 करोड़ पौधा रोपण रा लक्ष्य रे मुकाबले हाल ताई 9 करोड़ 68 लाख बत्ता पौधा रोप दिया चिया है। प्रदेश में चलाया जा रहा शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान रातेत खाद्य सुरक्षा और औषधीय नियंत्रण विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है। जयपुर में जगतपुरा हल्का रा एक स्टोर में केंद्रीय दल औचक जांच कर करीब 1500 रूम बत्ता डेयरी उत्पाद और 100 किलोग्राम खाद्य सामग्री

0: ਗਰੀ ਮੌਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਾਈ ਸਟੋਰੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰੇ ਮਿਆਦ ਪਾਰ ਸਮਗਰੀ ਮਿਲੀ ਕੋਟਪੁਤਲੀ ਬਹਿਰੋੜ ਮਾਏ ਖਾਦਯ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ ਨਿਆਰੀ ਨਿਆਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰੇ ਕਰੀਬ 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਾਈ ਅਰਬ ਮੌਸਮ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੈਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਉਗਣੀ ਹਲਕਾ ਮਾਏ ਕੱਠੇ ਕੱਠੇ ਕਾਲੂ ਚੌਮਾਸਾਰੀ ਬਿਰਖਾ ਓਜੂ ਸਰੂਫੇ ਬਣ ਰਹਾ ਆਸਾਰ ਹੈ मौसम विभाग रे मुजब भरतपुर और कोटा संभाग रा कुछ हल्का माए हल्की मझला दर्जा री बिरखा फै सके है प्रदेश रा लंका उगनी हल्का माए आवता 2-3 दिन माए बिरखा ओजू स्वरूफे बन री संभावना है 13-14 सितंबर ने कोटा और उदयपुर संभाग माए कठे कठे मझला दर्जाऊ भारी ताई बरसात फै सके है बीकानेर संभाग माई 13-15 सितंबर बीच कठे कठे हल्की जदक जोधपुर संभाग माई हल्की मझला दर्जा रो में बरसबारा आसार है इबीचे फिलहाल बरसात मंदी पर जावणु पारो चढ़ रियो है श्रीगंगानगर बाड़मेर जैसलमेर झुंझुनू और चूरू समेत 9-32 ठोणा दिनरी बगत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस ऊंचो दर्ज करियो चाटियो है श्रद्धा भक्ति और सामाजिक समरसता रो उत्सव मान्या जावन वाला रामदेवरा मेला माए आखा देश जात्रु पूग रिया है रामदेवरा रो खास मेलो 13 सितंबर न भरेला महाणा जैसलमेर खबर नवीस बतायो के मेला सारू पुलिस और प्रशासन री ओर जरूरी बंदोबस्त करी चिया है
1: श्रद्धालुओं को लेकर जिला प्रशासन ने सफाई सुरक्षा विद्युत पेयजल छाया यातायात पार्किंग चिकित्सा सूचना एवं निगरानी सहित विभिन्न व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया है मेला क्षेत्र को 4 जोन में बांटकर प्रत्येक जोन में करीब 225 सफाई कर्मी लगाए गए हैं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला क्षेत्र में 7 सूचना केंद्र भी स्थापित किए गए हैं इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेला क्षेत्र में 200 से अधिक नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं इसके साथ ही ग्राम पंचायत के 64 कैमरे पहले से ही संचालित है वहीं मच्छरों एवं मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए वाटर बेस्ट केमिकल से मेला क्षेत्र सहित विभिन्न वार्डों में फॉगिंग एवं स्प्रे करवाया गया है मनीष व्यास आकाशवाणी समाचार जैसलमेर
0: मेला माए जात्रुओं की बढ़ती आमद न ध्यान रखता था का रेलवे कालू भगत की कोठी और श्री गंगानगर पोकरण बीच 3 जोड़ी मेला स्पेशल रेल चलावेला ए गाड़ियां 15-15 फेरा करेला श्री गंगानगर री जेल माए आज विधिक जागरूकता शिविर लगाई चियो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रा सचिव रवि प्रकाश सुथार कैदियां ने अपील और जमानत रा हक को जुड़ी जानकारियां दीनी और मुफ्त कानूनी सहायता रा बारा में बतायो आखिर माए खास समाचार एक फिर सुन ले रहो प्रदेश माए स्थानीय निकाय चुनाव रा दूजा दौर रा तत्काल सुमारे 7 बजाऊ वोट पड़ेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में कहो वसुधैव कुटुंबकम री भावना ने धरतियों आगे अंतरिक्ष ताई ले जावन री जरूरत विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस रे मौके आज राज्य में 1 महीना रो जन जागरूकता अभियान शुरू करी चियो और प्रदेश में घनखर ठोड़ा पारो चढ़ियो जयपुर समेत कई ठोड़ा काल बिरखा ओजू स्वरूप बन रहा आसार इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो नमस्कार
2: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है संध्या के ठीक 7 बजे हैं लीजिए सुनिए कार्यक्रम किसान वाणी

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाला सगला श्रोतावा ने आशा धाबाई का घना घना राम राम, और अदिति जी आपने भी मारा घना घना राम राम सा।
7: आशा बहन आपने भी घणो घणो राम राम, और सुन वाला सगला श्रोतावा ने अदिति भट्टरो ने भरियो नमस्कार और राम राम सा।
6: और रामा श्यामा के साथ ही देखो आज के किसान वाणी कार्यक्रम में थोड़ी सी बात आपा करेला कि सितंबर को जो दूसरो सप्ताह चाहे वो शुरू हो गो जाए, और अपना काश्तकार भाई ने चाहे जी कि इस सप्ताह के मायने भी जो मोटा मोटा काम करबा का छे उन्हें टाइम सारू कर लियो ताकि आपकी फसल आपने सुरक्षित उत्पादन का रूप में मिल सके। और ई टाइम देखो आपा देख रहे चा कि कई जगह तो बरसात हो चुकी छे और कई जगह तो बहुत ही कम हुई छे, पर आप देखो कि खेता के मायने खरपतवार जो छे वो आपको पूरो आक्रमण कर रखियो छे।
7: जी सा, ये जो छे बिन बुलाया मेहमान होवे छे, आ जावे छे तो आ जावे छे पण काई करा, आपाने इसू राहत तो मिलनी छे, और राहत पाबा के लिए आपाने खरपतवार नियंत्रण का छोटा मोटा सा जो तरीका छे वे भी अपनाना छे।
6: अदिति जी, खरपतवारों को नियंत्रण करबो एक तो सबसे ज्यादा जरूरी जीसू ही छे कि अपना काश्तकार भाया फसल की बढ़वार के लिए और चोखा उत्पादन के लिए जो भी आप समझ लियो कि रासायनिक कीटनाशक सुरक्षा के लिए या फिर उत्पादन बढ़ावा के लिए कोई भी खाद और उर्वरक छिड़काव और बुरकाव करे छे, तो ये खरपतवार वहां को अवशोषण यानी कि वहां सोख लेवे छे, तो वे सारा जो पोषक तत्व होवे छे या जो जी सुरक्षा के लिए आप या चीजों को छिड़काव बुरकाव कर रहे छे वह उ फसल तक न पहुंच रही है, खुद ही उन्हें सोख लेवे छे तो वह नहीं मिल जावे छे, और फसल जो छे वह जूं की त्यूं रह जावे छे, जीसू की माका जी का काश्तकार बहे छे वह ने घणो नुकसान उठानी पड़े छे। ई ताई टाइम सारू, समय सारू और समय पर खरपतवारों को नियंत्रण करनो खूब जरूरी छे क्योंकि वे आपकी खड़ी फसल ने खूब ही नुकसान पहुंचावे छे।
7: जी तो आशा जी, थोड़ी सी विधि आपने और अपना जो करसा भाईर बहन छे आने बताता चला भैया, तो अपना करसा भाईर बहन खूब होशियार तो छे ही। तो देखो यांत्रिक विधि सु आपा खरपतवार पर नियंत्रण पा सका छा, सांस्कृतिक विधि सु और रासायनिक विधि जी आप बताया ही, और अगर यांत्रिक विधि की जी आपा बात करा तो निराई गुड़ाई करके खरपतवार ने आपा बाहर निकाल सका छा, ये सबसे आम तरीको छे। तो फसल की बुवाई का 20-25 दिन पाछे जितनी अपनी फसल अब हो ही गई छे, तो एक टाइम तो 20-25 दिन पाछे और दूसरी बार 45 दिन बाद निराई करके आपा ने खरपतवार पर नियंत्रण पानो छे।
6: और अदिति जी देखो, ध्यान रखबा की बात यह छे कि एक तो खरपतवार की पहचान करनो अपना काश्तकार भाया ने आनो चाहिए, क्योंकि जद कोई चीज की आप पहचान करेला जदि उको समाधान और निदान करेला। और दूसरी बात यह कि समय समय पर माँ का काश्तकार भाया ने खेत में जार उनको निरीक्षण जरूर से करनी चाहिए जी, और जद निराई गुड़ाई करबा की बात आवे तो देखो श्रम भी में खूब लागे छे, क्योंकि एक एक चीज ने एक एक खरपतवार ने चुन चुन हटानो बहुत मुश्किल काम छे। ई ताई जरूरी तो या भी छे कि जद बिजाई करो जावे, जद भी ई चीज को विशेष ध्यान रखो जावे, और जो सुरक्षित उपाय छे जो माँ का कृषि विशेषज्ञ टाइम टाइम पर बताता भी रहे छे कि कुन कुन सी सावचेतियां राखता हुआ अगर बुरकाव छिड़काव करो जावे, बुआई करी जावे और कोई खेत बाड़ी का काम कराया जावे, तो काफी हद तक आपा या खरपतवारा से बच सका जा, तो वह तरीका ने भी काश्तकार भाया ने जरूर अपनानी चाहिए जी। और जिया की आप बताए ही भाई ये तीन विधियां छे मोटा तौर पर जाको उपयोग कर भी खरपतवारा से बचो जा सके जी।
7: सही कह रहे छो आशा जी, आपा फसल की निराई गुड़ाई और सब चीजा की बात तो आपा सागे सागे करता ही रहवा, लेकिन आपने बीच में जो छे डॉक्टर अनीता पारिक जी आ गया छे कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का माध्यम से आपा कया कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने अपनाता हुआ उपयोग और संभावना पे आपा जानकारी ले लिया, जो कि आज का परिप्रेक्ष्य में अगर देखा तो घनी जरूरी भी छे, और करसा भायर बहना ने तकनीक को तो घणो ज्ञान छे पर अगर

0: आपनी सही दिशा में अगर आपा काम में लेवा तो घणो आपा ने फायदो आर्थिक रूप से हो पावेलो। और अगर आर्थिक रूप से आपना कर्जा बाई बहन मजबूत छे तो फिर तो वारा न्यारा ही छे। पा जानकारी लेवा आपने संभाला माइक।
1: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर अनीता पारिक, आप कृषि अधिकारी राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर। और आज हम इनसे बात करेंगे कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI या कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपयोग एवं संभावनाएं। सबसे पहले तो डॉक्टर अनीता पारिक जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: जैसे कि आजकल हम सुन रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, हर जगह आपको या हमें ये चीज सुनने में आती है, तो सबसे पहले तो हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी।
2: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी किसान भाइयों, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम हिंदी में बोलेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सरल शब्दों में कहे तो AI ऐसी तकनीक है, कंप्यूटर में जानकारी है, उन आंकड़ों का ये विश्लेषण करती है और उनकी समस्याओं को समझने तथा उनके निर्णय लेने में सहायता करती है। आज कृषि के सामने मौसम में बदलाव, पानी की कमी, कीट एवं रोगों का प्रकोप और मिट्टी में उर्वरता की कमी धीरे धीरे और बढ़ती उत्पादन लागत जैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं। ऐसे समय में AI किसानों के लिए एक अच्छी तकनीक बन सकती है। इसका उद्देश्य किसान की जगह निर्णय लेना नहीं है, बल्कि किसान को सही समय पर सही जानकारी देकर बेहतर निर्णय लेने में सहायता करना है।
1: डॉक्टर साहब, आजकल या कुछ समय पहले से भी हम देख रहे हैं कि हमें कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो हम जाके सीधा मोबाइल पे गूगल करते हैं और उस चीज को जानने की कोशिश करते हैं और काफी हद तक हम उसके समाधान भी पा लेते हैं। तो आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि ये जो गूगल और AI है, इसमें क्या कोई अंतर है या सेम ही है, क्योंकि आजकल गूगल के साथ AI मोबाइल पे जुड़ा हुआ भी है, तो विस्तार से हमारे श्रोताओं को समझाइए इन दोनों में क्या फर्क है।
2: गूगल मुख्य रूप से एक सर्च इंजन है, जैसे हम कोई भी अपना सर्च करेंगे, जो इंटरनेट पर जानकारी उपलब्ध है किसी भी टॉपिक पे हम सर्च करेंगे तो वो हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जबकि जो AI है उपलब्ध जानकारी और डेटा का विश्लेषण करता है और उसके अनुसार अपने प्रश्न का उत्तर या सलाह देने में अपनी सहायता करता है।
1: जी,
2: उदाहरण के लिए अपन देखेंगे, जैसे अपन गूगल से पूछते हैं कि गेहूं में पीला रोग क्यों होता है,
1: जी
2: किस कारण से हो रहा है, तो उसे वेबसाइट या लेख या वीडियो उससे संबंधित जो भी है वो उस पे आ जाएगा।
1: बिल्कुल।
2: जबकि AI द्वारा किसान AI पे ये करेंगे कि गेहूं में पीला रोग क्यों होता है, तो AI अपने से और क्वेश्चन पूछता है कि इसकी फोटो भेजो या फिर कौन से एरिया में हो रहा है या किस परिस्थितियों में ये है, तो उसके अनुसार अपन इनपुट डालते हैं तो वो उसका सही विश्लेषण करता है और संभावित जो समस्या है उसको समझाने में अपनी सहायता कर सकता है। हालांकि गूगल के कई उत्पाद भी AI का उपयोग होता है, इसलिए दोनों को पूरी तरह अलग समझना भी सही नहीं है। और सरल शब्दों में कहा जाए तो गूगल हमें जानकारी खोज कर देता है, जबकि AI जो उपलब्ध जानकारी है और उनके जो भी आंकड़े आज तक जो भी या उस विषय पे कोई भी कुछ काम हुआ है उस सब का विश्लेषण करके प्रश्न जो होते हैं उनका उत्तर देने में हमारी सहायता कर सकता है।
1: जी, यानी ये कहा जा सके कि आज का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो काफी हद तक हमारे किसान भाइयों की और काश्तकार भाइयों की मदद करता है अपने जो खेती किसानी है उसको बेहतर तरीके से करने में और सूचनाएं उपलब्ध कराने में। अब चूंकि हमारे किसान भाई हैं और सीधे सीधे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हैं, तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि फसल उत्पादन में AI का उपयोग किस तरह से किया जाता है, क्योंकि कई लोग सिर्फ सुन रहे हैं, अभी इसको प्रैक्टिकल कर नहीं रहे हैं, आजमा नहीं रहे हैं, थोड़ा संकोच खाते हैं, उनको ऐसे भी लगता है कि क्या पता एक जैसा डाटा या एक जैसी सूचनाएं इसमें फीड की गई है तो जो भी पूछेगा उसका एक ही सवाल एक ही तरह का जवाब मिलेगा, इस तरह के काफी संशय लोगों के मन में आते हैं, तो थोड़ा विस्तार से समझाइए ताकि इनका समाधान किया जा सके।
2: जी बिल्कुल, जैसे कि खेती किसानी में मिट्टी है, मौसम और पिछले वर्षों के जो आंकड़े हैं हमारे पास उसका विश्लेषण करके AI किस एरिया में कौन सी फसल लेनी है, बुआई का कौन सा समय उचित रहेगा, उसमें समझने में हमें सहायता कर सकती है। इसके साथ ही सिंचाई प्रबंधन में सेंसर से मिट्टी की नमी की जानकारी और मौसम और फसल की आवश्यकता के साथ तो उसका विश्लेषण किया जा सकता है, इससे पानी की अनावश्यक खपत कम करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही जैसे उर्वरक पर...

0: बंधन है उसमें भी एआई उपयोगी है। जैसे खेत की मिट्टी और फसल की स्थिति की, हम खेत की मिट्टी की जांच करवाएंगे, उसके साथ में जो आंकड़े हैं उसको अगर हम एआई पे अपलोड करते हैं तो उस आंकड़ों के आधार पर हमें कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता है इसका आकलन किया जा सकता है। साथ ही जो ड्रोन और सेंसर से प्राप्त खेतों की तस्वीर हम अगर एआई को इनपुट के रूप में देंगे
1: जी,
0: तो विश्लेषण करके कमजोर फसल वाले हिस्सों की पहचान भी हमें सहायता मिलती है।
1: तो मैडम अब आपसे यही जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे काश्तकार भाई बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से खेती किसानी करते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनकी अच्छी फसल उन्हें मिले ताकि आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो, लेकिन बहुत देखा गया है कि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी, सारी जानकारी रखने के बाद भी अपन समझ लें कि या तो जलवायु के कारण या कई प्रकार से न कि शुरुआत में बल्कि खड़ी फसल में भी कीड़े और रोग फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो एआई किस प्रकार से मदद करता है इन कीट और रोगों की पहचान करने में ताकि फसल से सुरक्षित उत्पादन लिया जा सके?
0: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी एआई आधारित एप्लीकेशन जो है हमारे पास, उनमें किसान फसल की पत्ती या पौधों की तस्वीर डाल सकता है। जैसे जो भी किसान भाइयों के यहाँ कोई रोग हो रहा है तो सबसे मेन होता है उसकी पहचान करना।
1: बिल्कुल,
0: तो पहचान करेगा तो वो उसका मतलब ज्यादातर पता होता है कि, या फिर किसान जो कृषि विभाग के विशेषज्ञ उनको बताते हैं कि इस रोग को ये दवाई होती है। लेकिन
1: डॉक्टर साहब, हमारे जो किसान बहन भाई हैं, काश्तकार भाई बहन हैं, वो खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन और बागवानी भी करते हैं, तो अगर हम एआई की उपयोग की बात करें तो किस प्रकार से पशुपालन और बागवानी को बेहतर बनाने के लिए एआई का उपयोग किसान बहन भाई कर सकते हैं?
0: जी हाँ, पशुपालन में और सेंसर और स्मार्ट उपकरणों से पशुओं की गतिविधि, भोजन, पानी और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एकत्रित की जा सकती है। एआई इन आंकड़ों का विश्लेषण करके, जैसे हम उसको पशु का कोई भी बीमार है तो हम उसको उसके लक्षण बताएंगे एआई को कि रोग हुआ है, उसकी पहचान करेगा और जैसे प्राथमिक रूप से हम उसको जो दवाई अभी देनी चाहिए या फिर उसको कौन सा चारा नहीं खिलाना है या उसको क्या प्राथमिक रूप से उपचार दे सकते हैं, वो एआई हमारे मदद कर सकता है। इसी तरह बागवानी में भी फल और सब्जियों के रोगग्रस्त पौधों की पहचान कर सकते हैं, फल की गुणवत्ता की जांच कर सकती है और समय समय पर उनको कौन सा हमें खाद और पानी देना चाहिए इसका भी हम एआई द्वारा हम पता लगा सकते हैं। साथ ही उत्पादन का अनुमान और सिंचाई प्रबंधन जैसे कार्यों में भी एआई का उपयोग किया जा सकता है।
1: बहुत ही बेहतर और बहुत ही बढ़िया जानकारी आप हमारी श्रोताओं को डॉक्टर साहब दे रही हैं। और जब हम खेती किसानी की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो उसमें कृषि में जो विपणन व्यवस्था है उसका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इतनी मेहनत से जब किसान अपनी खेत में अनाज उत्पादित करता है या कोई भी फसल का उत्पादन करता है, उसको सुरक्षित बाजार तक ले जाना और उसका सही मूल्य लेना, ये उसके लिए एक अपन कह सकते हैं कि बहुत ऐसा हो जाता है कि कई बार सब कुछ तैयारी के बाद भी अगर इसमें विपणन व्यवस्था में कोई कमी रह जाती है तो आर्थिक नुकसान काफी भारी हो जाता है, जिससे कि आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। तो एआई किसानों को बाजार और कृषि में विपणन व्यवस्था में किस प्रकार मदद कर सकता है, ये भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर बाजार में उसका मूल्य अपने को नहीं मिलेगा तो किसान को जो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो सकता। तो इसके लिए कृषि में केवल उत्पादन बढ़ाना ही हमारे लिए एक टास्क नहीं है, इसके अलावा भी एक मार्केटिंग या मतलब बाजार व्यवस्था होना भी बहुत आवश्यक है। जैसे अगर किसान की अपनी उपज है उसका उचित मूल्य मिलना बहुत जरूरी है। एआई द्वारा हम विभिन्न जो भी मंडी है उनके भाव, बाजार में उसकी मांग, मतलब हर परिस्थिति के अनुसार और हर क्षेत्र के अनुसार अलग अलग मांग और अलग अलग भाव होते हैं कृषि उत्पाद के, तो उसके अनुसार एआई द्वारा जो उपलब्ध आंकड़े हैं उनका विश्लेषण करके बाजार की स्थिति समझने में एआई सहायता कर सकती है। भविष्य में एआई किसान को क्या उत्पादन करे जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, कितना उत्पादन करे और उपज को कहाँ अपन बेचे, ऐसे निर्णयों में एआई सहायता कर सकती है। बाजार भाव अनेक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, इसलिए एआई की जानकारी को सलाह के रूप में लेना चाहिए और स्थानीय बाजार की वास्तविक स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार कुल मिला के जो है किसान भाइयों के लिए एआई बाजार की

0: कहाँ अपना उत्पाद बेचे, वो भी बहुत अच्छी मदद कर रहा है।
1: डॉक्टर साहब देखो, यूं तो बातें बहुत सी हैं और संसाधन भी बहुत से हैं, पर कारगर चीजें वही होती हैं जो धरातल पे होती हैं और जिन्हें हमारे काश्तकार भाई जान पाते हैं, समझ पाते हैं और काम में ले पाते हैं। इसी तरह से अगर हम AI की बात करें, सुनने में बहुत कुछ है, जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसान भाइयों और बहनों के लिए वास्तविकता क्या है, इसके लिए अगर हम बात करें हमारे क्षेत्र राजस्थान की, तो क्या महत्वपूर्ण शुरुआत हुई है AI को लेकर, कितना किसान बहन भाई जान पाए हैं, कितना फील्ड में लोग उतरे हैं, कितना इसको समझ पाए हैं और कितनी ये सार्थक सिद्ध हुई है, बताएं।
0: जैसे कि राजस्थान में इसकी शुरुआत हो चुकी है, महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो है भारत विस्तार। इसका उद्देश्य AI आधारित तकनीक के माध्यम से किसानों को कृषि संबंधित जो जानकारी है और ये जो सलाह है वो उपलब्ध करवाना है। इसके द्वारा जो मौसम है, मंडी भाव है, फसल प्रबंधन है, मिट्टी, कीट, रोग है, उनकी जानकारी एक साथ उपलब्ध करवाने में इस दिशा में ये काम कर रहा है। इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण नाम है AI भारती, जो कि वॉइस बेस्ड जो AI असिस्टेंट है किसान भाइयों, वो क्या करता है कि आप अगर उसमें कोई भी अपना सवाल या अपनी कोई भी जो कृषि से संबंधित वो सवाल पूछते हैं
1: जी,
0: तो ये बताता है कि उदाहरण दिखाता है कि AI किसान को उसका जो उचित मतलब समाधान आपको देता है। AI किसान सलाह और कृषि विस्तार के क्षेत्र में व्यवहारिक रूप से उपयोग की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो राजस्थान के जो किसान भाई है उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा।
1: मतलब कहने का मतलब ये है कि कई किसान भाई ये सोचते हैं कि हम कम पढ़े लिखे हैं या ज्यादा हमारी बहनें नहीं पढ़ पाई, नहीं ज्यादा समझ पाती, उनको अंग्रेजी नहीं आती, तो इसमें सबसे बेस्ट ये है कि आप बोलकर भी अपनी समस्या बता सकते हैं और उसका समाधान भी पा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप हमारे श्रोताओं को जानकारी दे रही हैं। अब जब हमारी बात समाप्ति की ओर है तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि AI नाम बहुत बड़ा है, बहुत विस्तारित है और इतना कि शायद हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसके अंदर क्या क्या होगा। तो हमारे जो छोटे और सीमांत किसान बहन भाई हैं वो ये सोचते हैं कि ये हमारे क्या काम का है, क्या हमारे लिए भी उपयोगी है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे छोटे और सीमांत किसान हैं उनके लिए कितना और कैसे उपयोगी है।
0: AI का लाभ केवल बड़े किसान ही नहीं, सीमित जो सीमांत किसान है वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। जैसे अगर किसी के पास कम खेती है तो अपनी कृषि जोत है छोटी है, सीमांत किसान है
1: जी,
0: तो उसका बेस्ट उपयोग क्या हो सकता है
1: जी,
0: तो वो AI इसका बहुत अच्छे से आपको मतलब व्यापक उसका उपयोग बता सकता है। किसान अपने मोबाइल फोन से मौसम, फसल, कीट, उसमें अच्छी से अच्छी अपन पैदावार कर सके, वो बताने में AI का बहुत अच्छा रोल है। और इसके साथ ही कृषि विभाग, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, किसान उत्पादन संगठन और तकनीकी संस्थाओं को मिलकर इसमें ये AI पे अच्छा काम कर सकता है और किसानों को प्रशिक्षण भी देना उचित होगा।
1: डॉक्टर साहब बहुत ही विस्तार से आपने समझाया है AI के उपयोग के बारे में और उम्मीद है हमारे सुनने वाले श्रोताओं को भी पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा और ये जानकारी उनके लिए बहुत उपयोगी भी रहेगी। अब जब इतनी सारी बातें करी है तो एक और सवाल मन में यह आ रहा है कि जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी सारी जानकारियां इस पे है, तो संभावित ही जब हम किसी काम को करते हैं, शुरुआत करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो कुछ एक चुनौतियां भी जरूर होती है जो हमारे सामने आती है। तो आपसे जानना चाहेंगे कृषि में AI की सबसे बड़ी संभावनाएं जो है, उसके साथ साथ उसकी जो मुख्य चुनौतियां हैं वो क्या हैं?
0: जी, मैं पहले बताना चाहूंगी कि कृषि में AI की संभावनाएं बहुत व्यापक है
1: जी।
0: पानी हुआ, उर्वरक और कृषि रसायनों की आवश्यकता के अनुसार उपयोग, फसल की बेहतर निगरानी, कीट व रोग की शुरुआती पहचान या फिर मौसम की जानकारी और बाजार से संबंधित निर्णयों में हमने आपसे चर्चा की, तो इसमें ये जो संभावनाएं बहुत हैं। इसके साथ ही इसमें चुनौतियां ये भी है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो कई इतने साक्षर नहीं है या डिजिटल साक्षरता
1: की कमी है,
0: और कई जो रिमोट एरिया हैं उनमें इंटरनेट और स्मार्ट उपकरणों की उपलब्धता भी
1: कम है,
0: इतना नहीं है
1: जी।
0: वैसे तो काफी आजकल सबके पास मोबाइल और स्मार्टफोन है, पर कुछ एरियाज हैं उनमें अभी भी कमी है और स्थानीय आंकड़ों की भी उपलब्धता इसमें शामिल है। ये जो हमारे पास चुनौती है, इसलिए किसानों को प्रशिक्षण व स्थानीय भाषा में जानकारी

0: और आसान डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता किसान की जगह लेने वाली तकनीक नहीं है, बल्कि किसान को ज्ञान और अनुभव, आधुनिक जो तकनीक है उससे जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यदि किसान का अनुभव, कृषि विज्ञान और AI आधारित तकनीक के एक साथ काम करेंगे हम सब मिलके, तो भारतीय कृषि या हमारी जो कृषि है उसको कृषि उत्पादन लाभकारी, टिकाऊ और जलवायु के प्रति सक्षम बनाने में AI बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: श्रोताओं, डॉक्टर अनिता पारी, कृषि अधिकारी, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित रहे और हमें बता रहे हैं कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI या कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपयोग एवं संभावनाएं। इतनी बढ़िया और उपयोगी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: उतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच
2: है? बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: आशा बहन, इतनी बढ़िया जानकारी आप दिलवाई डॉक्टर अनिता पारिक जीसू की, कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उपयोग करके अपना जो कृषक भाई बहन छे वह कहीं आपनी जो उपज छे उमें कहीं अंतर ला सके छे और कितनी बढ़िया वा में फसल पा सके छे। तो आपको घणो घणो धन्यवाद आशा बहन।
1: और देखो सा, अब इतनी सारी चौकी चौकी बात का डॉक्टर अनिता पारिक जी बताया भी, तो इताई याना भी आप गीत सुना वेला और अदिति जी आप भी सुनवा की इच्छा रांग तो ही होला
5: जी सा,
1: और काश्तकार भाई तो सुनेला ही सुनेला, तो आओ सा सगला ही मिलर सुनायो गीत।

0: अदिति जी, उम्मीद छे गीत तो आपने भी पसंद आयो होलो और कार्यक्रम सुनवाड़ा सगड़ा भाई बहना ने भी पसंद आयो ही होलो।
1: जी सर, मैं हामी भर दू छू वहाँ की तरफ से भी।
0: और अब स्टूडियो की घड़ी इशारो कर रही छे कि आज को जी को कार्यक्रम छे किसान वाणी को वो पूरा होतो जा रहे छे, पर जाबा से पहले आपने यही कहबो चावला काश्तकार भाया कि आप अबार को जो मौसम छे उनको भी पूरा ध्यान राखो, समय समय पर मौसम विभाग की जो सूचनावां होवे छे वाने मद्देनजर राखता हुए ही आपका खेती बाड़ी का जो कार्यक्रम छे, काम छे, जो योजना छे उन्हें संपन्न करो ताकि आप कोई भी आर्थिक नुकसान न उठा पाओ और आपका जो खेती बाड़ी, पशुपालन और बागवानी का जो काम छे वे समय सारू हो सके। और अब दिराओ आज्ञा आशा ने
1: और अदिति ने
0: चालान करा राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। संध्या के 7:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 अंतर्गत दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे भारत बनाम बांग्लादेश क्रिकेट मैच के पहले सेमीफाइनल का आंखों देखा हाल।
1: बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
2: दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑफ द फर्स्ट सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ऑफ द वुमेन्स एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026। बिफोर दैट लिसन टू अ स्पेशल प्रोग्राम फर्स्ट बॉल 20।
3: फर्स्ट बॉल 20।
4: नमस्कार, फर्स्ट बॉल 20 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। चलते हैं सीधा टॉस के लिए।
5: हरमन, यू गॉट द कॉइन, सेंड इट फ्लाइंग।
6: हेड, हेड इज द कॉल,
5: हेड्स इज द कॉल, हेड्स इट इज। निकास सुल्ताना ज्योति, कांग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग योर फर्स्ट टॉस ऑफ द टूर्नामेंट। व्हाट्स योर डिसीजन एंड व्हाई?
7: वी वांटेड टू बोल फर्स्ट, सीइंग द कंडीशन एंड वी रियली वांटेड टू गिव आवर बॉलर्स दैट फ्री विद दैट दे कुड बोल।
5: इन टर्म्स ऑफ

0: India versus Bangladesh rivalry. Are you looking to channel the memories of 2018, such a glorious chapter that is?
1: I think it's just a new day. We're just looking forward to play our good cricket here because it's been a long time. After a year, we're definitely getting some good memories from there. But it's an important day for all of us because it's our last game in this tournament. It could be not the last our game because if we could do well here, maybe we might get another chance. So we just wanted to play as a whole unit and wanted to execute ourselves in the middle.
0: Any changes to your starting 11?
1: No, we are playing the same 11.
0: What sort of a total are you looking to restrict the opposition to?
1: See, we have been playing here, so we look to, we wanted to restrict them in a total that we really wanted to chase.
0: Thank you very much. Go well.
1: Thank you so much.
0: In comes Harmanpreet Kaur. Harman, had you won the toss, what would you have done?
2: Well, to be honest, we thought of batting first only because we thought having runs on the board will give us a lot of confidence and good we got batting first.
0: The overall head-to-head between India and Bangladesh is firmly in favor of India in T20Is, but they did push you to the brink in the past. What do you make of this matchup?
2: Yeah, definitely. I think T20 format is like that. You can't take any team lightly, and result is always a history, and today is a fresh game, and we have to go with a positive approach.
0: Any changes to your playing combination?
2: No, we're going with the same 11.
0: In terms of putting on a total now on this surface, what's a good total you'd be aiming for?
2: Well, I've been telling that you know, this pitch is a little tricky. You can't really set something in your mind. But I think let's see how our batting power play goes and accordingly we'll see how much, you know, we can put on the board.
0: Go well.
2: Thank you.
0: Well, the news from the center is Bangladesh have won the toss and decided to bowl first.
3: रेत की गर्द में छिपे हैं कई इतिहास, लेकिन आज दुबई के इस खूबसूरत मैदान पर एक नई दास्तान लिखी जानी है। भारत बनाम बांग्लादेश, पहला सेमीफाइनल। एक तरफ है भारत की वो आक्रामकता जिसने एशिया पर राज किया, तो दूसरी तरफ है बांग्लादेश का वो निडर हुनर जो बड़ी से बड़ी चुनौती को धूल चटाने का दम रखता है। ये सिर्फ सेमीफाइनल नहीं है, यह है स्पिन बनाम स्पिन, धैर्य बनाम आक्रामकता और हर गेंद पर बदलती कहानी। आज एक टीम फाइनल का टिकट कटाएगी और दूसरी टीम के सपनों पर लगेगा विराम। शुरुआत हो चुकी है आपके पसंदीदा रेडियो प्री मैच शो फर्स्ट बॉल 20 की। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव, मेरे साथ हैं मेरी को एंकर साक्षी मानपाल और दो विशेष मेहमान बीसीसीआई कोच रविंदर सिंह और खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
4: Thank you so much, Anand. Now, to quickly take the discussion forward, Mona, I'll start with you. The tournament so far has been very spinner-friendly. A total of 123 wickets been taken at an economy of 4.81 by spinners. India lost the toss today. Do you think it was a good toss to lose or a good toss, or we can change the favours?
5: देखो, अभी तक जितने मैचेस हुए हैं, हरमनप्रीत ने खुद टॉस के समय बोला कि अगर वो भी टॉस जीतती तो शायद बैटिंग ही चुनती, क्योंकि 12 मैच हुए हैं और 8 बार जिस टीम ने पहले बैटिंग की है वो जीती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि टारगेट यही होगा कि बड़े से बड़ा स्कोर बना जाए। और जैसे इंडियन स्पिनर्स की बात है कि जो इंडियन स्पिन बॉलिंग यूनिट है सबसे सक्सेसफुल रही है अभी तक इस टूर्नामेंट में, 21 विकेट कुल मिलाकर इंडियन स्पिनर्स ने लिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्पिन फ्रेंडली विकेट पर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच और टूटेगी, तो और हमारे स्पिनरों को फायदा मिलेगा।
3: रविंदर, अगर भारतीय बैटर्स की बात करें तो स्मृति मानधना सबसे सफल बैटर रही हैं इस टूर्नामेंट में। 3 मुकाबलों में 178 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 152 रन उनके नाम हैं और उनकी ओपनिंग पार्टनर शेफाली के नाम 3 मुकाबलों में 104 रन हैं। लेकिन पावर प्ले में जो बड़ा थ्रेट है वो है मारूफा अख्तर। जिस तरीके से वो स्विंग करती हैं और लीड स्विंग कहीं ना कहीं भारतीय बैटर्स के लिए परेशानी का सबब हो सकता है।
6: बिल्कुल ठीक बोला आपने कि ये जो नॉर्मली तो इंडियन जो हमारी प्लेयर्स हैं उनको ये आदत काफी एक्सपीरियंस है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वगैरह सीरीज खेल चुके हैं, लेकिन जब मारूफा जो आपने बताया बॉलिंग में, वो मारूफा जो बहुत ही अच्छा स्विंग है उनके पास और हर मैच में विकेट निकाल रही है। सबसे बड़ी बात है कि इनिशियली वो ब्रेक थ्रू दे रही है। इन्हीं बॉलर से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई बॉल बांग्लादेश का बॉलिंग अटैक काफी बेटर है।
4: राइट, मुना आपके पास आती हूँ, स्पिन के एंगल पे थोड़ा और बात करते हैं, बिकॉज बांग्लादेश के पास स्पिनर्स ज्यादा है कंपेयर टू आर स्पिनिंग ट्रायो। अगर हम अपनी बात करें, भले ही हम बल्लेबाजी पहले कर रहे हैं लेकिन द विकेट इज स्लो। सो श्री चरणी, दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, 3 जो हमारे स्पिनर्स का ट्रायो है, इनके ऊपर आज ज्यादा प्रेशर रहेगा कि भारत जो भी टोटल बनाए उसको डिफेंड कर सके। हाउ डू यू लुक एट दैट?
5: देखो, तीनों दीप्ति की अगर हम बात करें, श्रीचरणी की बात करें तो अब वो सीजन प्लेयर है। दीप्ति ऑलरेडी 8 विकेट ले चुकी है इस टूर्नामेंट में। थाईलैंड के खिलाफ उन्होंने 3 विकेट लिए थे, उसके बाद हांगकांग के खिलाफ भी उन्होंने 3 विकेट लिए।

0: और पिछले मैच में भी उन्होंने दो विकेट लिए, तो वो एक मैच विनर प्लेयर है, उन पर आप रिलाय कर सकते हैं। और दूसरा श्री चरणी, पिछले वर्ल्ड कप में हमने देखा कि श्री चरणी बड़े मैचों का प्रेशर कितने अच्छे तरीके से ले पाती हैं, और जिस तरह से उनका प्रदर्शन यहाँ रहा है, खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ 4 ओवर में 7 रन देकर 3 विकेट उन्होंने चटकाए थे। और पाकिस्तान के खिलाफ मैच कितना बड़ा होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ स्टेक पर होता है। ऐसे प्रेशर मैच में इतना कमाल का उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि श्री चरणी हमारे लिए वो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है।
1: रविंद्र, थोड़ी चर्चा अगर भारतीय बैटर्स की करें, स्मृति और शेफाली के बल्ले से तो रन आए हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर अभी भी वो समस्या का सबब बना हुआ है। हमने प्रतिका रावल को फर्स्ट डाउन ट्राई किया, डेब्यू था उनका T20I में, लेकिन उनका बल्ला चल नहीं पा रहा है। उसके बाद हरमन को भी हमने देखा कि संघर्ष करती नजर आ रही हैं। इस टूर्नामेंट में ऋचा घोष का बल्लेबाजी क्रम भी बदला गया, उनको टॉप ऑर्डर में भेजा गया, हरमन के ऊपर आई, वो भी प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। क्या एरिया ऑफ कंसर्न है इंडियन मिडिल ऑर्डर?
2: देखिए, मुझे नहीं लगता इंडियन टीम इतनी बैटिंग इतनी सॉलिड है, इतनी डीप तक बैटिंग कर रही है, तो खासकर जब अगर आपके पास स्मृति और शेफाली जब ओपन कर रही है, उसके बाद आपके पास हरमनप्रीत और उसके इतने लगी हुए, तो अगर ये जो हरमन जो स्मृति ने जो जब नॉर्मली क्या स्मृति जब बड़े बड़े अटैक सेंचुरी वगैरह बना लेती हैं, तो नीचे के प्लेयर्स के पास ज्यादा मौका मिलता नहीं है। और अभी ये जो दोनों टीमें थी हांगकांग और ये जो बहुत वीक टीमें थी, तो वो मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा टेस्ट करा पाए होंगे, और वो फोकस भी मुझे लगता नहीं है जो इंडियन टीम का जो कंसंट्रेशन लेवल है इस पे होगा। लेकिन आज का जो मैच है, मुझे लगता है कि आज हरमन और स्मृति दोनों ही अपनी पूरी फॉर्म के साथ दिखाई देंगे आपको।
3: जी, और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हमारी कॉलिंग लाइन खुल चुकी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं 0112342108 4 0112342108 5। और ये कहते ही हमारे साथ एक श्रोता भी अभी इस वक्त लाइन पर है। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या बात है फारूक जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, धन्यवाद कॉल करने के लिए। बताएं क्या पूछना चाहते हैं। जी चलिए, आपके सवाल को सीधे हमारे एक्सपर्ट के पास लेके चलते हैं। मोना, क्या आपको लगता है कि 2000 मैं थोड़ा सा सवाल को बदल देती हूँ हल्का सा, 2018 की भारतीय टीम और 2026 की भारतीय टीम में आप क्या बदलाव या चेंजेस देखते हैं, और आज भारत की क्रिकेटिंग विमेंस टीम को देख के आपको लगता है दैट आर वी स्टैंडिंग इन अ मच मोर स्ट्रॉन्गर सिचुएशन टू डिफीट बांग्लादेश?
0: देखिए, 2018 का अभी हम हेड टू हेड रिकॉर्ड देख रहे थे दोनों टीमों का, 24 मुकाबले आपस में हुए हैं T20 में और 21 बार भारत जीता है। और 2018 का वो एकमात्र एशिया कप था जब बांग्लादेश ने पिछली बार भारत को उसमें हराया था और 112 रन पे भारत के 9 विकेट निकाल दिए थे। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो भारत का दबदबा रहा है, लेकिन बांग्लादेश की टीम भी काफी इंप्रूव हुई है। तब की बांग्लादेश टीम और अब की बांग्लादेश, इतने सालों में आप देखिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को वनडे क्रिकेट में उन्होंने स्केयर दिया है, उसके अलावा हायर रैंक्ड पाकिस्तान को हराया है। और इस टूर्नामेंट में भी जैसे अभी बात हो रही थी मारूफा अख्तर की, बहुत ही कमाल की एक फास्ट बॉलर उनके पास है, हालांकि हम बार बार बात कर रहे हैं स्पिन फ्रेंडली है पिच, लेकिन मारूफा ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है ओपनिंग स्पेल में, वो बहुत बड़ा एक थ्रेट है किसी भी टीम के लिए। और अगर यहाँ पर वो शुरुआती विकेट जल्दी निकाल लेती हैं, जो हमारी इनफॉर्म बैट्समैन है स्मृति मांधना, अगर वो जल्दी विकेट निकाल लेती है, तो यहाँ बिल्कुल भारत पर दबाव बनाने में कामयाब हो सकती है। तो जैसे हरमनप्रीत ने कहा कि आप किसी भी टीम को यहाँ इस स्टेज पर हल्के में नहीं ले सकते, ये सेमीफाइनल मुकाबला है। तो हाँ, दोनों टीमों के बीच मुझे लगता है कि ये 2018 से अब तक स्थितियां काफी बदली हैं, और मध्यक्रम की जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो एक वो वीक लिंक नजर आता है भारतीय टीम में। वर्ल्ड कप आपको याद होगा कि जब हम नॉकआउट नहीं पहुंच पाए थे T20, तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण था कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो है, अच्छी स्टार्ट के बाद मिडिल ऑर्डर चल नहीं पाया था, तो वो उस पर थोड़ा सा कंसर्न होगा और वहाँ बांग्लादेशी गेंदबाजों से भारत को बचकर खेलना होगा।
1: मारूफा की बहुत चर्चा हो रही है और कुछ कहानियां बहुत प्रेरित भी करती हैं, कुछ वैसी ही कहानी मारूफा की भी रही है। उनके पास क्रिकेट खेलने के लिए किट नहीं था, वो अपने आसपास के लड़कों के साथ खेलती थी, ताने सुनती थी। और एक और रोचक बात है कि उनके पिता किसान हैं, वो खेतों में जाती थी, जुताई का काम

0: करती थी जिनसे उनके शोल्डर्स मजबूत हुए और फिर वो तेज गेंदबाज बनी और बांग्लादेश के लिए कई अहम विकेट इस टूर्नामेंट में चटका चुकी हैं।
1: और एक और बात है कि उनके फेवरेट प्लेयर, उनके आइडल जो है वो हार्दिक पांड्या।
0: जी बिल्कुल। रविंदर, अगर बांग्लादेश की थोड़ी बात करें, स्पिन में काफी ज्यादा अनुभव भी है और हमने देखा कि काफी लो टोटल भी डिफेंड किया, यूएई के साथ 103 रन बनाए और एक समय ऐसा लग रहा था कि वो मैच फंस गया है, लेकिन उसके बावजूद उस टोटल को डिफेंड किया। श्रीलंका के साथ जो उनका मैच था उसमें श्रीलंका के टॉप ऑर्डर को पूरी तरीके से उन्होंने नेस्त नाबूद कर दिया था। नीलाक्षी ने आके निचले ऑर्डर में रन बनाए और तब श्रीलंका वो मैच जीत पाई। भारत के लिए कितना थ्रेट देख रहे हैं?
2: देखिए, बांग्लादेश की जो स्ट्रेंथ है उनकी बॉलिंग है, चाहे आप मारूफा कर लिए, रबिया कर, नाहिदा कर लीजिए, इनकी जो उन्होंने विकेट्स निकाली हैं, आज नॉर्मली जो कंपटीशन है बांग्लादेश की बॉलिंग और इंडियंस की बैटिंग का मेन सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट रहेगा। और इसमें क्या है, इन्होंने जान टॉस जीत के हमें पता, मुझे लग रहा था कि ये फील्डिंग ही करेंगे, क्योंकि इंडिया की जो बैटिंग है अगर आप उनको बाद में चेस कराएंगे तो वो डेफिनेट है कि वो आप उनके लिए स्कोर कितना खड़ा करें वो टारगेट करना मुश्किल हो जाएगा। बेटर ये है कि आप उनको प्रेशर में डालिए। इनके जो इंडिया की बैटिंग है, थोड़ा आप जैसे आपने बताया कि बीच में स्मृति को छोड़ के ज्यादा लोगों भी फॉर्म, उनको चांस भी नहीं मिल पाया बैटिंग करने का और वो पूरी फॉर्म में भी नहीं है, टच में नहीं है। और आज छह नंबर के बाद आपके पास सब ऑलराउंडर्स के बॉलर्स दिख रहे हैं, ये अच्छा चांस है इनके पास स्पिनर्स के पास। अगर ये विकेट्स निकालते हैं स्पिनर्स, हमारे बांग्लादेश के स्पिनर विकेट निकालते हैं, या मारूफा एक आध जैसे उनकी अभी हर मैच में उन्होंने जो पावर प्ले में विकेट लिए हैं, तो एक आप बहुत इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलने जा रहा है आपको।
3: राइट, मोना आपके पास आती हूँ। शेफाली वर्मा और स्मृति के बाद जेमिमा रॉड्रिगेज एक ऐसा नाम है जो भारत को बहुत ज्यादा एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है मिडिल ऑर्डर के अंदर, बट वो आज खेल नहीं रही है हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते। डू यू थिंक इट्स अ लॉस दैट इज गोइंग टू पिंच अस टुडे इन सच क्रूशियल मैच?
4: देखिए, जेमिमा रॉड्रिग्स की इंजरी की वजह से ही प्रतिका रावल का डेब्यू हुआ है और तीन इनिंग्स में 36 रन ही बना पाई है। उन पर काफी दारोमदार था, लेकिन पिछली बार जब टूर्नामेंट हुआ था, भारत ने जीता था, जेमिमा टॉप रन गेटर रही थी उस टूर्नामेंट में। लेकिन यहां पर निश्चित तौर पर भारत को उनकी कमी यहां खल रही है, क्योंकि जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि टॉप ऑर्डर पे रन बनने के बाद जो मिडिल ऑर्डर है, आप चाहे थाईलैंड के खिलाफ देख लीजिए, हरमनप्रीत कौर 5 रन, फुलमाली 13 रन और रिचा खाता भी नहीं खोल पाई, तो मिडिल ऑर्डर में जेमिमा की कमी निश्चित तौर पर यहां खल रही है टीम को।
0: जी हां, फर्स्ट बॉल 20 में हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए और क्या जानना चाहते हैं आप। जी बताएं क्या जानना चाहते हैं। जी बहुत सारे सुझाव रहते हैं क्रिकेट प्रेमियों के जहन में, लेकिन एक सवाल हरमन से जुड़ा था, नई कप्तान चाहते हैं।
2: देखिए, एक्सपीरियंस होता है, अपने मेंस में भी नए कप्तान बना के देखे हैं, तो बेटर है कि जितना अभी क्रिकेट बचा है उनमें काफी, चाहे वो जो एक्सपीरियंस है आप उसको यूटिलाइज कीजिए, इतने सालों की इन्वेस्टमेंट कीजिए की है आप लोगों ने, तो उसको इतना जब वो पीक पे आ गई है, जब वो बिल्कुल आपके सामने सब कुछ परफॉर्म करके दे रही है, अब अभी जब टाइम आएगा अपने आप ही चले, अपने आप ही होगा। जैसे स्मृति भी आपने देखा बीच में कप्तानी, कई मैचेस में कप्तानी भी वाइस कैप्टन रही है, वो करी है, तो अभी उनमें काफ दम है। मुझे लगता है कि जे सेलेक्टर्स ने अभी तक जो भी डिसीजन लिया ठीक लिया अभी तक।
3: राइट, मुना आपके पास आती हो। अगेंस्ट बांग्लादेश अगर हम देखें तो वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल के अंदर भारत के आंकड़े 21-3 इन फेवर ऑफ इंडिया, बहुत ओवरवेलमिंग आंकड़े हैं। एंड दूसरी चीज, इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर भी अगर हम देखते हैं एशिया कप के अंदर, तो भारतीय टीम ही वो इकलौती टीम है जिसने 2 बार 150 से ज्यादा का स्कोर बनाया हुआ है। नाउ गिवन द फैक्ट दैट ये स्लो टर्निंग विकेट है, भारत टॉस हारा है, पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, काफी सारे पॉइंटर्स हैं, मतलब शुरुआत में हमारे दो एक पार्टनरशिप है जो हमें चाहिए, मिडिल ऑर्डर स्थिर है। Do you still think that India can get their way away from Bangladesh in this game by putting on a commanding score on board today?
4: 100%, क्योंकि देखिए आपके पास एक इनफॉर्म बैटर है स्मृति, जो इनिंग वो खेलकर यहाँ आई है, निश्चित तौर पर उनका मनोबल काफी बड़ा होगा और 60 39 रन दूर हैं वो टी

0: ट्वेंटी क्रिकेट में हाईएस्ट रन गेटर बनने से और पिछले भी मैच में वो मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं। इसका मतलब है कि उनका बल्ला चल रहा है। शेफाली एक अच्छी इनिंग खेल चुकी है। ऋचा घोष से ड्यू है एक अच्छी पारी और जैसे अभी हरमन की बात हम कर रहे थे, 5 रन और 10 रन बनाए उन्होंने, तो हरमन को यहाँ पर जरूर एक कप्तानी पारी मिडिल ऑर्डर में खेलनी होगी। प्रतिका रावल को साबित करना होगा कि जिस प्लेयर की रिप्लेसमेंट के तौर पर वो आई है वो चयनकर्ताओं का फैसला सही था। तो यहाँ भारतीय मध्य क्रम और शीर्ष क्रम के सामने चुनौती कि उनको मारूफा का सामना करना है, तो यहाँ काफी कुछ स्टेक पर है। और मुझे लगता है कि इतना एक्सपीरियंस इस कोर ग्रुप, आप देखिए वही है, काफी समय से वही है, तो इतनी आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग भी है और इतना एक्सपीरियंस भी है कि आपको यहाँ पर यही तो मंच होते हैं परफॉर्म करने के लिए, यहाँ परफॉर्म नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे।
1: कार्यक्रम में एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग, बताएं क्या जानना चाहते हैं और कहाँ से बोल रहे हैं आप। जी जी बताएं। सबको उम्मीद है कि स्मृति दूसरा शतक लगाएं, वैसे भी रिकॉर्ड बुक में कई पन्ने वो जोड़ चुकी हैं पिछले मैच में। रविंद्र
2: देखिए, पहले जो मैचेस हुए हैं आप देखिए, हांगकांग और थाईलैंड वैसे जहां नॉर्मली टीमें थी, इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है खेलने का जो लेवल है आप देखिए, इनसे कंपीट करना मुझे लगता नहीं कि इनके अगेंस्ट जो 100 करके भी शायद उनको 100 तो 100 ही होता खैर, लेकिन इतनी खुशी मिल पाएगी। बेटर यह जैसे बांग्लादेश और फाइनल्स में आप खेलते हैं, तो इसमें आपको सबसे बड़ी बात है जब अच्छी टीमों से खेलने जाते हैं तो वहां पे आपको तैयारी पूरी होनी चाहिए। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इनके जो बेंच स्ट्रेंथ है इंडिया की, वहां पर डाउट पहले भी लगता है, कई मैचों में देखा मैंने। आप देखिए जो इनके चार जो बाहर बैठे होते हैं उसमें 3 बॉलर होते हैं और एक विकेट कीपर तो आपको रखना ही पड़ता है उसके लिए। आप दूसरी टीमों के आप इवन आप बांग्लादेश के भी देखेंगे, एक ऑलराउंडर है, एक बैट्समैन है, एक बॉलर है, ये हर वैरायटी है। यहां पे आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपका कोई बैट्समैन कोई बैटर आपको कोई फिट लगती है उसकी कोई इंजरी, पहले भी प्रतिका रावल को मेरे ख्याल से लगी थी, बाद में शेफाली को बुलाया था, कोई इस तरह था। हाँ। कोई बैटर आपके पास 15 में होता ही नहीं है कि आप एक फील्ड जाए दूसरा, आपको उनको खिलाना ही खिलाना है। तो आपको बेंच स्ट्रेंथ पे थोड़ा जोर देना पड़ेगा इंडियंस को कि आपके पास बाद में एक या दो एक बैटर होना चाहिए कि अगर कोई प्लेयर फेल होता है तो उसके बदले कोई तो सब्जेक्ट इंजर्ड होता है कोई सब्जेक्ट बुलाना पड़ा, ये नहीं कि हमें घर से फोन करके उसको बुलाना पड़ता है उसको।
3: राइट, बेंच स्ट्रेंथ क्रिएशन की बात हो रही है, फ्रॉम बैटर्स टू बोलर्स की तरफ मैं थोड़ा सा चलूंगी। मोना, टुडे माइट बी अ गुड डे फॉर इंडियन, स्पेशली अगर हम बात करें श्री चरणी के लिए, बिकॉज शी इज लिटरली स्टैंडिंग आउट देयर टू टेक 50 विकेट्स एक कैलेंडर ईयर के अंदर T20 इंटरनेशनल में। लेकिन अभी फिलहाल वो सिर्फ 2 विकेट शॉर्ट हैं पूनम यादव के उस रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए 2018 में जो उन्होंने बनाया था, विच वॉज कि उन्होंने 35 विकेट्स ले लिए थे। और आज आपको लगता है क्या वो दिन होगा जब श्री चरणी उस आंकड़े को पार कर जाएंगी?
0: देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि श्री चरणी बड़े मैचेस की प्लेयर हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन प्लेयर है और सामने कौन टीम है, वो बड़ी टीमों की ख्याति से डरती नहीं है। और सेमीफाइनल फाइनल मैच में आपको ऐसे ही निडर खिलाड़ियों की जरूरत होती है, चाहे बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो। और बड़ी एक खास बात है, विशाखापट्टनम से आती हैं वो, और मेरी उनसे जब एक बार इंटरव्यू हुआ था तो मैंने उनसे पूछा था कि उनकी ये फियरलेसनेस का क्या राज है, तो कहती मुझे जब मैं गेंदबाजी करती हूँ तो दिखता ही नहीं कि सामने कौन है, मुझे सिर्फ फोकस अपनी बॉलिंग पर रहता है। तो इतना ज्यादा उनका फोकस है, और जैसे पाकिस्तान के खिलाफ मैंने बताया ही आपको कि जबरदस्त परफॉर्मेंस करके आई है, और उसके बाद से भारत को एक अच्छा खासा रेस्ट भी मिल गया है। तो बांग्लादेश की टीम जो है वो अभी खेल कर आई है, भारतीय टीम ने लास्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, तो मुझे लगता है रिफ्रेश होकर नई एनर्जी के साथ जो हमारी बॉलिंग यूनिट है, और खासकर आपने श्री चरणी की बात की, यहाँ अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा।
1: एशिया कप के ग्रुप स्टेज में अब तक 12 मैच खेले गए हैं और 12 में से 8 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। 9 बार टॉस जीतने वाली टीम के कप्तान ने पहले गेंदबाजी चुनी है। रविंद्र जी, इस पूरे टूर्नामेंट में बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए हैं, सवाल यह है कि क्या पिच वैसी है, गेंद फंस कर आ रही है, स्पिनर्स फ्रेंडली पिच है, या फिर बैटर्स जो है वो शॉर्ट सिलेक्शन के स्तर पर थोड़े कमजोर साबित हुए?
2: देखिए, ये जो आपका लेवल देखिए, जो ऑल ओवर वर्ल्ड के लेवल पर इसको देखेंगे आप, तो यहाँ पे इंडिया जो एक नॉर्मल एक टीम है, जो वो भी आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया जब इंग्लैंड अफ्रीका वगैरह खेलती है तो इंडिया वहां पर वर्ल्ड कप में फाइनल से पहुंचना मुश्किल लगता है। ये जो लेवल

0: इसमें हांगकांग, थाईलैंड, ये चीजें इस लेवल पे मुझे आप बैटर्स को आप मुझे लगता नहीं कि इनके साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये जो टीम हमारी स्मृति है, स्मृति ने अपने रन बनाई है, जो दो रन बना रही है, और बाकी जो बैटर हैं जैसे उनको मौका मिलेगा मुझे लगता है वो भी रन बनाएंगी। मुझे लग ज्यादा इनमें क्योंकि जो बाकी जो बैटर्स हैं वो ऐसे लग नहीं रहे कि आपको ऑल ओवर रन बना के देंगे आपको।
1: ओके, अगर हम बात करें मोना, इन भारतीय महिलाओं का जो एशिया कप के अंदर रिकॉर्ड अभी तक करा है वो बहुत ही ओवरवेलमिंग एंड स्ट्रॉन्ग है। मतलब हम अगर देखें 7 times इस टूर्नामेंट को उठा चुके हैं, उसके साथ साथ हमने 3 बार तो जब से T20 इंटरनेशनल का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ तब जीता हुआ है, 9 times हम फाइनल्स गए, विच इज अ क्लीन रिकॉर्ड। सो ओवरऑल अगर हम बात करें टुडे स्पेशली फॉर द इंडियन वुमेन्स टीम, डू यू सी अ प्लेस वेयर बांग्लादेश कुड कैच अस ऑफ गार्ड एंड गेट अ विन ऑन द साइड?
2: देखिए T20 अनप्रिडिक्टेबिलिटी का गेम है, सो हम कभी भी श्योर होके ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये जीतेगा और ये हारेगा। हमने देखा है कि अपसेट्स होते हैं इस फॉर्मेट में, तो अब लेकिन जो भी हम कयास लगाते हैं वो पिछले परफॉर्मेंसेस, टीम कंपोजिशन और इस टूर्नामेंट के रिकॉर्ड

0: win on their side.
1: देखिए T20 अनप्रिडिक्टेबिलिटी का गेम है, सो हम कभी भी श्योर होके ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये जीतेगा और ये हारेगा. हमने देखा है कि अपसेट्स होते हैं इस फॉर्मेट में, तो अब लेकिन जो भी हम कयास लगाते हैं वो पिछले परफॉर्मेंसेस, टीम कंपोजिशन और इस टूर्नामेंट के रिकॉर्ड के आधार पे लगाते हैं. तो अभी तक फॉर्म, प्लेयर्स के एक्सपीरियंस और ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर देखा जाए तो मुझे लगता है कि भारत का पलड़ा निश्चित तौर पर भारी है. और जैसे रविंदर सर ने कहा कि ये इंडियन बैटर्स और बांग्लादेश के बॉलर्स के बीच का मुकाबला है, और अगर हम पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं और कहीं भी हम 150 से ऊपर बनाते हैं, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में दो ही बार 150 रन से ज्यादा बने हैं, तो कहीं हम बनाते हैं तो बांग्लादेश की बल्लेबाजी उतनी मजबूत नहीं है जितनी अच्छी हमारी गेंदबाजी है, तो फिर हम वहां पर वो प्रेशर बना सकते हैं.
2: थोड़ी चर्चा भारतीय फूलमाली पर भी कर लेते हैं. बहुत पहले डेब्यू किया उन्होंने, बहुत मौके नहीं मिले, लेकिन जब मौके मिले तो शायद इस अवसर को बहुत कैश नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि जमीमा चोटिल हैं जिस कारण प्लेइंग 11 में उनको जगह मिल रही है. क्या उन पर थोड़ा दबाव होगा?
3: बिल्कुल. देखिए, एक तो इस नॉर्मली के जो पहले चांस मिला 31 इयर्स के आसपास उनकी जो नॉर्मली एज, जब बीच में उनको 10 मैच मिले, मेरे ख्याल से 80-90 रन ही, ज्यादा रन भी नहीं बना पाई. इस टीम में आपको आने के लिए, देखिए अब ये जो लेवल पे आने के लिए आपको कंपीट करना पड़ेगा, और ये जो इस उम्र में भी आपको ये चांस मिला भाई, इसका मतलब वो काफी डोमेस्टिक लेवल पे उन्होंने अपने परफॉर्मेंस दी है. तो अगर ये, लेकिन ये इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता. देखिए इनको इस समय ये ऐसा लेवल है आपको कि इस लेवल पे आके आपको रन बनाने पड़ेंगे, और अभी वो इंडिया की जो बैटिंग है बीच में वो आप नंबर 5 पे खेल रही हैं. देखिए अगर वो परफॉर्म नहीं, अगर बीच के 2 विकेट निकल जाती हैं तो उन पर बहुत बड़ा प्रेशर आ सकता है. इसमें
2: क्या स्ट्रैटेजी होगी मोना, जब अब टॉस हारने के बाद टीम इंडिया पहले बैटिंग के लिए जाएगी, तो कोच हैं, कप्तान हैं, क्या सोच रहे होंगे? पहले पावर प्ले को किस तरीके से टैकल करें, क्या ब्रैकेट बनाया होगा, 40-50 रन बिना किसी विकेट खोए, या फिर आप तेज शुरुआत करना चाहेंगे? क्योंकि 8 से 15 ओवर के बीच हमने देखा है कि रन बहुत तेजी से नहीं बनते हैं.
1: लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जो आपको ये बात याद रखनी होगी कि जो ओपनिंग स्पेल डालने आएंगी वो मारूफा अख्तर होंगी, और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई जोखिम लेना चाहेंगे. वो विकेट बचाकर पावर प्ले पे खेलकर उसके बाद स्पीड अप करना चाहेंगे. मुझे लगता है मारूफा के ओवर्स को वो संभल कर खेलेंगे, क्योंकि वो लगातार ब्रेक थ्रू, आपको याद होगा श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने चामरी अट्टापट्टू को 1 रन पे आउट कर दिया था, जबकि वो कितनी शानदार बल्लेबाजी हम सभी को पता है. तो यहाँ पर हमें ऐसी किसी दुर्घटना से बचना होगा कि कहीं हमारे जो ओपनिंग बैट्समैन है जो इनफॉर्म है वो पावर प्ले के अंदर ना चले जाए.
2: दूसरी तरफ अगर टोटल की बात करें रविंद्र, तो जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि 150 से ज्यादा टोटल दो ही बार बने और दोनों बार टीम इंडिया ने बनाए हैं, क्या टोटल जहन में होगा जब आप सेमीफाइनल में पहले बैटिंग के लिए जा रहे हैं?
3: देखिए टोटल तो तब रहेगा जब आपके विकेट्स बची रहेंगी. आपके पास अगर ये विकेट्स निकलते हैं, बांग्लादेश, मैंने पहले बोला आपको बांग्लादेश की बॉलिंग काफी स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग है इस समय, बॉलिंग मारूफा जो बहुत अच्छी बॉलिंग भी कर रही है, स्पिनर्स भी अच्छा बॉल डाल रहे हैं, अगर ये विकेट स्मृति और शेफाली के विकेट से निकाल सकते हैं तो हरमनप्रीत और जो आपके वो हैं वो उतने प्रेशर में नहीं है, ना उतने रन बना सकते हैं, तो इंडियन बिल्कुल बैकफुट पे आ जाएंगे. इस समय स्मृति को और शेफाली को रन करने बहुत जरूरी है, और 150 तो होने चाहिए सेमीफाइनल में अगर आपको जीतना.
2: चलिए सेमीफाइनल है, दबाव है, लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक है, यानी फाइनल का टिकट. अब बातें खत्म हो चुकी हैं और शुरू होने वाला है मुकाबला. फर्स्ट बॉल 20 में इतना ही, आप बने रहिए आकाशवाणी के साथ. नमस्कार.
4: फर्स्ट बॉल 20. मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास.
5: स्वागत आप सबका इस कवरेज के अंदर. भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सामना बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम से इस सेमीफाइनल के अंदर, पहला सेमीफाइनल इस विमेंस एशिया कप का, और दिलचस्प मुकाबला रहने की पूरी उम्मीद भारतीय टीम की. जब आप आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो सबसे ज्यादा बार खिताब जीतने वाली टीम भारतीय महिला क्रिकेट टीम रही है विमेंस एशिया कप की. वहीं बांग्लादेश, याद रखिए आज से 8 साल पहले जब ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया था तब खिताब जीतने में कामयाब रही थी। तो दिलचस्प रहेगा ये

0: कॉन्टेस्ट किस तरह से आज जाता है, थोड़ी सी हिस्ट्री इन दोनों टीम्स के बीच में जरूर है, लेकिन अगर आप फॉर्म पे जाएं तो टेबल टॉपर्स रही थी भारतीय टीम, और अब उनका सामना दूसरे ग्रुप की सेकंड प्लेस्ड टीम यानी बांग्लादेश से इस पहले सेमीफाइनल में, और उम्मीद ये कि फाइनल्स में अपना स्थान पक्का करने में कामयाबी मिलेगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं रमन भनोट, और मेरे साथ मौजूद अंग्रेजी में कमेंट्री करने के लिए नीलाद्री सेन, और साथ साथ हमारे स्कोर भगवत सिंह रावत और हमारे स्टैटिस्टिशियन मनोज कुमार। स्वागत आपका नीलाद्री।
1: थैंक यू रमन, गुड इवनिंग रमन एंड गुड इवनिंग लिसनर्स। वेल, द फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ द वुमेन्स टी20 एशिया कप इज अबाउट टू स्टार्ट एंड इंडिया विल बी प्लेइंग बांग्लादेश। एंड वेल, इन ऑल फेयरनेस, इंडिया will be starting as overwhelming favorites. Well, Ramana, what's your take on that?
0: इसमें कोई दो राय नहीं है जी। जब आप रिकॉर्ड की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम जब आप वुमेन्स एशिया कप के पुराने आंकड़ों पर नजर डालते हैं, 7 बार खिताब जीता, बांग्लादेश केवल 1 बार टाइटल जीतने में कामयाब रही, और जो 9 संस्करण हुए हैं इस टूर्नामेंट के उसमें 7 बार भारतीय टीम टाइटल विजेता रही है, 1 बार बांग्लादेश ने खिताब जीता है, और जो पिछला एडिशन था 2024 का एडिशन उसमें श्रीलंका की महिला टीम खिताब जीतने में कामयाब रही थी, जहां पे उन्होंने भारत को ही फाइनल में हराया था। तो आंकड़े तो बिल्कुल भारत के हक में ही हैं इस सेमीफाइनल के अंदर भी जाते हुए। नीलाद्री, दिलचस्प बात यह कि बांग्लादेश की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दुबई की स्टेडियम की जो सतह है, मुझे लग रहा है कि ये ऐसा निर्णय शायद भारतीय टीम के हक में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपने गेंदबाजी चुनी, भारतीय बैटर्स के पास ये मौका है, रन स्कोरबोर्ड पे अगर एक बड़े क्रंच मैच में डाल दें तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी उसके बाद बांग्लादेश के लिए चेस करने में। दिलचस्प रहेगा ये कॉन्टेस्ट।
1: एब्सोल्युटली, एंड रिमेंबर, बांग्लादेश हैव नेवर बैटेड सेकंड इन दिस टूर्नामेंट सो फार, दे हैव ऑलवेज बैटेड फर्स्ट, दे हैव डिफीटेड इंडोनेशिया बैटिंग फर्स्ट बाय 71 रन्स, एंड देन दे लॉस्ट टू श्रीलंका एंड दैट वाज बाय 4 विकेट्स, and then they went on to beat UAE by 34 runs, and in that particular match UAE played quite well, particularly towards the beginning of the Bangladesh innings, and then Bangladesh steadied ship courtesy Shermin Akhtar's 38 of 31 and Nigar Sultana's 23 of 28. Otherwise, well, they would surely have been defeated by UAE the way UAE were playing. So this is the first time that Bangladesh will be chasing, and as you have said, well, India are overwhelmingly favorites in terms of not only you know, the statistics, but also keeping in view the recent form. India routed their opponents in this tournament so far. They defeated Thailand by 94 runs, they went on to defeat Hong Kong, China by 137 runs, and then they beat Pakistan by 7 wickets. Remember, Pakistan were all out 55, and the Indian team as a bowling unit has been extremely impressive. Well, if there was any blemish, if there has been some vulnerability shown, well, then it was in the batting, as we have seen a couple of mini collapses, one against Thailand and one against Pakistan. 3 wickets falling, and in against Thailand also there were a few wickets in the middle order. So that has been the only vulnerability shown by the Indians. Otherwise, well, it has been a clinical performance so far by Harmanpreet Kaur and company.
0: बिल्कुल, और उसी अनबीटन रन को इस एडिशन के अंदर जारी रखना चाहेगी ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम। वहीं आप जब बांग्लादेश की टीम की बात करते हैं इस कॉन्टेस्ट के अंदर, तो उनकी कहानी किस प्रकार की रही है उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला मुकाबला जो आपने खेला इंडोनेशिया के खिलाफ, उसके अंदर आपको जीत मिली 71 रनों से, लेकिन उसके बाद जब श्रीलंका को खेले तो 4 विकेट से हार मिली थी, और उसके बाद आखिरी मुकाबला जब आपने यूएई की वुमेन्स टीम के खिलाफ खेला तो वहाँ पर बांग्लादेश को उस मैच में 34 रनों से जीत हासिल हुई थी। तो सेकेंड प्लेस टीम रही थी ग्रुप बी के अंदर बांग्लादेश की टीम, श्रीलंका ने ग्रुप बी को टॉप किया था, इसलिए श्रीलंका का वो सेमीफाइनल मुकाबला होगा पाकिस्तान से, और वो मुकाबला है सेकंड सेमीफाइनल, क्योंकि वो सेकंड प्लेस टीम रही थी पाकिस्तान ग्रुप ए की, तो 1 प्लेस 2, और इसी वजह से ग्रुप ए की टॉप रैंक टीम भारत, उनका सामना आज बांग्लादेश की टीम के साथ हो रहा है इस मुकाबले के अंदर। मरूफा अख्तर के हाथ में है गेंद, 50 मैचेस खेले उन्होंने अपने टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर में, 43 विकेट उनके नाम है। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का जो प्रदर्शन रहा है उनका, वो

0: तीन विकेट 21 रन देकर उनका बेस्ट बॉलिंग स्पेल रहा है किसी मैच में, वो गेंदबाजी की शुरुआत करेंगी। और ये शायद बांग्लादेश की टीम का मजबूत पक्ष है, जिस तरह से वो गेंदबाजी करने की क्षमता रखती हैं, अगर शुरुआती विकेट्स निकालने में कामयाब रही तो शायद मुश्किल में डाल सकती हैं भारतीय बैटर्स को। पहली गेंद इस मुकाबले की, स्विंग मिलता हुआ और राइट आर्म ओवर द विकेट, मध्यम तेज गति की स्विंग गेंदबाज हैं अरूफा, और गेंद स्विंग करती हुई आई स्मृति मंदना की ओर, पुश किया स्मृति मंदना ने, मिड ऑफ की दिशा में सिंगल ले लिया है, तो खाता स्मृति मंदना का भी खुलता हुआ और भारतीय टीम का भी खुलता हुआ। पहली गेंद पर एक बिना नुकसान।
1: Yes, Marufa has been the most successful bowler for Bangladesh. She has pace and she has variation. She has a swing, as you've just referred to. Marufa Akhtar has taken 7 wickets so far and she is at number 3 in the wicket takers list.
0: अगली गेंद मरूफा की, इस बार शिफाली वर्मा जो कि दूसरी ओपनिंग बैटर हैं भारतीय टीम के लिए, ड्राइव किया उन्होंने मिड ऑफ की दिशा में, रन नहीं आएगा, सीधा मिड ऑफ की फील्डर की ओर ये शॉट खेला, इसलिए रन लेने का वहां मौका था नहीं, सोच जरूर थी पर सिंगल मिला नहीं, पर अच्छा स्विंग प्राप्त करती हुई मरूफा नई गेंद के साथ।
1: Yes, absolutely. And she has undone most of the batters with that swing as well, Marufa Akhtar.
0: जल्दी से आपको एक बात और बता दें कि दोनों ही टीम्स इस मुकाबले में अनचेंज्ड 11 के साथ उतरती हुई। अगली गेंद इस बीच मरूफा की, और इस बार गेंद को थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश दाएं हाथ की बैटर के लिए, टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीची भी रही, इतना ज्यादा उछाल नहीं था और कीपर को मुश्किल हुई कलेक्ट करने में, सेकंड बाउंस पे कीपर तक वो गेंद पहुंची है, पर हल्की सी सीम मूवमेंट, इस बार बाहर की तरफ गेंद को निकाला।
1: Yes, absolutely. And she's having the ball to swing quite consistently, Marufa Akhtar. She took two wickets in the first match, 3 in the second and 2 in the third against UAE.
0: शिफाली स्ट्राइक पर, अगली गेंद एक इन स्विंगर अंदर की तरफ आती हुई राइट हैंडर बैटर के लिए, इसको टर्न करने की कोशिश मिड विकेट की दिशा में, फील्डर मौजूद और एक और डॉट डिलीवरी, तो अब बैक टू बैक 3 डॉट डिलीवरीज खेल ली हैं शिफाली वर्मा ने, और थोड़ा सा दबाव क्योंकि पावर प्ले चल रहा है, इस वजह से एक अटैकिंग आक्रामक खिलाड़ी हैं शिफाली वर्मा, बल्ला चला के खेलना पसंद करती हैं, थोड़ा सा दबाव इन पे बनेगा।
1: And in the last match, she started with a 6 against Pakistan.
0: रिलीज शॉट क्या आ रहा है, लग रहा है ऐसा बड़े शॉट की सोच होगी जरूर शेफाली की। अगली गेंद बाहरी किनारा, स्लिप में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, थर्ड पे फील्डर जरूर, डाइव लगा के अपनी बाई और उन्होंने बाउंड्री तो बचाई है, लेकिन इस बीच बैटर्स के पास इतना समय जरूर कि वो 2 रन पूरे कर सकें। शेफाली वर्मा का खाता खुल गया इन 2 रनों के साथ और भारतीय टीम का स्कोर अब 3 बिना नुकसान 5 गेंदों के बाद।
1: So lucky runs there for Shefali Verma. The ball was about to race towards the boundary, but ultimately just inside the boundary, the third man fielder did well to stop the ball.
0: Acha diving effort tha wo boundary rope pe, wideish third pe boundary rider tainat. Yaad rakhiye ki power play chal raha hai pehle 6 overs, yani keval 2 khiladi us 25 गज के घेरे में, विमेन्स क्रिकेट के अंदर मेंस क्रिकेट की तरह वो 30 गज का घेरा नहीं बल्कि 25 गज का घेरा होता है, तो 2 फील्डर्स बाउंड्री के ऊपर उस घेरे के बाहर। पैड लाइन पर अगली गेंद, शॉर्ट फाइन सर्कल के अंदर, बीट कर दिया उस फील्डर को, 4 रन मिलेंगे शेफाली को, ये 4 रन भारत के खाते में जुड़ते हुए और इन 4 रनों के साथ पहले ओवर की हुई है समाप्ति, 7 बिना नुकसान पहले ओवर के बाद।
1: So that was not the best of deliveries from Marufa, straying down the leg side and asking for trouble. And Shefali Verma just pouncing on that and getting a boundary. So that's the first boundary for the Indian team and that will release the pressure to some extent on the batters.
0: Yeah, 50th T20 antarashtriya mukabla khel rahi hai Marufa Akhtar, to dilchasp rahega ki विकेट्स की लय जल्दी पकड़ लें तो बेहतर रहेगा उनके लिए भी और बांग्लादेश की टीम के लिए भी, लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यह है कि 7 रन स्कोरबोर्ड पे पहले ओवर के बाद शिफाली और स्मृति मंदना के बल्ले से रन्स निकले, यही उम्मीद रहेगी सेमीफाइनल में जीत आए, पहले तो बड़ा स्कोर आए स्कोरबोर्ड पे, इसी की सोच रहने वाली है।
1: And now it's Sultana Khatun now bowling to Smriti Mandhana, and this time it was on the midland leg, and Smriti Mandhana flicks it towards square leg and gets an easy single. So first run

0: the first ball of the second over.
1: जी आप क्योंकि एक लेफ्ट हैंडेड बैटर नीलाद्री क्रीज पर है ना, इसी वजह से आपने ये सोच रखी कि एक ऑफ स्पिनर को लगा दें उस लेफ्ट हैंडेड बैटर के सामने, एक सोच रहेगी कि गेंद टर्न करके बाहर निकलेगा, पर स्मृति मानदना बहुत समझबूझ के साथ वो सिंगल ले लिया है। अब शेफाली वर्मा स्ट्राइक पर है, ये दिलचस्प मैचअप रहेगा।
0: एब्सोल्युटली दिस टाइम जस्ट अ बिट शॉर्ट एंड शेफाली रॉकिंग टू द बैक फुट बट कांट पियर्स द इनफील्ड हियर। 1, 2, 3, 4, 5 fielders manning the offside, and it has been fielded by the point fielder over there, and no run for that. So Shefali will be eyeing for a big shot as Sultana comes in, and this time Shefali goes over the top, over the bowler's head. That's very high. Did she clear? No, she didn't. Oh my goodness, she has been dropped in the long on. Just inside the boundary, and everything's happening here. So a first opportunity for Bangladesh goes a begging.
1: Sultana ne yahan pe lalchaya tha Shefali ko ek bada shot khelne ke liye, gend ki pitch tak nahi pahunchi, uthakar long on ke upar se khelne ki koshish, fielder maujood thi boundary pe aur Fahima के द्वारा ये कैच जो कि लिया जाना चाहिए था वो कैच छूटा है, और एक बाउंड्री चेक भी किया जाता हुआ इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि क्या गेंद कहीं उनके हाथों से जब छिटकी है तो कहीं बाउंड्री कुशन को तो नहीं छू गई। जिन्हें ऐसा हुआ नहीं, अंत में केवल सिंगल शेफाली के नाम आया, पर दिलचस्प मुकाबला। अगली गेंद डॉट बॉल स्मृति मानदना के खिलाफ, तो बहुत कुछ घटता हुआ पहली तीन चार गेंदों में इस ओवर की।
0: एब्सोल्युटली सो इट्स अ गुड कॉन्टेस्ट एंड नेक्स्ट डिलीवरी जस्ट अ बिट शॉर्ट एंड स्मृति मानदना प्लेज इट डिफेंसिवली टुवर्ड्स मिड ऑन एंड द बॉलर विल फील्ड इन हर फॉलो थ्रू। सुल्ताना खातून missed the first match against Indonesia, got one wicket against Sri Lanka and another one against UAE. The next delivery, and Smriti Mandhana this time goes for a big one, but mistimes it completely, and this time she's taken in the mid-on region. So Smriti Mandhana goes, the first wicket for India falls, and Smriti Mandhana goes scoring only two runs. So both the Bangladeshi bowlers have been very tight with their length, and the Indians trying to accelerate. Shefali Verma escaping, but this time Smriti Mandhana doesn't have the good luck. She has been caught. That was a well-judged catch in the mid-on area, and Smriti Mandhana's innings comes to an end.
1: जी हाँ, दो रन बनाकर स्मृति मानदना कैच आउट हुई। शोरना ने लिया वो कैच मिड ऑन पे, और सुल्ताना के नाम सफलता उनके ओवर की आखिरी गेंद पर। स्मृति मानदना को 66 रन और चाहिए थे लीडिंग रन गेटर बनने के लिए। T20 आई क्रिकेट के अंदर सूजी बेट्स के नाम वो रिकॉर्ड है, लेकिन आज मौका था स्मृति मानदना के पास उस रिकॉर्ड को अपने नाम करने का, लेकिन दो रन बनाकर हो गई आउट। ये आंकड़े जो हैं, दिलचस्प स्टैट्स जो हैं आपकी तरफ आ रहे हैं कर्टसी मनोज कुमार जो हमारे स्टैटिस्टिशियन हैं आज के इस मुकाबले के लिए। पर फिलहाल तो वह किफायती ओवर अंत में बनता हुआ केवल दो रन दिए, एक सफलता भी अपने नाम रही वहां पर गेंदबाजी करते हुए सुल्ताना के नाम। हमारे इस मुकाबले के स्कोरर भगत सिंह रावत ये सारे नंबर्स हम तक पहुंचाते हुए, दो ओवर के बाद 9 रन स्कोरबोर्ड पे एक विकेट के नुकसान पे। नई बैटर प्रतिका, लेकिन फिलहाल जो ओवर की शुरुआत हुई है स्ट्राइक पर शेफाली वर्मा, मरूफा अपने दूसरे और पारी के तीसरे ओवर की शुरुआत करते हुए पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में। 4 रन आएंगे शेफाली वर्मा के नाम, कोई वहां पे संदेह नहीं था उस शॉट को खेलते हुए। लेंथ को बहुत जल्दी पकड़ा, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और उस पे किया बड़ा प्रहार मिड विकेट के क्षेत्र में, 4 रन अपने नाम किए।
0: सो इमीडिएटली आफ्टर अ विकेट फॉल्स शेफाली वर्मा गोज फॉर अ पुल शॉट। दिस इज व्हाट कॉन्फिडेंस इज, एंड शी हैज मेड लवली कॉन्टैक्ट एंड गेट्स 4 रन्स देयर।
1: ये ग्राउंड की सतह ऐसी है जहां पर थ्रू द लाइन शॉट खेलना कई बार इतना आसान होता नहीं है, वही करने की कोशिश यहां पे शेफाली वर्मा के द्वारा। ड्राइव किया हवा में, मिड ऑन पे फील्डर मौजूद थी, और एक और मौका हाथ से छिटकता हुआ, एक और चांस बन सकता था कैच का।

0: डॉन पे फील्डर मौजूद थी, उस इन स्विंगिंग गेंद पे बड़ा प्रहार करने की कोशिश शेफाली वर्मा की। बैट का हैंडल थोड़ा सा हाथ में मुड़ा जरूर, और इसी वजह से कांटेक्ट बल्ले के साथ गेंद का इतना अच्छा हुआ नहीं, और मिडॉन पे जो कैच लिया जाना चाहिए था वो कैच फिर चिटका।
1: शेफाली वर्मा इज हैविंग फॉर्च्यून्स इन हर फेवर टुडे।
0: 13 रन एक विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद पे कदमों का इस्तेमाल, डाउन द ट्रैक आई है शेफाली वर्मा और पुश कर दिया इस गेंद को कवर्स की दिशा में, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला हुआ ये शॉट आसानी से उन्हें एक रन देगा और अब स्ट्राइक पर ले आएगा प्रतिका रावल को। नई बैटर जो क्रीज पे आई है, केवल चौथा T20I मुकाबला खेलते हुए अपने करियर का, 36 रन इनके नाम, 109 का स्ट्राइक रेट। और आप जब एक दिवसीय क्रिकेट की बात करते हैं और पिछले एक दिवसीय महिला विश्व कप की बात करते हैं, तो प्रतिका रावल की जो बल्ले की जो कमाल आपने देखे थे ना, उनको आप भुलाइएगा मत। जिस तरह से वो फॉर्म उस टूर्नामेंट में उन्होंने दिखाया था, T20 में उसी फॉर्म को रेप्लिकेट करना चाहेंगी। अगली गेंद पिच टॉप डिलीवरी, ड्राइव किया इसे मिड ऑफ की फील्डर को बीट करती हुई प्रतिका रावल, 4 रन करेंगे अपने नाम। खाता खोला है अपनी पहली गेंद का सामना करते हुए प्रतिका रावल ने इस चौके के साथ, और भारतीय टीम का स्कोर इस चौके के साथ अब 18 एक विकेट के नुकसान पर।
1: यस सर, प्रतिका रावल didn't contribute much in this tournament so far. Scored 22 against Thailand, 10 against Hong Kong and 4 against Pakistan. But she's technically sound as a batter.
0: Yeah, बिल्कुल। इस इनिंग्स के अंदर अब तक 3 चौके लग चुके हैं। अगली गेंद मारूफा की इन स्विंगिंग गेंद, पुश कर दिया इसे हाफ फ्रंट फुट पे आई थी यहाँ पे प्रतिका रावल, कवर्स की दिशा में गैप ढूंढने में कामयाब। पहला रन तेजी से पूरा किया और दूसरे रन के लिए वापसी करी, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स वहां दिखाती हुई प्रतिका रावल। 2 रन और भारतीय टीम के खाते में जोड़ते हुए स्कोर अब 20 एक विकेट के नुकसान पर 2.5 ओवर के बाद।
1: प्रतिका रावल इज टेक्निकली साउंड एंड सो हर सक्सेस इन ODIs हैव बीन मच बेटर। We'll talk about that after this ball.
0: Out swinger is bar Marufa ke dwara aakhri gend is over ki bahar ki taraf nikalti hui gend lagbhag 6 se 8 meter length pe tappa aur phir thodi si movement away from the right hander, keeper ne use collect kiya, dot ball ke sath kari hai over ki samapti aur score 20 ek wicket ke nuksan par 3 over ke baad. भारतीय टीम का याद रखिए टॉस जीता था बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने, और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है सेमीफाइनल में भारतीय टीम के खिलाफ। और एक विकेट जो गिरा है अब तक वो विकेट स्मृति मानधना का विकेट जो गिरा, स्मृति मानधना 2 रन बनाकर कैच आउट हुई, शौर्णा ने कैच पकड़ा था सुल्ताना की गेंदबाजी पर उसके बाद अब एक साझेदारी पनपती हुई, 11 रनों की यह साझेदारी शेफाली और प्रतिका रावल के बीच।
1: Yes, and that was Shona's 26th catch in T20 international cricket. Next delivery, Shefali facing Sultana, and this time she plays it towards the cover, and she will get no run for that. So Shefali remains on 12 of 11 deliveries, and India is on 20 for 1. This is the fourth over in progress. Sultana Khatun. This time Shefali comes out of charge and she puts it towards mid-wicket. There is cover and that's well fielded in the end. So that will be only a single for Shefali. In fact, she's taken a couple of runs. So that's well run at the end by Shefali. She moves on to 14 of the 12 deliveries. And India move on to 22 for the loss of one wicket. That's the wicket of Smriti Mandhana. Next delivery on the off stump, and Shefali Verma trying to cut that ball but couldn't make contact. The ball goes towards the cover and no possibility of any run on that occasion.
0: Kifayati gendbazi kariya Sultana ne apna dusra over dal rahi hai, keval 4 run ab tak concede kiye hain 9 gendon mein.
1: Next delivery and Shefali dances down the crease. This time she makes contact and this time she will get the maximum over the bowler's head. That's the 6.
0: पहला सिक्स जी हाँ बिल्कुल, पहला सिक्स इस इनिंग्स का, और वो शेफाली वर्मा के बल्ले से आया है।
1: एंड शेफाली वर्मा दिस टाइम मेकिंग नो मिस्टेक, हैविंग अ वेरी गुड कॉन्टैक्ट द बॉल एंड अ बैट।

0: timing it well to perfection, and the ball sailing over mid-wicket, rather over the bowler's head for a six. And next delivery once again, she goes for a big one. Will she go over the fence? Yes, she does. That's another six. So back-to-back sixes here for Shefali Verma. She moves on to 26 of 15. And this is what is needed in the power play of a T20 match. And Shefali Verma is an attacking player. She knows how to do that. So the complexion of the match has changed to a certain extent with these back-to-back over boundaries. Next delivery. Oh, and this time she gets turned. There's an appeal, half-hearted appeal. And that's the end of the fourth over. India are 34 for the loss of one wicket.
1: 14 run us over se aate hue Sultana ke, jisme wo do bade sixes shamil the. और क्या करारी ये बल्लेबाजी करी है शफाली वर्मा ने उस ओवर के अंदर. देखिए जो दो बैटर्स इस समय क्रीज पर हैं, चार ओवर डल चुके हैं, 34 रन भारतीय टीम के नाम स्कोरबोर्ड पर एक विकेट के नुकसान पे. जो दो भारतीय बैटर्स इस समय क्रीज पे, प्रतिकर रावल और शफाली वर्मा, इन दोनों के बीच एक बड़ा दिलचस्प कनेक्शन है जिसके बारे में मैं बातचीत करूंगा. और वो 2025 के 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात करूंगा जहां भारतीय टीम विजयी रही थी. और उस मुकाबले, उस टूर्नामेंट के अंदर प्रतिका रावल जबरदस्त फॉर्म में थी. उस टूर्नामेंट में 7 मैचेस में 308 रन बनाए थे, 122 हाईएस्ट था, 51.33 की उनकी एवरेज रही थी. और फिर इंजर हो गई थी, और आपको याद हो जब वो इंजर हुई तो शिफाली ने उनकी जगह ली थी. और फिर उनका प्रदर्शन उस फाइनल में आप बुला नहीं सकते. जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी थी, रन बनाए थे और करारी ये बल्लेबाजी करी थी शिफाली वर्मा ने फाइनल के अंदर, वो 87 रनों की पारी खेली थी केवल 78 गेंदों में. कितनी अहम रही थी वो इनिंग्स उस फाइनल के अंदर.
0: यस, एंड कृतिका आल्सो गॉट 100 अगेंस्ट न्यूजीलैंड. दैट वाज हर सेकंड 100 इन ओडीआई. सो शी हैज प्रूव्ड हरसेल्फ इन 50 ओवर फॉर्मेट. नाउ इट्स टाइम टू प्रूव हरसेल्फ इन द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट एज अ न्यू बॉलर नाउ इज इंट्रोड्यूस्ड. इट्स नहीदा.
1: जी, दो ओवर डाले थे मरूफा अख्तर ने इस छोर से. तेज गेंदबाज की जगह अब एक और स्पिनर का इस्तेमाल, लेफ्ट आर्म स्पिन, क्योंकि दो राइट हैंडेड बैटर्स क्रीज पर हैं. इसलिए अब नाहिदा से गेंदबाजी कराई जाती हुई पहली गेंद बैकफुट पर जाके टर्न कर दिया इस गेंद को वाइड ऑफ मिड ऑन. एक आसान सा सिंगल आएगा पहली गेंद पर. 35 रन स्कोरबोर्ड पे, एक विकेट के नुकसान पे, 4.1 ओवर के बाद. प्रतिका रावल, बिल्कुल सही काम किया आपने, सिंगल लिया, मौका दिया. यहाँ पे एक नई गेंदबाज आई है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, अगेंस्ट द टर्न लेग साइड पे खेलने जाएंगी तो मुश्किल रहेगा. फील्ड की सजावट ये डीप मिड विकेट बाउंड्री पे, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे आम. और अगली गेंद, इसको ड्राइव करने की कोशिश रही है, मिड ऑन को बीट करने की सोच थी शफाली वर्मा की. अच्छी डाइविंग एफर्ट वहां पे फील्डर के द्वारा, गेंद को सर्कल के बाहर जाने से रोका, लेकिन सिंगल नहीं रोक पाएंगी. एक रन और आएगा भारतीय टीम के नाम, 36-1 के नुकसान पर भारतीय टीम. अपना पहला ओवर डाल रही है अपने स्पेल का, इस पारी का पांचवा ओवर, यानी इस ओवर के बाद एक ओवर और पावर प्ले का बाकी. पुश ड्राइव कवर्स की दिशा में, कोई रन नहीं प्रतिका रावल के नाम इस बार. एक डॉट डिलीवरी नाहिदा के द्वारा.
0: नाहिदा अख्तर has played 110 matches and has taken 138 wickets, very experienced.
1: जहां एक बार फिर वो आम नाहिदा अख्तर के द्वारा बैकफुट पर जाकर मिड ऑफ की तरफ खेलने की कोशिश, सीधा बैक टू द बोलर खेला है इसको प्रतिका रावल ने. दो बैक टू बैक डॉट डिलीवरीज इस ओवर के अंदर आती हुई. पांचवी गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड, इस बार हल्के हाथों से गेंद को मोड़ दिया है वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में. और जब तक फील्डर आके गेंद को फील्ड करेंगी, आसानी से एक रन और प्रतिका रावल अपने नाम करेंगी. प्रतिका रावल अब 8 पे पहुंच गई है सिंगल के साथ, और भारतीय टीम का स्कोर 37 एक विकेट के नुकसान पे. नाहिदा अख्तर, जब आप इनके T20 आए आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो 128 विकेट हैं इनके नाम. इस बार अगली गेंद, स्क्वायर ड्राइव करने की कोशिश, शफाली वर्मा की लीडिंग एज लगाए, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट की फील्डर के सर के ऊपर से गेंद निकली है, बाउंड्री रोप तक नहीं पहुंचेगी जब तक फील्डर गेंद को रोक कर वापस थ्रो कर पाए. वहां पर
0: जो फिर दो
1: दो रन और जो

0: करते हुए, और इसी के साथ हुई है पांचवे ओवर की समाप्ति। 39 एक विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम एक ओवर बचाए नीलाद्री पावर प्ले का, और कोशिश भारतीय टीम की यही दिखी है कि वो पावर प्ले में मैक्सिमम रन्स बटोर सके।
1: एब्सोल्युटली, एंड टू डू दैट शेफाली वर्मा इज ऑन द क्रीज, स्मृति मंधाना इज द ओनली प्लेयर आउट सो फार, सो इट हैज बीन अ गुड बैटल बिटवीन द बॉल एंड बैट, एंड द बांग्लादेशी बॉलर स्टार्टेड वेल, but then Shefali Verma hit a couple of sixes and just a bit changed the complexion of the power play to some extent and got it in favor of India. Now we have to see who will be bowling the last over of the power play. It will be Rabea Khatun, and Rabea Khatun spinner comes in and she hits the pad. There is an appeal for leg before. The umpire is unmoved. The ball was stringed down the leg side, I reckon.
0: जी हाँ, बिल्कुल, लेग स्टंप को मिस कर जाती गेंद। एक इनिशियल रिएक्शन अंपायर की तरफ से शायद सोच का था, पर फिर देखा कि बाकी मिडिल और ऑफ स्टंप साफ दिख रही थी जब कॉन्टैक्ट पैड के साथ हुआ।
1: And that was just a bit short and Pratika rocked back to the back foot but couldn't make good contact of ball, couldn't place the ball to perfection. The ball is fielded by the cover fielder and there is no run. Pratika now next to Liberty, straying down the leg side, and once again Pratika unable to flick the ball. So this can be just a bit costly because one would reckon Shefali would have been a better bet to be on the striking end in this last over of the power play. Next delivery. And this time Pratika comes out and she hits it over mid-wicket and that will go the distance. That's a six.
0: थोड़ा सा whippy arm action है रबिया का। प्रतिका रावल पहली दो तीन गेंदें लगी उसको थोड़ा सा उसकी used to होने के लिए, लेकिन उसके बाद अगली गेंद पे कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंची और उसके बाद वो bottom hand का प्रयोग, elevation, ऊंचाई प्राप्त करने के लिए उस शॉट में, और दूरी भी मिली पूरी, यानी पीछे की मंजूरी, बहुत करारा प्रहार सिक्स के लिए।
1: And next delivery just a bit short and this time Pratika Rawal gets the thick outside edge, wanted to play towards mid wicket, the ball goes towards mid off and the bowler feels in her follow through, no run for that, so it's a good over except for that over boundary. Next delivery once again short and she wanted to cut the ball. Once again finds the fielder inside the circle. So that's the end of the over and five dot balls coming in that over. So that will make the Bangladesh captain happy. And Pratika Rawal only hitting 1-6.
0: तो चलिए, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, छह ओवर समाप्त, और भारतीय टीम का स्कोर 45 एक विकेट के नुकसान पर। वो ओवर रबिया खान का, छह रन आए उस ओवर से, वो एक बड़ी हिट, वो एक सिक्स जो आपको देखने को मिला था। एक विपी आर्म एक्शन के साथ गेंदबाजी करती हैं, लेग ब्रेक गेंदबाज हैं रबिया खान, पर उनके एक्शन को पिक कर पाना इतना आसान है नहीं कि कब वो लेग ब्रेक डाल रही हैं, कब गुगली का इस्तेमाल कर रही हैं, इसलिए शायद वो पहला ओवर थोड़ा सा भापने में निकल गया प्रतिका रावल के लिए। पर अब देखना यह है कि जब फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस खुलती हैं, अब आप चार फील्डर उस 25 यार्ड के घेरे के बाहर ले सकते हैं। वुमेन्स क्रिकेट में ये एक और बदलाव है मेंस क्रिकेट की तुलना में, जहां पे पावर प्ले के बाद मेंस क्रिकेट में आप पांच फील्डर्स ले सकते हैं उस 30 गज के दायरे के बाहर जो मेंस क्रिकेट में होता है। वुमेन्स क्रिकेट में वो 25 गज का घेरा, इनर सर्कल, और उसके बाहर आप पहले छह ओवर्स के बाद चार फील्डर्स ले सकते हैं। तो पांच फील्डर्स को सर्कल के अंदर रखना अनिवार्य, और अब यहां पे गैप्स खुल जाते हैं उन सिंगल्स और टूज के लिए। तो स्ट्राइक रोटेशन किस तरह से कर पाती है ये भारतीय टीम, वो दिलचस्प रहेगा देखना। करंट रन रेट 7.50 की। शेफाली वर्मा स्ट्राइक पर, नाहिदा नए ओवर की शुरुआत करते हुए इस बार बैकफुट पे गई और गेंद को खींच दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। एक आसान सा सिंगल आएगा शेफाली वर्मा के, और भारत के नाम 46 स्कोरबोर्ड पे। तो एक नपीतुली शुरुआत रही है, रन रेट अच्छी है, सिर्फ एक विकेट नीलाद्री जो गिरा है वो स्मृति मंधाना का विकेट जो केवल दो रन बनाकर आउट हुई।
1: Yes, of course, and the next delivery just a bit short and it has been played towards cover. There is protection there. Well, it has been quite a mixed

0: the beginning of this to this match, as Bangladesh has started well. But then Mishraf Ali Verma is not on song, but at least in good form, as the next delivery has been played towards sweeper cover. There is protection now in the deep, and she will get a single for that.
1: जी आसान से सिंगल वहां पर रन बॉल. अब यही मैं बात कह रहा था, जैसे ही वो पावर प्ले समाप्त हुआ, अब आपको गैप्स खुलते हुए देखेंगे फील्ड के अंदर और मौका बनेगा स्ट्राइक रोटेशन का, सिंगल्स को निकालने का. वो बाउंड्रीज लगाने का आपके पास अवसर पावर प्ले में था, अब मैक्सिमाइज कीजिए स्ट्राइक रोटेशन पे सिंगल्स को. लेकिन अगली गेंद नाहिदा की, इस बार ऑफ स्टंप लाइन पर, बैक फुट पे गई प्रतिका, डॉट बॉल, आसानी से इसको डिफेंसिवली वापस खेला गेंदबाज की तरफ. और ये थोड़ी सी मुश्किल का सबब बन सकता है जब आप डॉट बॉल्स इस फेज ऑफ द गेम में, मध्य के ओवर्स में आप खेलना शुरू करें. यहां पे आपके पास स्ट्राइक रोटेट करके सिंगल्स लेने का चांस है. अगली गेंद बैक फुट पे गई, अगेंस्ट द टर्न गेंद को मोड़ा है वाइड डिश डीप मिड विकेट की तरफ. इस गेंद को खेला जब तक फील्डर बाउंड्री रोप से आकर फील्ड करेंगी. आसानी से एक रन और प्रतिका रावल के नाम. प्रतिका रावल पहुंच गई है 16 पर, रन अ बॉल पारी खेलती हुई प्रतिका रावल. वहीं शिफाली वर्मा अब स्ट्राइक पर 31 पे बैटिंग कर रही है, 20 गेंदों में केवल बनाए हुए ये 31 रन. अगली गेंद को पुश किया है कवर पॉइंट की दिशा में, सीधा फील्डर के हाथों में, कोई रन नहीं आएगा और डॉट बॉल के साथ होगी 7वें ओवर की समाप्ति. भारतीय टीम का स्कोर 49, एक विकेट के नुकसान पर.
0: Yes, and Shefali Verma is the key batter at the moment for India, and she can single-handedly change the entire complexion of a match. She's at number 2 in this tournament in terms of scoring runs. Before this match, she'd scored 104, just behind Shruti Mandhana, who scored 152 before this match. Another two runs, 154 in all so far for Shruti Mandhana. Shefali has been quite successful, scoring 64 of 36 in the first match. As Rabia will continue, she's given 6 runs in the first over. This time she strays down the leg side and Pratika flicks. There is a bit of a misfielding there in the square leg area, and she will nonetheless get only a single for that. Juraya Firdos was there, just misfielding, but you do not take an extra run in misfield is what the original order of the coaches say. They've only taken a single for that. A bit of a different type of a bowling action, isn't it?
1: जी हाँ, इनका जो action है ना, थोड़ा सा mystery action है, whippy arm action है. रबिया का अगली गेंद stump line पर push किया है covers की दिशा में, इस बार कोई run नहीं आएगा. शिफाली वर्मा dot ball खेलती हुई. इनके action unlike जैसे leg spinners का action होता है, थोड़ा सा round arm action. इनका इतना round arm action नहीं है, high arm action रखती है और उसलिए ज्यादातर googly का इस्तेमाल करती है ये.
0: Absolutely, and this time Shefali comes out of charge, and seeing that the bowler just pitching that shot, and Shefali plays it towards cover, and she will get an easy single for that. So we have to wait and see how Shefali paces her innings. She scored 32 of 23 already. Next delivery, Pratikani is now on strike, way down the leg side, and that will be called a wide, I reckon. And that's the wide, the first wide of the match. Yes, the first wide of the match. Our scorer, Bhagwat Singh Rawat, confirms that it's the first wide of the match, coming on the 8th over for Bangladesh. Short delivery, next one on the leg stump, and it has been played towards mid-wicket, and Pratika will get a single. So she moves on to 18 now, 18 of 18 deliveries. She did hit a six, but she played plenty of dot balls.
1: जी हाँ, 9 डॉट डिलीवरीज खेल चुके हैं प्रतिका शिफाली. 10 डॉट डिलीवरीज खेल के बैटिंग करती हैं फिलहाल. ये बैक फुट पंच, लेकिन सीधा एक्स्ट्रा कवर की फील्डर की ओर. इस बार कोई रन और नहीं आएगा, तो एक और डॉट डिलीवरी. 32 पर बल्लेबाजी कर रही हैं शिफाली वर्मा केवल 24 गेंदों में, तो स्ट्राइक रेट तो इनका जबरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं.
0: एब्सोल्युटली, एंड नाउ द लास्ट बॉल, और दैट वाज अ गुगली, एंड शिफाली जस्ट एडजस्टिंग हर शॉट एंड प्लेज इट टुवर्ड्स थर्ड मैन, एंड दैट विल एंड द ओवर. सो 53-1 इज द स्कोर ऑफ इंडिया आफ्टर 8 ओवर्स.
1: अच्छी शुरुआत रही है शिफाली वर्मा के बल्ले से. 2 मैक्सिमम्स इस इनिंग में देखने को ऑलरेडी मिल चुके हैं अब, और कुल 90 सिक्सेस टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में शिफाली वर्मा के

0: हाँ मैं स्मृति मानधना ने 95 सिक्सेस लगाए यानी उस सूची के ऊपर बिल्कुल टॉप ऑफ द पाइल टॉप ऑफ द टेबल स्मृति मानधना 95 सिक्सेस के साथ शिफाली वर्मा के नाम 90 मौका है अगर आज क्रीज पे बनी रही क्या पता उस आंकड़े को पार कर देंगे ये स्टैक्स आपकी तरफ आते हुए हमारे स्टैटिस्टिशियन मनोज कुमार की सौजन्य से यही कहूंगा पर चलिए फिलहाल तो करंट रन रेट जो है 6.63 की और अगर इसी करंट रन रेट के साथ बल्लेबाजी करती रही भारतीय टीम तो उम्मीद ये रहेगी कि आप 133 के आसपास स्कोरबोर्ड पे डाल सकें जो इस सतह पे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक अच्छा स्कोर रहेगा। फहीमा अब नई गेंदबाज आई है गेंदबाजी करने के लिए नाहिदा अख्तर की जगह पहली गेंद डॉट बॉल गेंद थोड़ा सा रुक कर आया इस सतह से लेग स्पिनर है ये भी गेंद काफी घुमाव मिलता हुआ उस गेंद को लेकिन हल्का सा सतह से रुक कर गेंद आई इसलिए शॉट को चेक करना पड़ा प्रतीक रावल को कोई रन नहीं मिला उस पहली गेंद पर। अगली गेंद एक बार फिर थोड़ी सी फ्लाइट दी है डिप भी मिलता हुआ उस गेंद पे प्रतिका ने कदमों का इस्तेमाल किया गेंद को ड्राइव किया है वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में एक रन और आएगा उनके नाम वो पहुंच गई है 19 पर और ये साझेदारी अब प्रतिका रावल और शिफाली वर्मा के बीच 45 रनों की हो गई है।
1: Yes, and the spinners are getting significant turn. Once again, it's this ball straightening and it has been played down the ground towards long on and Shefali will get a single for that. 33 is Shefali's score at the moment. She has scored it playing 26 deliveries. India are on 55 for 1. This is the ninth over in progress.
0: अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल किया डाउन द ट्रैक आने की कोशिश प्रतिका रावल की वो इनसाइड एज गेंद गई है शॉर्ट फाइन की तरफ एक सिंगल आएगा वहां पर प्रतिका रावल के नाम और सिंगल के साथ नॉन स्ट्राइकर्स एंड की ओर जाती हुई यहां पे प्रतिका 20 पे पहुंच गई हैं प्रतिका रावल शिफाली 33 पर फिलहाल स्ट्राइक पे। अगली गेंद डाउन लेग मुश्किल कीपर के लिए और यहां पे रन आएंगे क्योंकि कीपर बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाई है शॉर्ट फाइन की फील्ड जब तक दौड़कर उस गेंद को रोकने में कामयाब रहेंगी बैटर्स ने एक रन दौड़ लिया है और एक रन और वाइड का भी मिलेगा यानी कुल 2 रन जुड़ जाएंगे खाते में भारतीय टीम के और इसका मतलब अब भारतीय टीम का स्कोर 58 एक विकेट के नुकसान पर और ये साझेदारी अब 49 रनों की हो गई है यानी 50 से केवल एक दूर इस पार्टनरशिप में बैकफुट पर जाके कट करने की कोशिश अगली गेंद पे प्रतिका रावल की लेकिन सीधा पॉइंट की फील्डर की ओर कोई रन वहां आएगा नहीं उस गेंद पर। फाहिमा फिर तैयार अगली गेंद जान डालने के लिए इस मुकाबले में काफी कुछ निर्भर रहेगा इनके ऊपर जिस तरह का अनुभव इनके पास है कट करने की कोशिश ओ मिस हुई गेंद कीपर के ग्लव्स से क्या बाहरी किनारा था विकेट कीपर और गेंदबाज के रिएक्शन से तो शायद ऐसा लगा कि एक किनारा लगा था बल्ले का पर ग्लव में गेंद फंसी नहीं और डॉट बॉल के साथ हुई है ओवर की समाप्ति 58 पर एक उस 9वें ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर।
1: सो बांग्लादेश बॉलर्स आर एट टाइम्स ट्रबलिंग द इंडियन बैटर्स बट एट द मोमेंट इंडिया वेल प्लेस्ड they have lost only one wicket, that of Smriti Mandhana, who went early, scoring a couple of runs only in this innings. Shefali Verma is the key player. And Rabia to continue. The first ball just a bit short, and Shefali plays it towards extra cover, and it has been fielded just inside the boundary. And she will get one run for that. The 50 run partnership comes up with that single. 50 of 45 deliveries. So that's a good looking partnership. And this time Pratika comes out, dances down the crease, goes for a big one, but can't clear the fielder. And she will be caught as well. So another wicket goes. She wanted to come out of the crease and play it over the bowler's head, but couldn't time it at all. And the Bangladeshi fans are happy as they get the second wicket.
0: या कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन गेंद की पिच तक नहीं पहुंची थी वहां पर प्रतिका रावल। 23 गेंदें निकल गई हैं, बाउंड्री नहीं आई थी, इसी वजह से दबाव बन रहा था दोनों बैटर्स के ऊपर। वो बाउंड्री हिट की तलाश में कदमों का इस्तेमाल किया, डाउन द ट्रैक आए, गेंद की पिच तक पहुंची नहीं प्रतिका रावल। हवा

0: में खेला उस शॉट को, दिलारा ने अच्छा कैच पकड़ा सेकंड अटेम्प्ट पे, फर्स्ट अटेम्प्ट को जागल किया था दिलारा ने, लेकिन उसके बाद रिकवर किया, सेकंड अटेम्प्ट पे कैच को अंजाम दिया और रबिया खान के नाम आई है वो सफलता। प्रतिका रावल वापस डग आउट लौटती हुई 20 रन बनाकर।
1: रबिया खातून गेट्स अ विकेट एंड सक्सेस फॉर हर टीम एंड अ कैच एज Brahmud was saying was not cleanly taken. Well, remember there are as many as 3 catches dropped today already, and Shefali Verma has been in the lucky end of it. A couple of catches of Shefali Verma has been dropped today. Shefali is still in the crease, and she will try to make the most of those lucky moments that she got in her innings. But Pratika Rawal is out, and well, now the captain will be coming in, I believe, Harmanpreet Kaur.
0: Yeah, दोनों टीमें unchanged 11 के साथ उतरी हैं इस मुकाबले के अंदर, तो lineups में कोई चेंज नहीं है। भारतीय बल्लेबाजी के क्रम में वो गहराई है, हरमनप्रीत कौर, भारतीय फुलमाली, ऋचा घोष जैसी बैटर इस लाइनअप के अंदर शामिल, दीप्ति शर्मा है, तो बल्लेबाजी में तो वो गहराई है, आपको मध्य क्रम के अंदर वो रन्स आसानी से मिल सकते हैं।
1: यस सर, बट द मिडल ऑर्डर ऑफ इंडिया इज येट टू बी टेस्टेड दैट वे, वी हैव सीन क्विक विकेट्स फॉलिंग, बट हरमनप्रीत कौर डिड प्ले अ प्रीटी गुड इनिंग्स अगेंस्ट पाकिस्तान व्हेन अ कपल ऑफ विकेट्स फेल वेरी क्विकली, शी स्टेडीड द शिप एंड शी मेड 18 ऑफ 18 डिलीवरीज and steered her team home. So far, India have won all the matches quite comprehensively, and this is the semi-final, remember, and India have always played the finals of Asia Cup right from 2004. In 2004 there were only 2 teams, mind you, India and Sri Lanka, but since then, when multiple

0: साथियों, चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है पुनीत शर्मा ने, संगीत है रोशन का रोहन का और फिल्म का नाम है संजू।
1: प्राण प्रिय

इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक समाप्त होता है। सुनिए, सुनाइए और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। राष्ट्रीय सेवा विविध भारती से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत और रूस ने यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन और भारतीय ऑपरेटरों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की डिलीवरी की दिशा में कदम बढ़ाया। केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेरफेर पर नियमों को सख्त करने के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

0: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुम्बकम यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
0: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट सिद्धांत है कि अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभ संपूर्ण मानवता तक पहुंचने चाहिए।
0: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity.
1: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफ्रॉन स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध भी शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेकमी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत इस शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के महत्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता का संदेश देंगे। उनका कहना है कि इन संस्थाओं में आज की वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं।
2: राष्ट्रीय राजधानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आने वाले शीर्ष नेताओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने विदेश

0: मेहमानों के अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली में करीब 15,000 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि विदेशी गणमान्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं।
1: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं, और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
0: भारत की अध्यक्षता 4 प्रमुख स्तंभों लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद से अब तक 350 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण

0: आधारित है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद से अब तक 350 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर विचार विमर्श किया। प्रस्तावित समझौतों में पिनकल एयर, एयर केरल और स्लीक एविएशन सहित भारतीय विमानन कंपनियों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति और इससे जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। दो दिन का इनोप्रोम इंडिया कार्यक्रम कल नई दिल्ली में शुरू हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक रूस और भारत की कंपनियाँ हिस्सा ले रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है और अब किसी के हताहत ना होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार 3 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान दे रही है, जोखिम में कमी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और किसी के हताहत ना होने देना। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आपदा रोधी गांव और शहर तैयार करना है। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। नए नियमों से ई कॉमर्स क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता केंद्रित व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ये नियम अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त

यह है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज एक स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक जीते। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, मिली शाह की टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। उधर दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रावण का और फिल्म का नाम है दिल है के मानता नहीं।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में वो गीत जिसे लिखा है सूरज सनीम ने, संगीत है राम लक्ष्मण का और फिल्म का नाम है सातवां आसमान।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
4: मैं निकला ओ गटले
3: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
4: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
5: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
3: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
6: चिट्ठी न कोई संदेश।
3: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

0: सिर्फ विविध भारती पर।
1: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। गीतकार है इंदिवर, संगीत है राजेश रोशन का और फिल्म का नाम है किंग अंकल।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत है अनु मलिक का और फिल्म का नाम है गंगा जमुना सरस्वती।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं साधना सरगम की आवाज में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत है राजेश रोशन का और फिल्म का नाम है खून भरी मांग।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती हैं।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
0: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहाँ वहां भटकता रहता है, जाने किन किन

साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा मुंबई की तरफ जाने के लिए, इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने जमकर कुटुम्बस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब खान की।

महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थी और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा, पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहां बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे मुंबई।

मुंबई में महबूब खान उस जमाने के वीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे, महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते, तरह तरह की परेशानियां होती, वो हौसला नहीं हारते, हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इम्प्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्दशीर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहां से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्दशीर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में ये फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्दशीर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दांव नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दांव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहां से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की

जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता। सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

इसके बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म अनमोल घड़ी।

अनमोल घड़ी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई ये फिल्म काफी कामयाब रही।

सन 1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद का था।

एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने। उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।

मदर इंडिया जैसी बड़ी लकीर खींचने के बाद महबूब खान ने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई। सन 1962 में आई उनकी निर्देशित फिल्म सन ऑफ इंडिया।

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को हमारा विनम्र नमन।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्मकार महबूब खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

पेश खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। कोई डर है न कोई रोजन है न कोई रोशनदान है, जिंदगी की ये इमारत कितनी आलीशान है। एक छोटा सा दिल इसमें रहता है, ये प्यार का नगीना है, तस्वीर उनकी जिसमें झिलमिलाती है। बात क्या कहूँ, कल रात दिल ने जो कही, आ जा के देख लूँ तुझे जी भर के एक बार, उठे हुए हैं दिल में वो तूफान तेरे बगैर।

ये आंखों की हया दिल मेरा चुरा लेती है, एक दिल एक निगाह कहाँ कहाँ छुपाऊं तुम्हें, सांसों की धड़कनों में कहाँ कहाँ बसाऊं तुम्हें। जिस तरह चांद सितारों में एक है, चांदनी फूल शरारों में एक है, रात खामोशी के तरानों में एक है, तू महजबी हजारों में एक है।

शंकर भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। ये उल्फत आपकी है, मेहरबानी आपकी, वो दिल का नशेमन जब ठिठक गई थी घटाएं, भीगी भीगी थी बादलों की चुनर, बरस रही थी फजाएं, हया का पर्दा उठा दिल ही दिल में रही, लब तक आई न बात।

को तो रात ठहरती नहीं, जुबान से तो कुछ ना कहा, हुई नजरों से नजरों की बात। अजब अपना हाल होता जो विसाल यार होता, कभी जान सदके होती कभी दिल निसार होता।

आसमान की खुली पलकों पर सितारों ने ख्वाब सजाए हैं, जरा सी देर हो जाए तो क्या होगा, दिल से दिल की बात कुछ और होने दो, शम्माए मोहब्बत कुछ और देर जलने दो, जुल्म ढाने का वरना डर होगा, ये इल्जाम भी हमारे सर होगा।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ड बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं सोना महापात्रा की आवाज में हुसैन हैदरी का लिखा ये अगार फिल्मी गीत।

सोना महापात्रा की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये गैर फिल्मी गीत। और आइए अब सुनते हैं हरिओम शरण का गाया ये भक्ति पथ।

हरिओम शरण की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये भक्ति पद। और आइए अब सुनते हैं बेगम आबिदा परवीन को

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर। मुकेश की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं जिगर मुरादाबादी का कलाम। संगीतकार मुरली मनोहर स्वरूप हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म वीर दुर्गादास से लिया है। गीतकार पंडित भरत व्यास हैं और धुन बनाई है SN त्रिपाठी ने।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। रंग तरंग कार्यक्रम की अगली पेशकश वडाली बंधुओं की आवाज़।

0: उर्मिला कपिला और नागेंद्र पटेल ने, साथ ही साथ प्रस्तुतिकरण में सहयोग प्राप्त हुआ वंदना भारद्वाज का, माधवी तिवारी का और स्वाति कपूर का, और इस पूरे कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शाहनवाज खान। आप बने रहिए आकाशवाणी के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: प्लेयर ऑफ द मैच।
3: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। रात्रि के 11:41 हुए हैं। श्रोताओं, हमारी आज की सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:51 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि।